0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: 24 आवर्स अ डे।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बुधवार 9 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं और अभी के लिए समय हुआ है समाचार का।
3: सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से। पूजा आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आवास एवं भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को एक इंटरैक्टिव मैप ऑनलाइन जारी किया है, जिसकी मदद से सार्वजनिक समुद्र तटों और समुद्र तट तक पहुंचने वाले रास्तों की पहचान की जा सकती है। फिलहाल इस मैप में 4 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, ला पुनेज, ला मिवा, तमारे और फ्लाक। बाद में इस मैप को टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देने वाले बियान पेलावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण। गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पेलावाल को मॉरिशस के महान धर्म सेवक के रूप में भी माना जाता है। और आज उनकी तीर्थ यात्रा कल शुरू हुई और आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये मात्र पैदल तय किया जाने वाला रास्ता नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। विदेश में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले 2 दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमेरिकी युद्धपोत के 2 बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमेरिकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया है। और अब मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू है। मैस्कैरिन के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंड और जोरदार हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे, दिन के दौरान हल्की वर्षा होगी, खासकर देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर। रात को भी बादल छाए रहेंगे। सेंट्रल प्लाटू तथा हवाई ढलानों पर रहकर वर्षा होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से, मछुआरों से समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 17 से 22, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा।
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ये RM3 है परवीजा के साथ।

हैं उर्दू तशरियात बनाम सबाल खैर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगी। रोशनियों, रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़ीज़ामीन, ये वो लम्हात है जब दिल जिक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताजगी नसीब होती है। तो आइए मज़ीज़ामीन, इससे रूपरवर महफिल का आगाज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व अदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फंदोज हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे।

और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में खबरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है।

कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ।

पैगंबर ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूं वो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो।

फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है, तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा, नहीं बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी, जिस

इसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है जो हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती थी। आखिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं।

और हमने उनको ऐसा इख्तदार दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे, तो चूंकि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे, इसलिए न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके और न आंखें और न दिल, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा।

और ऐ मक्के वालों, तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और बार बार हमने अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें, तो जिनको उन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद बनाया था उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए और ये उनका झूठ था और यही वो इफ्तिरा किया करते थे।

और वो वक्त काबिल जिक्र है जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसको सुनने हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना खत्म हुआ तो वो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको खबरदार करें। कहने लगे कि ऐ कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है, जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है।

क्या इन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और वो इनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? हां क्यों नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा क्या ये हक नहीं है, तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम ये हक है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो।

0: बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो, और इनके लिए अजाब जल्दी ना मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे।
1: सदकल्लाहु लजीम। माशाल्लाह, क्या तिलावती कुरान पाक का रू परवर समा था। कुरान की बरकत से दिलों को जिला मिली है। क्या ही पाकिजा और बरकत है वो कलाम जो रब जुलजलाल ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। शामिल महतरम, कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करना और उसे आगे फैलाना वो अजीम तरीन सआदत है जिसके बारे में हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में से बेहतरीन शख्स वो हैं जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और जब इस अजीम शान कलाम हिदायत पर गौर करते हैं तो खुद ब खुद दिल उस रब करीम की हमद सना के लिए झुक जाता है जिसने हमें उस बेमिसल नेमत से नवाजा। तो आइए मज़ीद सामीन इसी बारी ताला की बारगाह में अपने अकीदत के फूल निछावर करते हैं और मिलकर सुनते हैं हमद बारी ताला।

0: तू ही रब दो आलम है, तू ही रहमान और रहीम, तू ही मालिक है हर शय का, तू ही आलम और अलीम, तेरे ही दर से मिलती हैं हर एक साइल को मुराद, तेरे ही फैज का दरिया है हर सू जारी और मदाम। ये और एम्फ्री है परवीजा का साथ है दिन के 7 बजे तक उर्दू नशरियात सब अल खैर में, जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सामईन गिरामी, जहाँ खालिक कायनात की हमद सना से दिल मुनव्वर होते हैं, वही दिल उस वक्त नूर उन आला नूर हो जाते हैं जब जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी महफिलें सजती हैं। तो आइए मज़ी सामीन अपने दिलों की ज़मीन को असीर हबीब बनाने और सीरत तैयबा की रोशनी से अपने किरदार को संवारने के लिए सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर एक खुसूसी और दिलों को छू लेने वाला बयान, समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله درود پاک کے बेशुमार फजाइल व बरकात है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा बरोज़े कयामत उसे मेरी शफाअत पहुंच कर रहेगी। अब जरा आप गौर करें कि 10 बार सुबह और 10 बार शाम दुरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है, लेकिन आज फजूल बातों के लिए वक्त है और हमारे पास वक्त नहीं तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए वक्त नहीं। तो बराए करम नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। और शायर कहते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम जो बात करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका के बारे में कि हर हर मामले में सरकारे दो आलम अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए अमली नमूना है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इसी नबी पाक की सीरत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, वा इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीब अखलाक पर हो। सरकार दो आलम अलैहि सलाम ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, यानी मुझे अखलाक के हुस्नो खूबी को मुकम्मल करने के लिए ही भेजा गया। नबी पाक क्यों दुनिया में तशरीफ लाए, बेइज्जत क्यों हुई, उसका जो मेन रीजन फरमाया कि मुझे भेजा ही अखलाक की तकमील।

के लिए है। तो इससे अंदाजा होता है कि हुस्ने अखलाक, अच्छे अखलाक, अच्छी जिंदगी गुजारना ये इस्लाम को किस कदर मतलूब है। और नबी पाक की सुभान अल्लाह जो सीरत है उसके अंदर जो अखलाक करीमा का शानदार नरमी का माफी का दरगुजर का जो अंसर है, तो वो शायर कहते हैं ना, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला। मेरे आका वो हैं जो खताकार से दर गुजर फरमाते, मेरे आका वो हैं जो यतीमों के मलजा हैं, अपने पराए के गम को महसूस करने वाले हैं। आज सीरत रसूल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे और आपको ये सीखना है कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे बेहतरीन मुसलमान बनना है। मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर का आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। हजरत जैद बिन साना रदी अल्लाह तआला, ये एक यहूदी आलिम थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उनके साथ क्या मामला हुआ, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कोई कारोबार किया था और खजूरें देने की अब जो मुद्दत थी उसमें 2 या 3 दिन बाकी थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अभी 2-3 दिन बाद वो खजूरें लौटानी थी, तो जैद बिन साना ने भरे बाजार में नबी पाक अलैहिस्सलाम को रोक कर बुलंद आवाज से तुर्श अंदाज में, जिसको कहते ना कि गुस्से वाले अंदाज में, नबी पाक से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। सहाबा साथ हैं, भरे बाजार में लोगों के सामने ये एटीट्यूड किया जा रहा है नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ। अब वहां हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला मौजूद थे, गजबनाक नजरों से जैद बिन साना को देखा और कहते हैं, ए अल्लाह और रसूल के दुश्मन, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदब का लिहाज ना होता मेरी तलवार होती और तेरा सर उड़ा देता। क्या अल्लाह के नबी से ऐसे बात करते हैं? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का हिल्म और बुर्दबारी देखें। अब जरा अपने आप को पहले रखकर सोचें कि मैं कहीं बाजार में जा रहा हूं, मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी हैं या मेरे दोस्त हैं, और जनाब मुझे कोई रोक के बदतमीजी करे, और अब बताएं लोगों का उस वक्त रिप्लाई क्या होता है। मगर नबी पाक हजरत उमर को देख कर फरमाते हैं कि ए उमर, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था मुझे अदाए हक की तरगीब देकर, और इसको कहते कि नरमी से तकाजा करो, हम दोनों के बारे में, हम दोनों को यह बात करते, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सरकार दो आलम अली सलाम ने हजरत उमर को कहा, ए उमर जाओ जैद बिन साना को उसकी खजूरें दे दो, बल्कि कुछ ज्यादा देना। अब गौर कीजिएगा, जितनी खजूरें निकलती हैं उससे कुछ ज्यादा देना। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरें जितनी हैं उतनी ही देनी है, ज्यादा क्यों देनी, वैसी बदतमीज है। तो नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, जो तुमने तीखी नजरों से उसे देखा था, उसे जिस अंदाज से तुमने बात की थी, उसका दिल टूट गया होगा। ऐसा करो, थोड़ी खजूरें इसलिए ज्यादा दो कि उसके दिल में मजीद नरमी आ जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर हजरत उमर खुद जाते हैं, जाकर खजूरें देते हैं। जैद बिन साना कहता है, ए उमर, जितनी निकलती हैं उससे ज्यादा क्यों दे रहे हो? कहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, मैंने तुम्हें बड़ी अजीब नजरों से, गुस्से वाली नजरों से देखा था, मैं इसलिए तुम्हें खजूरें ज्यादा दे रहा हूं। हजरत जैद बिन साना ने यह देखा तो कहते हैं, ए उबर, बात यह है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उबर ने कहा, कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं, मैं जैद बिन साना हूं। हजरत उबर पहचान गए, क्योंकि वो यहूदियों का मशहूर आलिम थे उस जमाने में। कहा, तुम वही हो जो यहूदियों के आलिम हो? कहा, जी। तो कहा, फिर तुम्हें पता नहीं अल्लाह के नबी से बात कैसे करते हैं? कहा, मुझे बिल्कुल इल्म है, मैंने आसमानी किताब में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी हुई हैं, और मैंने इनकी जात में नबूवत की तमाम निशानियां पहचान ली थी। 2 निशानियों का मुझे इम्तिहान लेना था, 2 निशानियों के बारे में मुझे चेक करना था कि क्या ये वही अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिसका जिक्र हमारी आसमानी किताबों में है। ए उमर, वो 2 निशानियां ये लिखी हैं कि इनकी कुव्वत बर्दाश्त इनके गुस्से पर गालिब रहेगी, जिस कदर ज्यादा उनके साथ जहालत का बर्ताव किया जाएगा उसी कदर उनका सब्र तहम्मुल बढ़ता चला जाएगा। जरा गौर कीजिए, प्यारे आका का कुव्वत बर्दाश्त भी है और जितना जहालत की गई उतना सब्र भी बढ़ता गया। सुभान अल्लाह। अब हजरत जैद बिन साना क्या कहते हैं, ए उमर, गवाह हो जाओ, मैंने पहचान लिया है, मैंने दोनों चीजें चेक कर ली हैं, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और ए उमर, यह भी सुन लो कि अल्लाह ने मुझे बड़ा माल दिया है, मैं आधा माल राह इस्लाम में वक्फ करता हूं, राहे इस्लाम में देता हूं। तो सीखने को क्या मिला? अच्छा अखलाक हो, माफी हो, दरगुजर हो,

तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है और बुरा अखलाक हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो आज के सीरत के जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि इस्लाम को मुसलमान के अच्छे अखलाक मतलूब हैं, और जिस नबी अलैहिस्सलाम का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है उनका अखलाक किस कदर अरफा व आला, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे। आपने फतेह मक्का का वाकया सुना होगा, अब जरा इसकी थोड़ी सी मजीद तफसील सुनते हैं। पहले याद कीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने क्यों गए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम 63 इयर्स इस दुनिया में तशरीफ लाए, आउट ऑफ दो 63 इयर्स मेरे आका ने 53 साल मक्के में गुजारे। विलादत वहां होती है, नबी पाक की शादी मुबारक वहां होती है, मक्का बे सफा मरवा भी है, काबा भी है, हज भी वही होता है। मगर उन कुफारे मक्का ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत देनी शुरू की, अल्लाह की तरफ बुलाया, तो जो जुल्म की आंधियां चलाईं, जिस तरह तकलीफ पहुंचाई, सहाबा को मारा गया, जो नमाज पढ़ता उसे मारते, जो अजान देता उसे मारते, कई सहाबा को शहीद कर दिया गया। खुद नबी पाक के चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला के बारे में जब गज़वा अहद होता है मदीना पाक जाकर, किस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब मक्के में थे, जमीन तंग कर दी गई, नबी पाक बड़ी तकलीफ के आलम में, बड़े सौरो सैडनेस के साथ मेरे आका मक्के से मदीने हिजरत करते हैं। मगर उनको फारे मक्का को फिर भी चैन नहीं आया कि ये तो मदीने पहुंच गए, अभी पहुंचे हैं, और 2 हिजरी में जनाब गजवाए बदर होता है, 3 हिजरी में गजवाए अहद होता है। यानी उनको चैन ही नहीं आ रहा था कि उनको जाके किसी तरह इस्लाम को मिटा दें। लेकिन अब जब 8 हिजरी में फतेह मक्का होता है, मुश्किल के दिन खत्म हुए, अब मक्के में एक फातेहाना अंदाज में नबी पाक दाखिल हो रहे हैं। नबी पाक जब मक्का पाक में दाखिल हो रहे थे तो कोई शाहाना अंदाज नहीं था। रिवायतों में आता है मेरे आका ऊंटनी पर बैठे थे और इस कदर झुके हुए सूरह फतह की तिलावत कर रहे थे कि आपका इमामा शरीफ ऊंट के कजावे से लग रहा है। यानी यह ऐलान था कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, यह अल्लाह की अता से मुझे यह कामयाबी मिली है, और कामयाबी मिलने पर भी गुरूर नहीं है, वहां भी आजजी का अंदाज है। तो आपसे भी मेरी है कि इस वाक्य से पहला सबक तो यह लें कि अगर जिंदगी में अल्लाह कोई मकाम दे दे, कोई मर्तबा दे दे, कोई उरूज दे दे, कोई दौलत दे दे, हमें आजजी रखनी है। कहते ना अपनी औकात याद रखनी है कि मैं कौन था और रब ने मुझे कहां पहुंचाया। अच्छा, अब फतेह मक्का हो गया, सारे कुफार सामने खड़े हैं, सहाबा के कातिल भी खड़े हैं, गजवाए उहद में हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले भी खड़े हैं, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादियों को तकलीफ देने वाले भी खड़े हैं। अब सबकी हालत खराब है कि आज तो हमारी बोटियां नुचवा दी जाएंगी, आज तो हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, हमने जुल्मो सितम में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आज इन्होंने क्या हमारा हाल करना है। मगर सुनो, मेरे आका कौन है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो तो रहमत सारे जहानों के लिए हैं। ऐसे मौके पर कि जब वो सारे दुश्मनाने इस्लाम मौजूद थे, नबी पाक का वो अजीम ऐलान, प्यारे आका फरमाते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौमा फذهبوا انتم الطلقاء, आका ने फरमाया आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। अच्छा, वो सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सर उड़ा दिए जाएंगे, आज कैद कर लिया जाएगा, मगर ये कैसा ऐलान था, अल्लाह अकबर। अच्छा, फतेह मक्का में हमने यहां तक तो ये वाकया सुना होगा कि नबी पाक ने सबको माफ कर दिया, इस माफी के बाद हुआ क्या, अल्लाह अकबर। मुसलमान मक्के से 10,000 आए थे, 10,000 साहबा थे 8 हिजरी में, मगर जब यह ऐलान हुआ तो उन सरदारों की आंखों से आंसू निकल आए कि हम इतने बड़े जुल्म करने वाले, हम इतनी ज्यादती करने वाले, हमारी वजह से इनको अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ा, ये मक्के से मदीने चले गए। आज मौका मिला है तो बदला नहीं ले रहे, आज मौका मिला है तो माफ कर रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और जोरों शोर से सबने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यानी मेरे आका अगर उन सबके सर कलम फरमा देते तो ये दुश्मनी दर दुश्मनी चलती रहती, मगर एक अजीम ऐलान ने काया पलट कर दी। और आपको यह भी पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपसे हिसाब किताब मैं चाहूंगा, जरा एक थोड़ी सी हिस्ट्री को मैं रिकॉल करवा देता हूं, ये इंशाल्लाह काम आएगी आपको। आपको याद होना चाहिए कि मेरे आका ने ऐलान नबूवत कब फरमाया था, 40 साल की उम्र में, हिजरत कब की, 53 साल की उम्र में, यानी 13 साल तक इस्लाम की दावत दी। कितने लोग ईमान लाए थे, उलमा फरमाते 80 या 100 के करीब लोग ईमान लाए थे जो मक्के से हिजरत करके मदीने गए, ठीक है। फिर 2 हिजरी में गजवा बदर हुआ, कितने मुसलमान साहबा थे, 313, अदद याद है ना आपको, यानी 13 और 2 साल मिला लें तो अभी कितने मुसलमान हुए, 313। चले आप खवातीन को मिला लें तो ऑल टुगेदर 600-700 पूरी दुनिया में मुसलमान थे। फिर इसके बाद 3 हिजरी में गजवा उहद होता है, 700 मुसलमान थे उस लश्कर में। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है, 1400 मुसलमान है। आप ग्रेजुअली देख रहे कितनी स्ट्रगल हो रही है,
अब 6 हिजरी

इसका मतलब तो बताएं, 6 और प्लस 13 कितने हो गए, 19 साल अल्लाह के नबी ने कोशिश की है, और सुलह हुदैबिया में 1400 सहाबा हैं, और थोड़े से मदीने पाक में भी होंगे, हम ऑल टुगेदर मान लेते 3000 मुसलमान हुए थे, 19 साल की स्ट्रगल। 8 हिजरी में मेरे आका फतेह मक्का फरमाते हैं 10,000 मुसलमान हैं, सहाबा 10,000 का लश्कर है ना, मगर आप जानते हैं 10 हिजरी में जब हजतुल विदा होता है कितने सहाबा हैं, 1,24,000 सहाबा मैदान अरफात में मौजूद हैं। ये 21 साल की कोशिश में 10,000 तक पहुंचते हैं, और वो माफी के ऐलान के बाद, वो अजीब हिकमत अमली के बाद, ये 10,000 से तादाद कहां पहुंचती है, 1,24,000। ये एक ऐसा ऐलान था, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उस दिन से लेकर आज तक इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर पूरी दुनिया का सर्वे करें तो मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ जो है वो हमारा मजहब इस्लाम है। तो सुभान अल्लाह, ये फतेह मक्का की माफी याद दिला रही है कि खून के प्यासों को माफ किया, रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को माफ किया, जमीन तंग करने वालों को माफ किया, मगर आज मैं और आप देखें क्या हम माफ करते हैं, या हम बदले की आग में जल रहे हैं, किसी को कहो भाई माफ कर दो, नहीं नहीं मैं तो इंतजार कर रहा हूं, बस मौका मिले बदला लेना है। अल्लाह अकबर, उस नबी के उम्मती हैं। नात के अशार हम सबको याद होंगे कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या कभी हमने गालियां सुनकर दुआएं दी, जरा गौर कीजिए ना, हमें तो कोई एक गाली दे हम बताते हैं हमें कितनी गालियां याद हैं। है सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, जान लेने वालों को नबी पाक ने बख्श दिया। हम छोटी सी गलती मुलाजिम कर ले उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं है, किसी गरीब आदमी से हो तो उसको तो बसल के रख देते हैं, ना करे ऐसा। जिस नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, जिनके अखलाक करीमा तो देखे, वो तो गरीबों पर कैसे मेहरबान थे कि कभी कभी गुलाम आते थे, कहते हुजूर हमारे घर पर आपकी दावत है और खजूरें हैं और पुरानी चर्बी है, मेन्यू भी बता रहे हैं, तो मेरे आका जो रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह के हबीब हैं, वो उस गरीब के घर भी दावत पर चले जाते हैं, उस गुलाम के घर भी दावत पर जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में ये भी पहलू मिलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर अपने खादिम को भी बिठा लिया करते थे। अब जरा मुझे बताइए ना, पहले सवारियां क्या थी, गाड़ियां तो नहीं थी ना, ऊंट थे या घोड़े थे, घोड़े पर नबी पाक सवारी फरमा रहे और पीछे किसको बिठाया, अपने खादिम को। ये कैसी आजजी है, आज क्या ये कोई इमेजिन करता है कि अपने मुलाजिम को अपने बराबर वाली सीट पर बिठाए, हैं खुद ड्राइव करे और खादिम को कहे बैठ जाओ। लोग कसरे शान समझते हैं, किसी गरीब के साथ खाना अपनी शान को कम समझते हैं, हालांकि हम वो हैं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो किसी ने कहा हुजूर आप अल्लाह के नबी होकर जमीन पर बैठकर खा रहे हैं, आपने फरमाया मैं बंदा हूं और बंदों की तरह जीता हूं, बंदों की तरह जिंदगी गुजारता हूं। एक बार नबी पाक अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए तो सहाबा खड़े हो गए, वाकई उनका खड़ा होना बनता था, आका उनके आका है, वो गुलाम है, मगर प्यारे आका ने पसंद नहीं फरमाया, फरमाया जब मैं बाहर आया करूं खड़े ना हुआ करो। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मकाम, मकाम कितना बड़ा है, इस पे तो पूरी अलग बयान हो सकता है कि नबी पाक का मकाम कितना बड़ा, बस एक हदीस से ही समझ जाइए, वो हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलकतु दुनिया, ए महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो दुनिया ही ना बनाता। तो ये सब कुछ जो दुनिया में है ना, ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का। जब ही तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ को मोहब्बत लिखते हैं ना कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो जिनका सदका ये कायनात है वो हबीब अलैहिस्सलाम का आलम यह है कि वो कहते हैं मेरे लिए खड़ा ना होना, और अगर आज मैं कहीं जाऊं और मेरे लिए कोई खड़ा ना हो, मुझे इज्जत की जगह पर ना बिठाएं तो बुरा लगता है। बंदा दावत छोड़ के वापस चला जाता है, तकरीब छोड़ के चला जाता है कि जनाब मुझे इज्जत नहीं मिली। अल्लाह अकबर, यकीनन लोगों को, मुअज्जिज़ीन को इज्जत देनी चाहिए, मगर अपने दिल में यह तमन्ना करना कि मैं इनसे बेहतर हूं, ये कमतर हैं, तो बताएं ना फिर तकब्बुर किसे कहते हैं। याद कीजिएगा, तकब्बुर वो बुराई है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और यहां तकब्बुर का आलम यह है कि जनाब पूरा पूरा दिल तकब्बुर से भरा हुआ है। डेफिनेशन क्या है, जब इस तरह का बयान होता है ना तो लोग कहते हैं यार मैं तो तकब्बुर नहीं करता है। चले मैं आपको शैतान का वो वाकया मुख्तसर सुना देता हूं। शैतान ने सबसे पहला गुनाह जो इस दुनिया में किया था, क्या किया था, तकब्बुर ही तो किया था। हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया था ना, और आर्ग्यूमेंट क्या पेश किया था, वो कुरान में मौजूद है, अना खैरुम मिन, ए अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, खलकतनी मिन नार यूं व खलकतहू मिन तीन, ए अल्लाह तूने मुझे नार से यानी आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया है। बस यही समझना है, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, इसी को तकब्बुर कहते हैं। अपने आप को दूसरों से बरतर समझना, दूसरे

दूसरे को अपने से हकीर समझना, तो आज आए हैं ना, अपना दिल साफ करके जाए, आजजी के पैकर बन जाए। मेरे आका की आजजी कैसी थी, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, है चटाई का बिछौना कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले, तेरी आजजी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, हो सलामे आज जाना मदनी मदीने वाले। देखिए ना, मीलाद भी मनाता हूं, नबी पाक की नाते भी सुनता हूं, प्यारे आका के गुण भी गाता हूं, और फर्क भी कुछ नहीं आता। ये कैसी मेरी नबी पाक से मोहब्बत है। मजा तो ये आए ना कि सीरत मुस्तफा अलैहिस्सलाम को जब जब सुनूं तो कोई एक फूल, देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं, ये फूल यहीं देखकर चला जाऊं तो यहीं रह जाएंगे ना, क्या ही अच्छा हो एक फूल साथ दिल में सजा लूं, सीरत का कोई एक पहलू अपने दिल में सजाऊं के जाऊं तो मैं कहूं कि मुझे ये बात सीखने को मिली, आज से मैं इस पर अमल करूंगा। मौलाए कायनात, मौला अली, शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजूल करीम का क्या खूबसूरत रिवायत है, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम से मैंने सुना है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। आप सुने, इस हदीस का एक और पहलू भी है, एक जगह नबी पाक ने फरमाया, जो ये चाहता है उसका हिसाब आसानी से लिया जाए और चाहता है कि उसे जन्नत में अल्लाह घर अता फरमाए, वो तीन काम कर ले। अब वो तीन काम गौर से सुने और आज समझ ले, यही मेरे बयान का मैसेज है। मेरे आका फरमाते हैं, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। काम थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे भी अंदाजा, क्योंकि दिल में सख्ती बहुत आ गई है ना, कैसे माफ कर दूं हजरत, आप कह रहे हैं उसने जुल्म किया है मेरे साथ, ज्यादती की है, मुझे बुरा भला कहा था, मैं नहीं छोड़ूंगा, यही तो कमाल है, है? हाँ, अच्छा कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, मैं बड़ा बा अखलाक हूं। अच्छा, उनका अखलाक पता है क्या है, उनको मुस्कुरा के मिले तो वो भी मुस्कुरा के मिलते हैं, उनको तोहफा दें तो वो भी तोहफा देते हैं। कमाल जब होगा जब आपके मिजाज के खिलाफ बात हुई, आपको तकलीफ पहुंचाई किसी ने, अब आपका रिएक्शन क्या है, दिस इज योर एक्चुअल अखलाक। और नबी पाक की शान ये थी कि जितना जहालत बढ़ती थी उतना मेरे आका अली सलाम का अखलाक और नरमी और बुर्दबारी बढ़ती थी। तो हमें यह सीखना है कि जो जुल्म करे उसे माफ करने हैं, और माफ करने को अल्लाह ने बड़ा पसंद किया, यकीन करें। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूं, एक शख्स था, उसके घर में उसकी वाइफ ने खाना बनाया, जब खाना बनाया तो नमक ज्यादा हो गया, जाहिर औरत है गलती हो जाती है, कहता मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं अपनी वाइफ को सजा दूंगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी तो रोज अल्लाह की बारगाह में गलतियां हो रही हैं, रोज नाफरमानियां कर रहा हूं, अल्लाह तो सजा नहीं दे रहा, मेरी बीवी ने एक गलती की और मैं उसको अब सजा देना चाहता हूं। हमने औरत से शादी की है, कंप्यूटर से शादी नहीं की है, गलती उससे भी हो सकती है, मुझसे होती है, आपसे भी होती है। तो सुभान अल्लाह, उस शख्स ने क्या किया, उसने अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खाया और चला गया। मरने के बाद उसे बताया गया कि उस रोज जो तूने मेरा बंदा होकर मेरी बंदी को माफ किया था, जा मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। तो एक माफी जो है ना, यहां पर ऐसे कई लोगों में जिनके मुलाजमीन होंगे, यार मुलाजमीन से हो गई गलती, माफ कर देना है। अब ये इस नीयत से माफ करें कि अल्लाह मैं इसको माफ कर रहा हूं तो मुझे माफ कर, जितना माफ करेंगे इंशाल्लाह उतना अजर मिलेगा। क्योंकि आपने सुना कि जन्नत में अगर घर चाहिए और आप चाहते हैं कि हिसाब आसानी से हो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो। अच्छा, दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। अच्छा, अब यहां क्या होता है नॉर्मली कि महरूम करने वालों को, ठीक है ना, लोग कहते नहीं इसने दावत में नहीं बुलाया मैं भी नहीं बुलाऊंगा, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया मैं तो किसी भी अपनी महफिल में नहीं बुलाऊंगा। नहीं, महरूम करने वाले को अता करना है, यही तो इस्लाम का हुसन है ना। और नबी पाक ने ऐसा किया है। हजरते हब्बार बिन अस्वद, आखिरी वाकया सुनाकर फिर मैं अपने बयान को कंप्लीट करता हूं कि अल्लाह करे कि इन वाकयात से हम ये सीखें कि काश हमारे अंदर भी ऐसे अखलाक आ जाएं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का कैसा कमाल का अखलाक है कि याद रखिएगा, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी हैं, उनके शौहर अबुल आस बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वा बदर के बाद उन्हें मदीना मनवरा रवाना किया। अब ये सफर हो रहा है और उस जमाने में हजरत जैनब का पीछा किया कुरैश मक्का ने, उनको इतना मिल गई थी कि ये मदीने जा रही हैं, ऐलान ये हुआ कि इन्हें इंटरसेप्ट किया जाएगा। और अब क्या हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत जैनब रदी अल्लाह तआला पर हब्बार बिन अस्वद ने नेजा मारा, जिसकी वजह से आप अपनी सवारी से अपने ऊंट से नीचे गिर गई और आपका हमल जाया हो गया।
अब सोचिए एक बाप के लिए कितना बड़ा सदमा है। हब्बाल बिन अस्वद ने ज्यादती तो कर ली, अब वो भाग गया, अब वो समझे मक्का मदीना के इलाके को छोड़कर ही कहीं और चले गए। मगर जब नबी पाक मकाम जैराना में थे, हजरत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं बैठे हुए थे सहाबा की महफिल में, कि इतने में नबी पाक के

0: दरवाजे पर हब्बार बिन अस्वद आ गया, अल्लाहु अकबर, और कहता है, अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, दाखिल होकर बैठ गए। साहबा ने अर्ज की, हुजूर हब्बार बिन अस्वद आया है। जैसे ये सुना, कुछ साहबा ने तलवारें निकाल ली कि आज तो इसको नहीं छोड़ेंगे। इसने नबी पाक की शहजादी के साथ ऐसा किया और इतनी बड़ी ज्यादती की कि उनका हमल मुबारक भी जाया हुआ। अल्लाहु अकबर, नबी पाक ने जैसे ही कुछ हजरत हब्बार की तरफ देखा, हजरत हब्बार खड़े हुए, कहते हैं, ए रसूलुल्लाह, ए नबी अलैहिस्सलाम, आप पर सलामती हो, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे भागकर कई शहरों में गया, मैं वतन वतन घूमता रहा, मैं शहर शहर घूमता रहा, हुजूर मैं गैर अरबियों के मुल्कों में चला गया ताकि मुझे तलाश ना किया जा सके, मगर हुजूर मुझे बार बार आपकी नरम दिली, आपकी सिला रहमी, आपकी माफी याद आती रही। फिर अल्लाह करीम ने आपके वसीले से हमें हिदायत दी, हमें हलाकत से निजात बख्शी। या रसूल अल्लाह, मेरा जो वो अमल था, मेरी वो जो जहालत थी, मेरी वो ज्यादती थी, हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर, कहते हुजूर मैं अपने हर बुरे काम का इकरार करता हूं, एतराफ़ गुनाह करता हूं। अब जरा गौर कीजिए, हम अपने आप को उस जगह रखकर सोचिए कि हमारी साहबजादी के साथ, हमारे घर वालों के साथ किसी ने ऐसा किया हो और वह शख्स आगे आकर माफी मांग रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका की रहमतुल्लिल आलमीन तो देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि उसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत दे दी और इस्लाम पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। हाय हाय हाय, 100 बार तेरा देख के अफ और तरहम, हर बागियो सरकश का सर आखिर को झुका है, बर्ताओ तेरे जब के ये आदा से हैं अपने, आदा से गुलामों को कुछ उम्मीद सिवा है, हम नेक हैं या बद हैं बिल आखिर हैं तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, हम नेक हैं या बद हैं बिल आखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है अगर हाल बुरा है तो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज अपनी जात में नरमी लाइए। आज बहुत बड़ा मसला ही ये है कि सख्ती बढ़ गई है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, रिवेंज बढ़ गया है, कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है, गाली का जवाब गाली से देना है। अच्छा, कुछ लोग बड़ी अजीब बात करते हैं, कहते हैं, जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जनाब शरीफ के साथ शरीफ और बंदा बदमाश के साथ बदमाश कैसे बनता है। ये कौन सा बटन लगा है कि शरीफ आदमी जब मौका मिले बदमाश बन जाता है? होना तो ये चाहिए कि शरीफ के साथ भी बंदा शरीफ हो, बदमाश के सामने भी शरीफ हो। जब भी तो बदमाश ने तौबा करनी है, जब भी तो उसके दिल ने बदलना है। नबी पाक ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, मेरे आका ने दुआएं देकर, मौका जानकर, माफ करके उन्हें इस्लाम में दाखिल किया। तो आज मेरे बयान का यही मौजू है कि जब इस्लाम को इतना अच्छा मतलूब है कि जनाब अच्छे अखलाक हो, और आप जानते हैं कि अगर अच्छे अखलाक होना वो किस तरह काम देते हैं, 2-3 हदीसें सुन लीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कल कयामत के दिन मोमिन के मीजान अमल में हुस्ने अखलाक से वजनी कोई अमल नहीं होगा, और फहश गोई और बद कलामी को अल्लाह पसंद नहीं करता। फिर एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा पसंदीदा और कयामत के दिन मुझसे करीब तर वो होगा। सच बताएं, ये कितना बड़ा इनाम है एक उम्मती के लिए, इससे बढ़कर कुछ है कि आका फरमा रहे तुम में से सबसे ज्यादा मेरे नजदीक पसंदीदा, और फिर दूसरा इनाम कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा। अब वो आगे जो भी फरमाया मैं मान लेना चाहिए कि बस अब तो मैंने काम करना ही करना है, और वो बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, जिनके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। तो बस आज हम ये नियत करके जाएं कि अगर किसी से कोई बात खत्म की हुई है, रिश्तेदारों में कोई मामला है, फैमिली में कोई मामला है, दोस्तों में कोई मामला है, अगर दूरियां हैं तो माफी मांगकर, मोहब्बत से पेश आकर उसको दूर कर लीजिए। अब अपने दिल में किसी के लिए इंतकाम ना रखिए। देखिए ना, हम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ्वा फाफु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। सुभान अल्लाह, तो हमें भी चाहिए कि जब हम अल्लाह से ये कह रहे हैं कि अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, तो हम भी तो लोगों को माफ करें। अल्लाह से कह रहे हैं, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, और बंदों में किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये आज हम बात समझ जाएं और अपनी जिंदगी में ये तब्दीली लाएं। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
1: बिल यकीन अज़ीज़ आमीन। हमारे प्यारे आका मैसन इंसानियत सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत हुस्ने अख़लाक का वो आलीशान पेकर हैं जिसकी गवाही खुद कुरान पाक ने व इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम कह कर दी हैं, यानी और बेशक आप इखलाक के आला दर्जे पर फ़ाइज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक

आपका हिल्म, आपका रहम, आपका अफू दरगुजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सराबा मोहब्बत होना वो रोशन चराग हैं जो क़यामत तक पूरी इंसानियत के लिए मशअले राह हैं।

सामईन महतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना का आलम तो ये था कि जानी दुश्मन भी आपकी अमानत और दयानत की कस्म खाते थे। ताइफ के बाजारों में पत्थर खाकर और लहू

हान होकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर बद्दुआ के बजाय उनकी हिदायत की दुआ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रतों को मोहब्बतों से जीता और अपने अमल से ये साबित किया कि इस्लाम की असल पहचान सख्ती नहीं बल्कि नरमी और हुस्न अखलाक है। मेरी रब्बे ज़ुलजलाल के बारगाह में आजिज़ाना दुआ है कि या अल्लाह हम सब को, हमारे अहले खाना को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर सच्चे दिल से चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को बुख्स, कीना और हसद से पाक करके मोहब्बत, दरगुजर और अखवत के नूर से नूर कर दे। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा और हम सब का खातिमा बिल ईमान फरमाना, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। साथ देने का शुक्रिया। पर वीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

तरसी को कैशन कना ही कापन्याता सत्स अप्रतिम कार्यक्रम पूरे पूर आनंद की तहत तरसी को स्टेशन से कनेक्टेड दाह वास्ता पर्यंत तर तरस रोमांटिक हो या पुढील अप्रतिम गीता सह मी उदाहरण शो इन द वॉइसेस ऑफ प्रशांत नागटे अनिसाठी कलाकारांचा

नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री के साथ, रेडियो मनोरंजन के साथ, जहां प्रस्तुत है भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं उषा कौर यहां पर साथ निभाऊंगी और हम साथ रहेंगे 11:30 बजे तक। तो आप ही साथ दीजिएगा और सबसे पहले लेंगे गणेश जी का नाम और इस कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं।

दिन के 11 बज चुके हैं श्रोताओं, चले बढ़ते हैं आगे और गणेश चतुर्थी का पवित्र पर्व हम सब के जीवन में भक्ति, आस्था और उमंग लेकर आता है। ये वो शुभ दिन है जब हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं और उनसे अपने जीवन के हर विघ्न को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखना सिर्फ भोजन का त्याग करना नहीं होता, लेकिन व्रत का असली अर्थ है अपने मन को शुद्ध करना, अपने विचारों को पवित्र बनाना और बप्पा के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करना।

11:13 हुए हैं। श्रोताओं कहते हैं, कहा जाता है कि गणेश जी बुद्धि विवेक सुख और समृद्धि के दाता हैं। इसीलिए व्रत के दिन हम अपने मन में क्रोध अहंकार और नकारात्मक विचारों को दूर करने का संकल्प लें। सुबह स्नान करके गणेश जी की पूजा करें, उन्हें ध्रुव फूल और मोदक अर्पित करें और सच्चे मन से उनका नाम जप करें। सबसे ज़रूरी है श्रद्धा, क्योंकि बप्पा को दिखावा नहीं, भक्त का सच्चा मन प्रिय होता है।

0: 360.
1: Time check, 12 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा. आपको नमस्कार.
2: नमस्कार परी सभी को. मेरा नमस्कार. आज 9 सितंबर को बयान यूरोपे अलावाल की 162वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है. मॉरिशस के धर्म प्रचारक और सेवक पे अलावाल को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सैखवा में कई विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है. कल बड़ी संख्या में मॉरिशस वासियों ने सैखवा की ओर तीर्थ यात्रा की. वर्ष 2026 की इस तीर्थ यात्रा का विषय है पे अलावाल के साथ मिलकर एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज की ओर. कल शाम अपने प्रवचन में पोर्टिस के बिशप मोसेया जो मिकाएल जुरोन ने बयान यूरोपे अलावाल के उदाहरण का अनुसरण करते हुए समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की पीड़ा और उनकी आशाओं को सुनने का आह्वान किया. समाज के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने चर्च, गिरजाघर और सभी मॉरिशस वासियों के से भाईचारे, एकजुटता और गरीबों एवं जरूरतमंदों की चिंता के साथ मिलकर आगे बढ़ने का आग्रह किया. मॉरिशस मतलब आवास एवं भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को एक इंटरएक्टिव ऑनलाइन मैप जारी किया जिसके माध्यम से लोग सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंचने वाले सार्वजनिक मार्गों की आसानी से पहचान कर सकते हैं. फिलहाल इस इंटरएक्टिव मैप के मतलब मैप में चार क्षेत्र लाप्रुनेज, लामीवा, तमारे और फ्लाक को शामिल किया गया है. आने वाले समय में इसका विस्तार मॉरिशस के अन्य इलाकों तक भी किया जाएगा ताकि लोगों को सार्वजनिक समुद्र तटों और समुद्र तक उपलब्ध पहुंच के बारे में अधिक व्यापक जानकारी मिल सके. विदेश में कब्जे वाली वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले पर इजरायल की तीखी प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है. इजरायल के गुस्से का सबसे अधिक

0: सामना ब्रिटेन को करना पड़ा, लेकिन 12 देशों द्वारा एक साथ कदम उठाने के फैसले ने स्पष्ट रूप से इस आक्रोश की भावना को और तीव्र कर दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। पेटी श्री में बिले रिव्यास्य आश्रम में 76 साल के 76 years old श्री नंदत बाबूलाल, श्री नंदत बाबूलाल जिन्हें लोग ज्ञानदेव नाम से जानते थे और जो विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल के पिता थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनकी पत्नी देवंती बाबूलाल के मकान पेची शो में बिलिया रिव्यास्य से उठाकर बिलिया कृष्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। शिवाला रोड पेची पाकी मुताई ब्लांश में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री हरि नारायण अनतरास जिन्हें लोग रमेश नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले कृषि मंत्रालय में ड्राइवर का काम करते थे। इनकी अर्थी आज शाम साढ़े तीन बजे इनके मकान शिवाला रोड पे छिपा के मुताई ब्लांश से उठाकर मुताई ब्लांश कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। पागोडालीन कंकावाल क्यूपिट में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री गुंद्रनाथ तलू जिन्हें लोग बोबी नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 3:30 PM इनके मकान पागोडालीन कंकावाल के उपीप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio, Radio, Radio.
3: सभी सभी हमारे प्यारे श्रोताओं का मैं विदिता स्वागत करती हूं। दिन के 12:05 हो रहे हैं, सुहाना सफर के साथ आ गई हैं। हमारा टिकटॉक थोड़ी देर में लाइव होने वाला है, साथ देते रहिए।

0: सुहाना सफर।
1: प्रेम कहानी में लड़का लड़की होती है तभी तो प्रेम कहानी बनती है। हाँ, बहुत सारी कहानियाँ और भी बनती है। 12:14 हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का रेडियो मनोरंजन RM3 यहाँ पर सुहाना सफर की। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे श्रोता है, मैं जानती हूँ आप इंतज़ार करें कि भाई कब आएगी ये लड़की लाइफ पे। हाँ, आ रही हूँ थोड़ी देर में आ रही हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। अभी क्या है ना कि हम यहाँ पर गाने सेट कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, कुछ गाने जो आपको बहुत पसंद हैं वही गाने लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए, खूबसूरत गीतों की इस सलेक्शन में रफ़ी साहब का ये गाना भी हो जाए।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए जी, आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए, आपका साथ देने के लिए और आपके लाइफ में थोड़ी खुशियां लाने के लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश हमारे पुराने गीतों के साथ प्रोग्राम में यहाँ पे शुरू हो चुका है सुहाना सफ़र। और सुहाना सफ़र में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम में आकर अपने मैसेज के साथ यहाँ पर चार चांद लगा दिया, और उससे भी ज़्यादा हम इस बात के लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि आपका प्यार हमें मिलता है, आपका साथ हमें मिलता है। सिर्फ यही नहीं, आपके होते यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये काम काम नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर हम बैठे गप्पे लड़ाने के लिए, स्पेशली जब हमारा टिकटॉक लाइव चलता है। तो बस हमारे टिकटॉक लाइव के साथ जितने भी सारे दोस्त जुड़े हुए हैं आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। और खूबसूरत गीतों के इस सफ़र में एक गाना ऐसा है जो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने इन तमाम दोस्तों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए, हमारा जो टिकटॉक है इसमें काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आए हैं, लेकिन सबसे पहले व्हाट्सएप पर यहाँ पे मैसेज आया है, गुड वेडनेसडे आफ्टरनून फ्रॉम किरण पुरी, जीजीलाल, नरेंद्र कुमार नंदी, काला राम कारीगर, वैंकूवर कनाडा से रोज़ सुनते हमारा प्रोग्राम, थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। किरण जी, सो नाइस ऑफ यू, और मैं जानती हूँ कि अभी आप सोने वाले नहीं हो, भले ही आपको नींद आए आप सोएंगे नहीं, लेकिन चलिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे शैलेंद्र के लिए, प्रणाम, हाय देविका कैसे हो, हाय शवि, हाय ट्रैवल, हेलो अविनाश, गुड आफ्टरनून शवि, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, एम जी इवेंट्स नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तो उसी के साथ यहाँ पर अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं, राम राम आपको, और यहाँ पर गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे सुविधा पैतोप के नाम, और साथ में यही प्रोग्राम जाएगा विश्वानी के लिए जो है फ्रॉम बोबास, एंड साथ में यही गाना मदन पांचू के नाम डेडिकेट करते हैं, उत्तम जी नमस्कार, एंड साथ में ये गाना जाएगा डैनी जगरू के लिए ऑफ गुड लेंस जो कि है फ्रॉम मम जिलजान, पूजा नमस्कार त्रियोले से साथ दे रही हैं, मॉम राजमनी महादेव के लिए गाना, एंड साथ में मदन पांचू के लिए भी, एंड नम्रता स्वागत है नमस्कार, सुल्ताना खानदा मैकमैन ओके किरणपुरी और उनके आपके दोस्त हैं, चलो अच्छा लगा जानकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। प्रीता के लिए गाना होगा, और साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 5250620000।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: दिन के 12:25 हुए हैं। मेरा प्यार वो है भाई, प्यार तो वो होता है जो इंसान को जीने दे, जो इंसान को सांस लेने दे, जो इंसान को ये महसूस कराए कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे, जीवन में कुछ भी हो जाएंगे हम बस एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के दुख में साथ देंगे, एक दूसरे के सुख को एंजॉय करेंगे। और प्यार वो होता है जो आप कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते। प्यार दिल से एक फीलिंग होती है जो दूसरे के लिए निकलता है, और जब प्यार सच्चा होता है ना तो एक दूसरे को कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, दिल की बात दिल तक पहुंची जाती है। चलिए यहाँ पर हमारा अगला गाना सूबी ने हारेश मानुष काफिया नजीमा गोबर्धन हेमा रिकाई और मनीता के लिए होगा। राम राम आपको मनीता जी, थैंक यू सो मच हेमा जी हमारे इस गाने को एंजॉय करने के लिए। थैंक यू नेहा, आप हमारे गीतों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर परी आ गई हैं, क्या बात है क्या बात है, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। एंड साथ में यहाँ पर हम इंदिरा रामधोनी को भी वेलकम कहेंगे। ओके, इट्स इंदिरा रामधोनिया। तो यहाँ पर खूबसूरत गीतों के सिलेक्शन में नेक्स्ट गाना होगा गंगाराम फैमिली के लिए, वाइफ सुखवंती, ये है अशोक की तरफ से। और अभी अमन जो है वो हमारे साथ है कहते हैं, और गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे फॉर NTR निर्मला जगसर लोलिता। एंड यही गाना होगा आपके लिए इंदिरा जी जो मौसल मौसा तमगे से साथ दे रही हैं। आपकी माँ शांता आप बोल रही हैं कि वो 79 ईयर्स की हो गई है आज, विशेष पूरी फैमिली की तरफ से। यहाँ पर प्रेरमा हमारे साथ है एंड अनिल कुमार जो है फिजी आइलैंड से हैं कहते हैं कि नेक्स्ट गाना उनके लिए। रफ़ी साहब का गाना तो हमने चलाया, बहुत सारे और भी हैं जो धीरे धीरे हम चलाएंगे। नेक्स्ट गाना होगा तो यहाँ पर आपने नाम तो नहीं लिखा लेकिन शिबेल में जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, सुविता आपकी तरफ से उनके लिए गाना होगा। माधुरी जी कैसी हो आप, ठीक? चलो आपके लिए और लाली के लिए जो साथ दे रहे हैं सब दरिंदर फैमिली जो है कौंदमास पावे से, उनके नाम होगा गाना। एंड यही गाना हम डेडिकेट करेंगे पूनम अनंत के लिए, साथ में रिशान के लिए यही गाना होगा प्रेमिला के नाम। और टार्जन खान भाई थैंक यू सो मच, अतवल महेंद्र कौर आपके लिए भी।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.

0: सुहाना सफर।
1: साथ तो हम हैं और साथ तो हम चल ही रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कभी नहीं भूलोगे। जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं कहीं भी रहूँ, कभी भी कहीं भी रहूँ, आप लोगों का प्यार हम तक ज़रूर पहुँचेगा। चलिए, गीता रघुबर हमारे साथ हैं, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू शानिया पलक। ये है रघुबर फैमिली की ओर से। रेखा जी नमस्कार, साथ में विमी हमारे साथ हैं। चलो जी, यहाँ पर रवीना टंडन की एक बहुत बड़ी फ़ैन है जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। सुनीता जी नमस्कार, आपके लिए गाना होगा और साथ में ही गाना साकुन के लिए, और कहते मेरी प्यारी सी बहन के लिए गाना, ज़रूर क्यों नहीं। केशनी कुमार नमस्कार, प्रीता थैंक यू, आशा लखनौत नमस्कार। एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा रोबिन वुड पांडे, ये कैसे हो भाई पांडे जी। रीना जी के लिए नमस्कार आपको, मेरी बेटी परी और अदिति के नाम, ओके जी ज़रूर, लवली गाना, थैंक यू सो मच अटवल जी, आपने पसंद किया। एंड साथ में यहाँ पर प्रिया हमारे साथ हैं, एंड यही गाना हम सुरेखा जी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। निखिल के लिए जो अब रोड में है, उनको मिस कर रहे हैं, तो बेटे का प्यार शायद आप तक पहुँच जाएगा एक मैसेज शायद। यहाँ पर उमा जी हमारे साथ हैं, विक्रम भुवन नमस्कार कैसे हो विक्रम जी। विक्रम कहते हैं आप तो कॉमेडियन हो, कॉमेडियन थोड़ी ना हो, बस सच बोल देती हूँ कभी कभी, हैं लोगों को कॉमेडी लग जाती है। ऋषि कुमार नारायण नेक्स्ट गाना आपके लिए, मालिनी बिश्राम नमस्कार, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करें सभी स्टाफ के लिए, पेशेंट्स के लिए हिमाची ने गाना मांगा है। यहाँ पर वैनकूवर से बेटी के लिए दीक्षा, और साथ में रोशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देविका के लिए गाना मांग रहे हैं। एंड एंजल गोपी हेलो कैसे हो, शिवमती

0: गणपति पप्पा मोरिया. चलो जी, यहाँ पर फ्रांस से वी हैव फ्रेडरिटा लुगल. ओके, हाय, वेलकम, थैंक यू सो मच. और चलिए इसी के साथ अभी जो नेक्स्ट गाना होगा, हम क्वीन, आपके नाम क्या बात है महारानी जी, स्वागत है आपका.
1: RL Free Radio. Radio. Radio.
0: चलिए जी, यहाँ पर गिरीश पटेल जी हमारे साथ हैं. जय पशुपतिनाथ जी, बिल्कुल जय हो. और कल्याणी हरि, आपका भी हम वेलकम करते हैं.

तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान भाई। अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो हमारे टिकटॉक लाइव के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपको पता चले कि भाई हम हैं यहाँ आपके साथ, ऐसे नहीं हवा में बात करें।

चलिए तो अब जो हमारा गाना आ रहा है नेक्स्ट गाना आ रहा है बहुत ही खूबसूरत सा गाना ये हम इंदु अनुषा काजल की तरफ से उनके हमित के लिए जो कनाडा में उनके लिए गाना डेडिकेट करेंगे सुरेखा संजय राजीव जवाहिर रोहित रिटा रेड्डी वे हम माकमन जो कि लाहौर पाकिस्तान में है किरण जी ने बोला है प्लीज़ उनको मेरी तरफ से हेलो बोलना जी बोल दिया हमने साहिल आप भी हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए आपका स्वागत करते हैं अशोक हमारे साथ और वी हैव विवियन तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना हम डारन श्वेता रविश प्रशा रविश आप और फैमिली के लिए होशनुआ से उनके लिए गाना होगा ट्विंकल और साथ में हमारे हैं सुरेखा जी श्यामा जी सब साथ में हैं और बस गाने एंजॉय कर रहे हैं

0: सुहाना सफर।
1: चलिए तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने कोई नाम मिस नहीं किया, अगर मिस कर दिया तो दीप्ति, संजू, शवीना, सुनंद, नायमा देवी बंदन, जयविक, सृष्टि, सुचिता कुलमत उनके बेटे लक्ष्य के लिए गाना मांग रही हैं। एंड वहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्यामा जी, ज्योति लोबिन शामुनी से हैं और गाना आपके लिए होगा। सुनील भुवन आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फिदुदिलजीत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड वी हैव लक्ष्मी नेक्स्ट गाना अनुरोध के लिए जो इससे हमारे साथ जुड़े हैं सुन रहे हैं एंड साथ में यही गाना होगा फॉर यू। साहिल आगे हमारे प्रोग्राम में हमारे लाइव के साथ भी जुड़े हुए हैं तो चरित्र राम तुला के लिए गाना होगा और वहीं पे अंदिनी सीना राम स्वामी हमारे साथ हैं। नमस्कार शवि, आपका वेलकम है, बहुत प्यार से आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे गाना होगा आपके लिए, गाना वैसे तो फरमाइश की गई है बहुत सारे तो मैं हाय कहूँगी टू सोफी, चांदनी एंड ये गाना होगा उत्तम जी के लिए, रेक नमस्ते कैसे हो बिंता और साथ में माधुरी जी आपके लिए नेक्स्ट गाना डेडिकेट कराया जा रहा है। रेक कहते पति के लिए गाना डाल दीजिए और आपके पति का नाम तो आपने लिखा नहीं लेकिन थैंक यू सो मच। यहाँ पर साधना मुकेश हमारे साथ लाल माझी से जुड़े हुए हैं एंड ये गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए, रव लवली गाना, थैंक यू रागिनी, थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग। और बबीता जी नमस्कार हम आपको, अफीज़ा हेलो बबीता नमस्कार, श्यामा माहिर अली कैसे हो आपको नमस्ते, लव यू सो मच, थैंक यू जी। दीक्षा पर्सनुला हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप, गाना कौन सा होगा, बलदेव गुरुदत्त जी शायद आपको पसंद आए। And we have greetings from Australia and कहते हैं next गाना for Kailash and Sarita साथ में शामल के नाम, welcome आपका। और ये गाना सुभाष जी के best friend राज के लिए, पूर्णिमा गोपाल के लिए जो साथ दे रही हमारे।

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए अगला गाना सुरेखा जी की तरफ से उनके हस्बैंड आनंद कदवारू के लिए, ऋषि जो दागोचिया से उनके लिए, शिवचंद नंदिनी, निरेका, शैला बाबूराम और आरती के नाम. और जब आप लोग मैसेज भेज रहे हैं तो प्लीज अपना नाम भी जरूर भेजिएगा ताकि हमें पता तो चले कि गाना किसने मांगा और किसके नाम करना है. यहाँ पर हमारे साथ है रेणुका जग्गू और यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे उन दोस्तों के लिए जिससे मैं ड्राइव कर रहे हैं. यहाँ पर हमारे साथ रेशमी है फ्रॉम आयरलैंड, उनकी पूरी फैमिली जो मॉरिशस में है, गाना उनके नाम डेडिकेट करेंगे. और चांदनी सिरतन जी, नमस्कार और स्वागत है आपका.

0: चलिए तो अगला गाना नेहा मनीषा अनिल बबीता रजनी मुहाबिर और विकास जी जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं आपका स्वागत करते हैं, कविता अनु और साथ में हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं। वैसे अगला गाना क्या, हम तो यही कहेंगे कि अब हम बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर जो आप एक बजे सुनेंगे। यहाँ पर चांदी से रतन कहते हैं उनके हस्बैंड महेन के लिए अगर कोई गाना हो जाए तो ज़रूर नेक्स्ट गाना उनके नाम। एंड साथ में यहाँ पर थैंक यू सो मच साथ दे रहे हैं आप लोग हमारे और इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सो गुड टू सी यू गाइज। सीउचन नंदिनी आपका गाना हम बता चुके हैं कि धड़कन जो है नई फिल्म है, यहाँ पर सिर्फ पुराने गाने चलते हैं, सो प्लीज़ यहाँ पर आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, नए गीतों का प्रोग्राम होगा तो नए गाने सुन लीजिएगा। नीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए इसी के साथ अगला गाना होगा समाचारों के बाद।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: एक बचा है।
4: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमा नमस्कार।
5: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज 9 सितंबर को बियन पहलावाल की मृत्यु के 162वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मॉरिशस की इस महान संत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सेंट क्वा में कई विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। कल कई मॉरिशनों ने सेंट क्वा की तीर्थ यात्रा की। वर्ष 2026 की इस तीर्थ यात्रा का मुख्य विषय है पहलावाल के साथ एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे वाले समाज की ओर। कल शाम दिए गए अपने संदेश में मोंसिनियर जॉन मिकाएल जुरन ने बियन पहलावाल का अनुसरण करते हुए सबसे कमज़ोर लोगों के दुखों और उम्मीदों को सुनने का आह्वान किया है। समाज की समस्याओं के सामने उन्होंने चर्च और सभी मॉरिशस वासियों से भाईचारे, एकजुटता और सबसे गरीबों की परवाह के साथ मिलकर आगे बढ़ने का आग्रह किया है। आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कल कई मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ तमाहे किला पुनर्स इलाके का दौरा किया। इसका उद्देश्य उन इलाकों की पहचान करना था जहां जनता का समुद्र तट तक सार्वजनिक प्रवेश अवरुद्ध है और ये सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक समुद्र तट तक पहुंच दर्शाने वाले बोर्ड लगाए जाएं और वे स्पष्ट रूप से दिखाई दें। मंत्री ने इसके अलावा अपने मंत्रालय की वेबसाइट पर एक नए इंटरैक्टिव मैप प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लॉन्च करने की घोषणा की है जिसमें सार्वजनिक समुद्र तटों और समुद्र तक जाने वाले रास्तों की सूची दी गई है। और विदेश में अमरीकी सेना का कहना है कि उसने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को द्वारा अमरीकी नौसेना के युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हमलों के बाद ईरान के 5 कच्चे तेल के वाहक जहाजों को नष्ट कर दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

0: दिन के 1:06 हुए हैं. विदिता का साथ दे रहे हैं आप लोग रेडियो मनोरंजन पर RM3. स्वागत है आपका.
1: सुहाना सफर.
0: चलिए अगला गाना हम डेडिकेट करते हैं नेहा, मनीषा, अनिल, बबीता, रजनी, महावीर, विकास जी और कवितानु के नाम. साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको कहेंगे स्वागत है आपका, जहाँ से भी साथ दे रहे हैं और हमारे गीतों को एंजॉय करने के लिए भी. मौसम जो है थोड़ा भीगा भीगा ठंडा ठंडा सा है. कृष्णन का हम स्वागत करते हैं, रुख बहार का भी वेलकम करते हैं और साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा गाना होगा उनके बारे में हम सोच रहे हैं जो इस समय घर पर है, गर्मा गर्म लंच ले रहे हैं. तो बना पेची दुर्गा आपका स्वागत है, किंग यूजर आपका भी वेलकम करते हैं एंड साथ में यहाँ पर चलिए जी आप अगर नाम भेजिए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा. जो भी मुझे मैसेज कर रहा है टिकटॉक पे प्लीज़ सेंड मी योर नेम. यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा संगीता के लिए जो इक्वायोस से है, इंदिरा राम सो होक, नमस्कार आपको. और यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए. शांति कैसी हो आप, सब ठीक सब बढ़िया. संतोष, वी हैव संतोष फ्रॉम हॉलैंड. एंड चलिए इसी के साथ यहाँ पर सुरेखा जी आपके लिए गाना होगा एंड डेडिकेट करते हैं ये नेक्स्ट गाना विकिंग के लिए. कहते हैं प्रणाम टू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. यहाँ पर हमारे साथ हैं, कहते हैं आपको याद है आप लोगों ने रेडियो मनोरंजन की टीम जब आई थी तो एक छोटी सी प्रिंसेस थी, उनसे आपने रेस्टोरेंट में केक कटवाया था जी, मुझे बिल्कुल याद है. एंड उनको हमारी ओर से बहुत सारा प्यार दीजिएगा. मुझे पता है उसके अगले दिन उनका शायद बर्थडे भी था तो हम लोगों ने उसको केक

ये गाना हम देविका किस तरह माँ के नाम डेडिकेट करते हैं, साथ जुड़ी हैं अभी हमारे गाने पसंद तो करिए ना आप। चलिए देविका जी एंजॉय करें और प्रेमिला जी को भी नमस्कार।

0: अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो और हम तो अजनबी नहीं हैं, हमें तो आप पहचानते हैं।
1: सुहाना सफर
0: और हमारे लिए हमारे दोस्त भी अजनबी नहीं है, वीमा पेंचा, लीजा, नवीन कुमार जिनका कल बर्थडे था, उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, रोशनी प्रणाम नमस्कार। अमृता जगन्नाथ कैसे हो आप? हेलो रॉक्स कहते हैं हाय अजनबी। अरे अजनबी थोड़ी ना है हम। करुणा जी कैसी हैं आप? चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना आपके लिए एंड यही गाना जाएगा फॉर अंशु। हाय कैसे हो, सलाम फ्रॉम अंशु एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर राजन चदी जी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकल जी कैसे हो, सब बढ़िया सब ठीक? चलिए आपके लिए गाना होगा। एंड राज बिस्मोहन थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पर गीता जी कहती हैं कि हेलो जी वेदिता जी कैसे हो? मैं बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं लेकिन ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ, आप लोगों का साथ है और क्या चाहिए हमें।
2: RM3 Radio.

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: चले जी, कुछ लोगों ने यहाँ पर हमें मैसेज भेजा है, कुछ लोगों का तो पता नहीं, उनका नाम भी नहीं है. एंड एनीवे, दनिश लवीश के लिए गाना होगा टू वाइफ हीना. ये है अख्तर की तरफ से. थैंक यू फॉर लविंग द शो, फॉर द लव यू हैव बीन सेंडिंग अस. थैंक यू सो मच. अनुराधा के लिए गाना होगा. विक्रम, आपके लिए किसी ने गाना मांगा है, कहते प्लीज़ मेरे हस्बैंड विक्रम के लिए गाना, और यहाँ पे है तीन डॉट. तो चलिए आपके लिए.

भाई हवा का ये जो झोंका है आजकल कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है, पत्ते उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सारी चीजें उड़ती हुई नजर आ रही हैं, कहीं आपका छाता तो नहीं उड़ा? चलिए हम तो यहाँ पर प्यार उड़ा रहे हैं, हवाओं में, फिजाओं में, जहाँ भी जाते हैं बस प्यार ही लेकर आते हैं, प्यार बांटते हैं, और यही हमारा काम है। कविता दिफ्खे से साथ दे रही है और नेक्स्ट गाना जो होगा हम उनके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, और साथ में गाना होगा किसके लिए, फॉर मोहन, रेखा, अंबिका, प्रेमिला, सबीना। ठीक है, चलो जी गाना सुनते हैं।

भाई हमारे भी कितने सारे हमराही हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट गाना किसके नाम डेडिकेट करते हैं शाम के लिए, अब्दुल रशाद और यहाँ पर ट्विंकल की तरफ से उनके हस्बैंड कवल के लिए, निशी की तरफ से उनके हस्बैंड विक्रम के लिए. वी हैव जाना, वी हैव अवनी, सलीमा, श्रेया, सरस फर्नांडिस, ओके, और यही गाना शोभा, वेदना, अनुष्का, मरियम, संगीता सुखारी, राम कौर जो कि मलेशिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे, और वीना गंगाधर आप.

0: मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। चलिए आप भी एक कदम बढ़ाए, हम भी एक कदम बढ़ाते हैं। ज़्यादा नहीं तो आप हमारे टिकटॉक लाइव को फॉलो कर सकते हैं रेडियो मनोरंजन पर, और साथ में यहाँ पर जो आपने मैसेज भेजे हैं उसको पढ़ने का समय हो गया। चलिए जानते हैं किशोरदा के बाद भी कौन सा गाना आएगा, सुनेंगे लेकिन पहले डेडिकेशन।
1: सफर।
0: अगला गाना हमारा सनी फिल्म से लिया गया है। ये फिल्म आई थी 1984 में, और अभी ये जो गाना है हम डेडिकेट करना चाहेंगे नील के लिए, जो समय ड्राइव कर रहे हैं हमें सुन रहे हैं। ये गाना विशानी के नाम, चाचा ईश्वर, चाची फिया के लिए, जो कि शुभ घनिया से हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई सभी गोपाल फैमिली की तरफ से सभी मॉरिशंस को हम विश करते हैं पायस गणेश चतुर्थी, और वो कहते हैं कि पप्पा जब आए तो आपकी ज़िंदगी में पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ लेकर आए, ताकि आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल हैं वो दूर हो जाए। तो चलिए पूरे प्यार के साथ आपने इतना प्यारा मैसेज भेजा है नील, थैंक यू सो मच। अगला गाना जो है हम आपके नाम डेडिकेट करते हैं, और साथ ही साथ आपके पूरे गोपाल फैमिली के लिए। एंजॉय।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: भाई मेरी भी याद आएगी जब हम नहीं होंगे और उम्मीद करती हूँ कि दिल में जो प्यार मैं छोड़ के जा रही हूँ वो हमेशा आपके दिल में रहेगा। अभी फिलहाल के लिए सोनी भाई दुखी श्री और सरोज सांता मजहर कीर्ति सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनसुया हमारे साथ है। श्रीन राम जोन हेलो जी वेलकम जी कैसे हो आप, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। मरियम थैंक यू सो मच आपका मैसेज मिला हमें। पृथ्वीराज चरण नायक आपका हम स्वागत करते हैं। और यहाँ पर प्रीति सकाराम कहते हैं मेरी फ्रेंड है लिंदा उनके लिए आप गाना चला सकती हैं जी ज़रूर। मालिन जी आपका वेलकम करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सस्ती गुरदयाल का भी और यही गाना होगा आपके लिए। रेशमा राम की सुन कैसे हो आप, अमीरा कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं। और यही गाना हम देवी के नाम चला रहे हैं। और प्रकाश लालचंद कहते हैं कि किशोरदा का कोई गाना है, ऑफ कोर्स है, नेक्स्ट गाना उन्हीं का है तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना आपके लिए। और श्रेया को गाना बहुत अच्छा लगा इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड चलिए जी यहाँ पर गीतों का सफ़र जारी रखते हैं। एंड पूर्णिमा गोपोल उनके हस्बैंड अजय यकीन ये मांग रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर गीतों का हमारा सिलेक्शन पहले हो चुका है इसलिए हम सिर्फ डेडिकेशन ले रहे हैं। और वीना बोइरो आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। साधना कितारत नमस्कार, यह है यूके की साधना जो साथ दे रही है हमारे। और यहाँ रेशमा जी ने कहा है कि आपके लिए एक जादू की झप्पी भेज रहे हैं, हमारी ओर से दो जादू की झप्पियाँ आपके लिए भी। प्रीति कहती है उनकी सासू माँ का आज बर्थडे है, अनीता सिंचन उनका नाम है तो उनके लिए भी गाना होगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं आपके लिए वन किश। आप गलत जगह पे गलत इंसान को ढूंढ रहे हो, आपको कहीं और पूछना था। चलिए तो यहाँ पर गाना होगा आपके लिए परी माधुरी दीप्ति। और साथ में यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करते हैं ज्योति जी आपके लिए। चलिए गीतों का सफ़र जारी रखते हैं। यहाँ पर विद्यानी वजागीर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके नाम भी डेडिकेट करते हैं यहाँ पर गाना। और ये प्रीति हमारे साथ हैं तो प्रीति जी के लिए भी। और गीतन चलिए आपके नाम

हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। चलिए तो यहाँ पर प्यार के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रीति जो है अपनी बेटी इलियाना और आशी के लिए गाना मांग रही है। नंदिनी से उचन का वेलकम करते हैं। सुनील जी सब ठीक ठाक है, वेलकम है आपका। बेबी सिया के लिए गाना होगा नंदा की तरफ से। और गीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, राधा राधे राधे बोल रही है। और वहीं पर किसी ने कहा कि भाई अमिताभ बच्चन का गाना हाँ बिल्कुल, उनका गाना आता है तो हमारा तो मूड बदल जाता है। सलोनी दोहा जी, नेक्स्ट गाना आपके हस्बैंड, आपकी बेटी लवीश और साथ में भूमि के नाम हम डेडिकेट करेंगे। विषम रामदेव, थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे गीतों के इस सफ़र में हमारा

जो गाना है पसंद आ रहा है तो एक और भी प्यारा सा गाना है सागर फिल्म का जो विषम मैं आपके नाम डेडिकेट करना चाहूंगी एंड थैंक यू सो मच आपका साथ है और यही गाना हम फोटो मिर्ज़ा के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस समय हमारे साथ हैं सभी दोस्त जो साथ दे रहे हैं घर पर हैं खाना खा रहे हैं चाय पी रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं काम कर रहे हैं जहां से भी साथ दे रहे हैं वेलकम

0: सच मेरे यार हैं बस वही प्यार हैं जिसके बदले में कोई तो प्यार दे। तो प्यार तो ही लेकर आए हैं हम आपके लिए आपके अपने रेडियो पर, जी हाँ आपके अपने प्रोग्राम में, और इस समय आप विदिता का साथ दे रहे हैं आपके अपने रेडियो मनोरंजक पर। चलिए इसी के साथ समय हो गया है जाने का, हम किरण का वेलकम करेंगे हमारे प्रोग्राम में, एंड साथ ही साथ यहाँ पर सुनीता वीरिया शामुनी से साथ दे रही है। हाय वीना, हाउ आर यू? खाना बन गया? चलो आते हैं थोड़ी देर में मिलने। यश के लिए गाना होगा और साथ ही साथ यहाँ पर हम गाना दीप्ति जी आपके लिए, एंड कोई है जो ब्लैंकेट के नीचे गाने सुन रहे हैं, विशाल किन्नू नमस्कार, स्वागत है आपका। एंड यहाँ पर सभी दोस्तों के नाम गाना छोड़े जा रही हूँ, थोड़ी देर में अरविंद के साथ आप सुनेंगे धरोहर के सरोवर। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल
1: दोस्तों। जिंदगी हसीन है,

0: दोपहर के 2 बजे है। चलिए एक बार फिर सुन लेते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमान नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणी, सभी को नमस्कार। आज 9 सितंबर को बियन हुए पहलावाल की मृत्यु के 162वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मॉरिशस के इस महान संत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सैंखवा में कई विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। कल कई मॉरिशनों ने सैंखवा की तीर्थ यात्रा की। कल शाम दिए गए अपने संदेश में मोंसिनियर जोमिकल जुरन ने बियन हुए फवलावाल का अनुसरण करते हुए सबसे कमजोर लोगों के दुखों और उम्मीदों को सुनने का आह्वान किया है। समाज की समस्याओं के सामने उन्होंने चर्च और सभी मॉरिशस वासियों से भाईचारे, एकजुटता और सबसे गरीबों की परवाह के साथ मिलकर आगे बढ़ने का आग्रह किया है। आवास और भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कल कई मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ तमाहे के लापोनोज इलाके का दौरा किया। उद्देश्य उन इलाकों की पहचान करना था जहां जनता का समुद्र तट तक सार्वजनिक प्रवेश अवरुद्ध है और ये सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक समुद्र तट तक पहुंच दर्शाने वाले बोर्ड लगाए जाएं और वे स्पष्ट रूप से दिखाई दें। और विदेश में यूके के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अचानक आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार को विमान सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। इस गड़बड़ी की वजह से लगभग 2000 उड़ानें पूरी तरह से रद्द करनी पड़ी हैं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: RM3 Radio, Radio, Radio. RM3 Radio, Radio, Radio.

0: अमृत सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से। तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
1: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में तो लोग स्वागत करत है जा हमें अरविंद, साथ में हमने की तकनीकी सहयोगी संजू हवन। संजू अभी काफी समय बाद हम के संगे आल हुआ। आज हमने कार्यक्रम के तनखुन अलग बनाब जा, धन्यवाद बोल जा आप लोग हमी के साथ देते रहला। ये कार्यक्रम जन्मे करेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और वो महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत करल जात बा। जब हमी भोजपुरी के बात कहने जाए तो भोजपुरी कविता भी चलावला ओकर में। अभी भोजपुरी कविता लड़का लोग के पढ़ाई ला जा हमनी अभी जन सर्टिफिकेट कोर्स चलत बा ओकर में, खास तौर पर मॉरिशसीय कवि लोग के, मॉरिशस के कवि लोग के कविता पढ़ाई ला जा और एकर में उभरता कवि लोग हो जा। आज हमनी हमी के सहयोगी महात्मा गांधी संस्थान में एमबीसी में भी हमी के सहयोगी रहलन श्री गुलशन शुक्लाल से बात करब जा। दुगो कविता बा, दुगो कविता पर चर्चा कर ले हुआ, वो कविता सुन भी वही लिखले उन कविता और वो दोनों कविता हमनी के इतिहास हमनी के भोजपुरी से बहुत जुड़ल बा। खासतौर पर जो जो शब्द बा ओकर में सुनब तो बड़ी अच्छा लगे।

0: तो आज के कार्यक्रम में उनकर से वार्तालाप और उनकर से ई कविता सुनब जा और एक दो गीत भी। तो एक बार फिर तो के स्वागत करते जान के ई कार्यक्रम में।
1: RM3 रेडियो।

0: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से। तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
1: मॉरिशस के भोजपुरी साहित्य के जो लेक्चर सीरीज बाद जो हमने के सर्टिफिकेट इन भोजपुरी मॉड्यूल में एकर में हमने मॉरिशस के एक दुगो भोजपुरी कवि लोग के लिए जा और साथ साथ में चार पांच गो कविता चुनने ही जा। तो आज हमने संगे हमने के सहयोगी महात्मा गांधी संस्थान में हमने के सहयोगी श्री गंगाधर सिंह शुक्लाल जी हुआ गुलशन शुक्लाल उनका जन्म करेला और वो उन

0: हुनकर काहे हुनकरा लेल है जा आज धले एगो लेक्चर के रूप में नहीं बल्कि एगो कवि के रूप में उनकर दुगो कविता हमनी के जो मॉरिशस के भोजपुरी साहित्य जो पुस्तक है ओकर में दुगो बा एगो है इतिहास के अचार और एगो है लेहोप के पानी यही दुगो कविता हमनी चुन ले है जा तो हम संगे गुलशन जी हवन गुलशन जी नमस्ते
1: नमस्ते अरविंद भाई नमस्ते सब कोई
0: तो गुलशन सबसे पहले तोहर आवाज में है एगो पहल का कविता जो बा इतिहास के आचार सुनी ल जा
1: चला सबसे पहला का बहुत बहुत धन्यवाद ये कविता के अपन पाठ्यक्रम में रखे के ये किताब में रखे के और ये आज खुशी बात तोहर छात्र लोग खातिर हम सकत हैं एक राय एक बार पढ़े पहला पढ़ब चाहे इतिहास के आचार एगो चुंगा मार्किन तोपल जोन के मार से हड्डी कांपल उही बांस जोन पिठी पर बरसल उखड़ल बाम के मसाला में डूबल मोटा फरुआ तेल पियावल एगो चुंगा मार्किन तोपल एगो पोचिस माइके से आइल महीन फरुआ पीमा सनाइल चाबुक जोन से चमड़ी छिलाल तीता सिस्की में छोंक लगाल एगो पोचिस माइके से आल एगो सीसी घाम से काल एगो सीसी घाम से काल मोटा मोटा फोका लाल एड़ी में जोन कंटा गड़ाल रोआ भरल सुखल गाल एगो सीसी घाम से काल छोटा मड़ैया लपाई छवाल ऊंचा मचान गोबर लिपाल रखती है सब के बरीस साल जे जनती होत ऐसन हाल छोटा मड़ैया लपाई छवाल जे जनती होत ऐसन हाल कि अपन खून अपन लाल भूल के अपन पुरखन के काल करत जैसे बकरी अग्राल जे जनती होत ऐसन हाल चोंगा पोचिस से फरवा निकाल संती सुखल भात में डाल खियती कवर निमन मिसाल बरसत अखवा फिंजत काल बिसरत न कबो पुरखन के हाल।
0: तो गुलशन जी कविता सुन के धला उ सब ठेठ भोजपुरी शब्द चलाल बाइकर में जो हमने सुनने जा एक एक एक करके देख लिया जाए जो एगो पहनाम छेदा जिकर में बोले हुआ एगो चुंगा मार्किन तोपल जोन के मार से हड्डी कांपल उही बांस जोन पीठी पर बरसल उखरल बाम के मसाला में डूबल मोटा फरुआ तेल पिरायल पिरावल एगो चोंगा मार्किन टोपल है में कुछ बोलत हुआ।
1: देखा अरविंद ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में जाप जा पर ओकर से आगे एक मिनट लेके तोरा खाली एगो संदर्भ बोला हम कौन ची कर ले है यही कविता में जाने लग गांव के हैं जा भोजपुरिया हैं जा और कविता हुए से जन्मेला जहां तू पलल बढ़ल हवा और हमने के भोजपुरिया संस्कृति में एगो चीज बहुत चलेला चलल बा और हमने के रोजाना के संस्कृति के हिस्सा है वह अचार पीमा कॉफी है सब ये सब हमने काहे डालत लीचा हमने के पुरनिया लोग काहे करत हल है काहे कि उ जमाना में जब फिजदेव नहीं रहल चीज के ढेर दिन रखे के कड़ा हुए यार गरीबी में कबो सब्जी नहीं मिली कबो बाढ़ चलाल कबो सूखा चलाल तो कैसे करबा तनी कौन अपन अचार निकाल के दुगो पीमा कॉफी सान के भात खा ले बा और बहुत स्वाद आवे ओकर में है हमने के बचपन है एकर में बढ़ा हो लई सा है एगो संदर्भ बा हमने के जोन संस्कृति के संदर्भ बा और एगो दूसरा संदर्भ बा हमने के जोन आज बा ओकर में का होता हमने के लइका लोग हमने के इतिहास भुलाता और जब हमने के इतिहास भुलाता तो ऐसन ऐसन काम करता जो हमने के इतिहास के कहीं ना कहीं अपमान निखर करता हमने के पुरखन के त्याग के अपमान करता तो है दुगो संदर्भ हुआ एगो हमने के अचार और पीमा कॉफी होला और एगो जोन वर्तमान के हमने के जोन सच बा जहां हमने भुला थे सब एगो एगो पल हो कबो न कबो कवि के कैसे एगो क्रिएटिव पल रहेला ओकर में सोचाल कि जे हम सकते अपन इतिहास के अचार डाल के रखे और आज जोन समय बा जहां हमार लड़का लोग अपन इतिहास भुलाता तो आज वो लोग के हाँ इतिहास हुआ तनि कुन निमन से मिस के एगो सुखल भात में दू कवर लोग के मुंह में डल के

जब लोग के अपन इतिहास के स्वाद मिलत तो लोग वापस जानत कि कौन दुख से यहाँ पहुंचल है सब। तो हई कविता के मूल भाव हवे बा। अब एकर में जो हम तुहर तो पहला अनुच्छेद जैसे बोलबा

0: प्रकियोल में मार्किन के लुगा से। तो पहला हवे है कि एगो बड़ा चोंगा रहत और उकर में मोटा मोटा जो जे चोंगा में अचार रखत हुआ तो पतरका लमका बिलंबी के पतरका फरुआ नहीं रख ओकर में मोटा मोटा बूत रही ऐसे मोटा मोटा टुकड़ा रही। तो चोंगा में कौन चीज के अचार डलती हम जोन बांस हमने के पूर्वज के पीठी पर लगा रहल हो बांस के जोन पीठी पर जोन बांस लगा रहल ओकर से जोन लोग के पीठी पर बाम निकल अथी निकल रहा है मखूज बोलीला सा ओकरा बाम बोलत रही सब भोजपुरी में हाउ डलती है सब के मोटा मोटा फरुआ बना के खूब तेल डाल के एगो चोंगा में बन करके रखती हम उसी ही दूसर कवा में जाती थे पोचिस रह पहले के जमाना में जब जब बहु घर आवे अपन तब मायका से एगो पोचिस आनी एक तनिकुन अचार आनी उतना औजौचे संगे जे औजौचे बा उतना धनवान हों सता तब मायके से आनल एगो पोचिस में हम कौन चीज रखते बस की पोचिस छोटा छोटा चीज के एकदम तो कर में महीन महीन पतरा पतरा है मैस मैस फरुआ डलती हम जो मैं खूब बीमा डाल के रखती और कौन चीज के महीन महीन फरुआ रहेला अरविंद भाई जो चापुक से मार खेले रही सा औसन महीन फरुआ हमने के पूर्वज लोग जो से मार खेले रहा और यह चाबुक से मार खेला पर जो जो सिस्की निकले इसे यानी एगो एगो डंटा से मार खे बता आ बोलबा पर एगो चाबुक से लगी एगो छुकनी से लगेला एगो लेकर करेला हाउ जोन तीता भावा बा हाउ जोन हाउ अनुभव बा ओकरा हम बांध के रखती एगो एगो पोचिस में एकर अचार डाल के रखती तब ऐसी तीसरा में जब हम एगो पतरा सीसी जो मैं आमतौर पर पीमा कॉफी उड़े डालत ले जाए एगो छोटा सा सीसी जूस के बोतल डल रहे ओकर में तो ओकर में कुछ डलती हम जोन काम करला से गोड़ में फोका आवे फोका सब जे क्लोज हो जाता हल और जोन मोटा मोटा फोका हो जाता हल और तोहर माँ तोहर बाप तोहर पूर्वज के एड़ी है ओकर ओकर ओकर एड़ी कैसे बोली ला जब जोन फाट गोड़ फाटे ला तो हुआ हाउ जोन मारकवा बाहो फाटल हुआ के जोन दुनिया के सबसे बड़ा दर्द है फाटल एड़ी हाउ सब के अर्जुन गाल पर कान काटे गलबा जे लोग गन्ना के खेत में काम कर लेवा गाल में जब रोवा गड़ जाता रही से सुखल गाल में हो कान के हो जो पत्थर का रोवा हो जब गड़ जाता हल हो सब ब्रह्मास के एक छोटा शीशे में डलती ओकरा घाम में रखती सेंक के निमन से तब कोची बोली का है सब कहाँ रखती हम पहले के घर आज के घर निखर नहीं रहल तब मड़ई रहल मड़ई सावे जे चिलाकाज लापाई सब बोले और हो लाकाज लापाई के कोना में ओकर जो मिराई रहल ओकर जो दीवार रहल वो मोटा मोटा पत्थर के बने और ये हो पत्थरवन में से जो छेद रहल ओकर में कीड़ा उड़ा नहीं रही हो खातिर ओकरा गोबर से लीप देवत रही जाए गोबर से तहो जो पत्थर के मिराई हुआ बा वो एगो मचान बन जाता है एगो टैबलेट रहे वो तो माची तहो मचान पर सब अचार रखल जाता है घर में है तो हम अपन सब अचार हो घर के हो मचान पर रखती जे जनती की आज ऐसा हाल हो भैया जैसे बोला था कि हमने के अपन लड़का अपन पूर्वज लोग की कहानी भुला जात अंतिम में दुगो पदवा में ये बोलेला कि वो लोग क्या अचारवा निकाल के हो फरुआ निकाल के अचार फरुआ कुचा में फर्क चाहना जाने के आज के भोजपुरी पढ़े है वाला लोग के फरुआ हो जो फार के डाल चला जब फार के डलला तो फरुआ जब कुछ के डलला तो कुचा अब आज हमने गापे करके कुचा डाला था तो वो कुचा नहीं है वो गाप चा सकब बोली होकर जो उनके फार के दल्ला वो फरवा जो उनके कुछ के दल्ला वो कुचा तो है सब हम रखती यार आज शक्ति अपन लेखा लोग क्या है बस कि हमने बोलब स हमने कितनो कार्यक्रम करब जा टीवी पर कितनो राष्ट्रीय दिवस मनाब जा पर जब ले हमने के लेखा हो स्वादवा नहीं चखी हो दुखवा हो दर्दवा के तब ले सकेला हो इतिहासवा के भुले ली जाइए जा तही एगो भाव है कवि के मन में आल लिखल गलबा हम आशा कर थे तुम्हारे छात्रों के समझ में आए और ये अच्छा लगे
1: धला एगो वो सब हम ये कविता पढ़ ले रहे तो है नहीं सोच रहे कि लेखा लोग के हो चीज कैसे इतिहास से जो हम सोच रहे थे धला एगो हो दृश्य बतावत हुआ जो पहले हमने आचार डालत हैं ऐसे करत हैं जा हई में डालत हैं जा हो में डालत हैं जा वो ऐतिहासिक पहलू के देखा तरी पर इतिहास के आचार ई धला पहला ला सुन के बहुत निमन धला एगो बनल बा
0: बहुत धन्यवाद
2: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
1: एगो दूसर का कविता दिल है जयकर में लेहोप के पानी। अब हमनी तो मॉरिशस के पानी जानी रह जा लेरोप के पानी कौन सी है एकर पीछे कौन अभिप्राय बा और एकर में कौन सी सकब जा देखे कविता में भी पर्यंत दिखबे एकर में काली माई के चर्चा होल बा। तो गुलशन जी हमी के कविता सबसे पहले एकरा अपन आवाज में पहर के हमी के बोला और देखब जाए एकर में कौन सी बोले खोजत हुआ।
2: लेरोप के पानी। हे काली माई, हमर कनुआ के खेतिया सुखाल जाता गे, हरियर हरियर पतवा यराल जाता गे। हे काली माई, एगो दिन रहल जब रिगोल भर में मारेल भरत रहल, एगो दिन रहल जब गुल्ली भर में प्यास बुझत रहल। आज दरिया बांझ हो गल और कनुआ ढट्टा हो गल गे। हे काली माई, कर्जा करके माँ मासीन चलैली, ललका छोड़ के पियरका उगैली। जब सोचली कुछ मिली तब भीरी के मुला बंद हो गल, काटल लादल में जोन बचल हौ कुर्चिये के हो गल। लैकन बोले ला लावेनेर नई बा ई में, हम कहाँ जाए हमर जिंगी बीतल ई में। अगे काली माई, साहेब के खेतवा माँ काहे नहीं सुखाला, मुल्ला बंद होके कैसे लोतेल खुल जाला। सरकार बोले मैया लेरोप से आवे खेतवा के पानी, पानी बंद हो गल अब रुपया नहीं मिली खाली अठन्नी, अठन्नी में का रोपब का काटब।

0: अठन्नी से का रोपब का काटब हैला कूप में तोके ढटवे चढ़ावब। गे काली माई हे काली माई हमर कनुआ के खेतिया सुखाल जाता गे हरियर हरियर पतवा प्यराल जाता गे हे काली माई।
1: एकर में धला एगो जब लाकू के समय में जो परिस्थिति होला और उस साथ साथ में एकरा एकर में तन कुने को आर्थिक पहलू भी एकर में जोड़ ले हुआ। ई कविता लिखे के प्रेरणा कहाँ सिंगल तोरा?
0: अरविंद भाई हमने सब कोई के बचपन गन्ना के खेत के बीच में बीतल बा। सब कोई के माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई ना कोई गन्ना के खेतिया रहल और ये चिपलौते रलंजा जैसे बोले चला बड़ा तबिस्मा होला नहीं रलंजा चिपलौते रलंजा बीघा दो बीघा माटी रही दस वयास कान निकली पचास तोन कान निकली और ओकरे में घर चली ओकरे से लड़का पढ़ल ओकरे से घर बनल ओकरे से सब कुछ हो। हई कविता उस समय के हा जब शुगर प्रोटोकॉल नाम के कुछ चीज रहल मोरिस के चीनी के एगो एगो एगो दाम मिलत रहल लेरोप से एगो दाम की वर्ल्ड मार्केट पर शक्कर के कोनो दाम रही पर मोरिस के शक्कर के को दाम गजेबी हो रहल और हाउ खातिन मोरिस बहुत प्रगति करलक पर साथ ही साथ हमने के मेहनत के एगो ऐसा दाम मिलत रहल जोन से मेहनत के फल बुझाता है। जब शुगर प्रोटोकॉल खत्म हो तो हवे हमने के चीनी जोन 4 रुपया बेचाता है 2 रुपया हो गल एक बोले के बात में जोन 1 रुपया बेचाता है अब 8 आना हो गल। तब क्या कौन सी दिख रही सा बड़ा बड़ा ताबिस्मा होला तो कैसनो न कैसनो बच गल गन्ना के खेती जारी रखला गन्ना की खेती बनवो हो लो कर तो वो हुआ इपेमसे बना देलक लोतेल बना देलक लिनिवेस्ते बना देलक पश्चिम में पूरब में मॉल बना देलक हर एगो चीज बना लोकर। पर जो छोटा खेतियार रहल जेकर 1 बीघा 50 पेयर्स माटी में गन्ना उगावत होल ओकर हो 1 बीघा माटी में न तो सकल कुछ करे बस की आगे को रहल घर से दूर रहल न तो सकल ओकरा बेचे न सकल बेचबो करलक तो कुछ नहीं मिलल न सकल अपन प्रोताशो जारी रखे कहे कि एक एक करके भीरी के सब मूला बंद हो गल अब कटाई के पैसा लगे लादे के सौजे के पैसा लगे तब मूला भेजे के पैसा लगे है सब के पैसा आवत आवत तब आखिर में हम अपन अपन अनुभव से बोलत हैं कि फायदा की जगह पे आदमी लोग नुकसान करके गन्ना रोपे लगा रहल ऐसे करते करते आदमी लोग अपन गन्ना की खेती छोड़ दे लग
1: कुछ मिडिलमैन
0: रहल कुछ रहल मिडिलमैन रहल ऐ सब के खर्चा के वजह से धीरे धीरे छोड़ दे लग एगो एगो गन्ना के खेती के एगो बहुत ही महत्वपूर्ण सैंपल है हम पीती से देख रहे हैं हाई कि जब किसान अपन पहला गन्ना काटेला तो जाके गांव के कालीमाई हिया चढ़ावेला जो ओकर खेत गांव में नहीं बतानी कुंदूर बा तो हुओं के कालीमाई में चढ़ाई अपन गांवों के कालीमाई में चढ़ाई और आके अपन महावीर स्वामी हिया वो गन्ना चढ़ाई और हम हई प्रक्रिया बचपन से देख रहे हैं अमन नन्ना बड़ा मरद पर जब कालीमाई के आगे अपन गन्ना लेके जाता है ना और हाथ जोड़े तो ऐसे बुझाई कि एगो एगो महिला अपन अचरा फैलावत आ काली माई के हिया ओकर माँ रहल ना ओकर अपन माँ के आगे वो लड़का निखर हो जाता हल ओकर से बतियात हल कि देख है पहला गन्ना बात है पहला कान तोरा देवत है एकरे से लड़का पोसब इही से बेटी के शादी हो इही से सब चीज हो निमन से है लाकूप हो कोई के घाव नहीं लगी और आवत बरिस रे से रोपब जो तोरा तोहर हिस्सा तोरा देवब हमार खेत के देखिया हाउ जो पलवा रहा हमारे खातिर बहुत इम्पोर्टेंट रहा हाउ पल और जब कल्ले कल्ले सब गन्ना के खेत सुखाए लगल हमारे नाना तो खैर उस जमाने में नहीं रहल पर जब हम छोटा खेतिहर के देखी तो हम सोचा तरी कि हमारे नाना जी अभी रहत और अभी ओकर गन्ना की खेती के ई हालत हुआत तो कौन जी बोला तू तो हम ओकर और कालीमा के बीच में एगो बात ठीक एगो संवाद

0: होकर प्रार्थना हम तुहर आगे है कविता के माध्यम से रखते हैं।
1: बहुत बहुत भला उदिन याद चला जैसे लाकुब के समय जाके चह रही बा, पर साथ साथ में है कविता के माध्यम से हो धला मॉरिशस के जो आर्थिक उन्नति हो रहा सुगा बूम एगो समय जैसे बोले जा, फिर बाद में जब इस प्रोटोकॉल गल तो इस कविता में धला हो एगो आर्थिक पहलू भी चला बा।
0: देखा बात नहीं बा, ये एगो कालक्रम है, काल के चक्र है चलेला, ये बात नहीं बा कि हम नहीं चाहत बन हुई के कि बन हुई के कभी हो सब नहीं देखेला, कभी खाली हो खेतियार के दिल के दर्द लिखले बा है बात बा। परिवर्तन होला काल काल मूला बन होल ओकर से आगे दूसर चीज बन होल, पर हबियो दिख बा कैसे कैसे मॉरिशस में कितना कोई चाय की खेती वो लोग के दैनिक जीवन के हिस्सा रहा, जब हाउ सब बंद हो रहा था कहूं ना कहूं आम देखा एगो चीज है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एगो चीज है माइक्रो इमोशंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इमोशन पर कौन असर पड़ेला, ये कविता तो हर पाठक लोग तो हर छात्र लोग सभी हाउ दृष्टि से देखे, और ये कहे कि तो हर छात्र लोग खातिन बतिया थे जा इतिहास के अचार में भी और रोग के पानी में भी हमार खातिन बहुत जरूरी रहा एगो कवि के तौर पर कि ये भावना के जैसे बोलासिति बनाए के और उकर खातिन शब्दावली बहुत जरूरी है। हम प्रीति से गन्ना के खेत में कान के खेत में जो जो चीज देखले हैं जो जो शब्द इस्तेमाल हुए हम हुआ जानबूझ के जो हो शब्द हुआ बात हम और हो शब्द हुआ शुद्ध हिंदी मूल के नहीं है भोजपुरी मूल के नहीं है तब उकर में नहीं ठूसब हम हवे लिखली जो हमारा बुझाल हमारे नाना बतियाई उकर भाषा वो कुर्चिये बोले वो मारेल बोले वो रिगोल बोले लाली बोले मिराई गली गुलेट है सब शब्दावली रहा थे। तो हर छात्र लोग के तनिक उन्हीं कविता के माध्यम से जो नौ समय के शब्दावली रहा एग्रीकल्चर में कृषि क्षेत्र में जो शब्दावली रहा खास करके गन्ना में जो शब्दावली रहा लालिन लालिन एक दो गीतो बा लालिन और आंखलिन के बाद बजाय राजा कहो शब्दावली तनिकुन आई जैसे एगो चीज बा में दे रिगोल मारेल गुल्ली एगो कान के एगो हिस्सा ओकर स्टेम में एगो हिस्सा गुल्ली बोला चली जाओ ओकरा दरी कान के दरी ढट्टा सुखल कान के बोल जाला जो अब बहुत कमती शेर भी हो रहा है शब्द बहुत कमती इस्तेमाल हो रहा है चूल्हा जला था हलुका संगीत अब तो नहीं सक बता बिस्मा में जाके ढट्टा उठाए ना बजबो नहीं करेगा तो मासिन सब सफा कर देवेला तो ढट्टा शब्द और एगो एगो खेतिहार जब बोला था वो अपन सबसे नीमन पहला कान काटी ना सबसे नीमन सबसे मोटा सबसे रसदार ललका कानवा जेकर पत्ता सबसे हरियर चक्रावा हम अपन काली माई हिना जाके चढ़ावे जे ओकर दिल से निकला था कि आवत लाकुब में तोरा ढट्टा चढ़ावब हमार खातिन है रहल एगो माध्यम हो दर्द हो दर्द अभिव्यक्त करे के वापस आई राजा एकर एकर शब्द पर उस जमाने में क्या होता हल कि मेकानाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण रहल तो मशीन चलावा सब रोज हटावा और जस्ती गन्ना हो हाई बोला कि नहीं ललका गन्ना चूहा खा ले वेला सिक्लोन में टूट जला तो पियर का गन्ना उले पुकला गेंगो काना रहल दांत से नहीं सब बताई होगा ललका छोड़ के पियर का उगैली पर काटल लगे लादल लगे प्लांटल लगे ओकर में दवाई डाला नीमक डाला है सब करके जितना चीज बचे पूछे यहाँ चल रहा है जे जे जाके मुला में सब चीज छोड़े लड़का लोग का बोली नवा पीढ़ी के लड़का बोली पेना लावीनिया ला दो पापा एक में लावीनिया नहीं बात पे फांसी पा बेच दे मटिया सिपा हई कर दे सिपा हो कर दे ढेर कोई बोली तब लेकिन रूपे जे गन्ना रोपेला ओकर एगो संस्कार है एगो एगो अर्थ है एगो एगो लेजिकासियो है वो नहीं सकेला तुरंते जाके अचानक लेगीम रोपे लगे जैसे हमने बोला ऐसे बोले कि हमने के फांसी लगी सब सोफेर सोफेर है मैं एगो सोफेर टैक्सी के बोल एगो सोफेर कामियों बने के उतना आसान नहीं है तो लड़का बोले रावीनियर नहीं बाई में मटिया के हई कर दे हाउ कर दे पर हम सोचे हमारे नाना गन्ना छोड़ के कुछ नहीं जाने था हम कहाँ जाए हमारे तो जिंदगी बीतल की ने अब वो खेतिहार के सोचा जो शोषण सैखा 70 बरिस के हो गल बा अब जानता पैसा निंगरी अब कहाँ से वो रेकों व्यासो करे जे लोग जवान रह लूट तक कर लग ये अथिया बा एक दो गो शब्द मिलल जो हो जमाना के जैसे बोला

0: टॉक्सिक रहा खेती खेती बाड़ी के वो जहां ले हो सकल बा एक में दलाल बा अब समझ ला लेरो के पानी हमने के कान के इरीगेशन करे पानी और ही लेरो के सब्सिड हमने के कान के इरीगेशन करे जब हाउ गोबिनेमा जैसे बन हो हमने ये कान के खेत सुखा कर
1: बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया
2: RM3 Radio.

आज श्री सोना नुयन जी के एगो गमत के गीत लेके आल है। दुनिया बा चारों बगल गोल ई गमत गीत भोजपुरी लोक संस्कृति के व्यंग्यात्मक परंपरा के उत्कृष्ट उदाहरण है। गीत में समाज के दोगलापन, दिखावा, ईर्षा और पाखन पर तीखा कटाक्ष करल गेल बा। दुनिया बा चारों बगल गोल के मुखरा ई बात के संकेत देवेला कि दुनिया गोल बा, इसे हर आदमी के कर्म एक दिन सामने आवेला। दुनिया बा चारों बगल गोल ई एक लोकोक्ति के रूप में प्रयोग भेल बा। एकर अर्थ बा की दुनिया बहुत छोटी बा, कोनो गलत काम या छल कपट अधिक दिन तक छिपल नहीं जाला। आज खुलेगा तुहर पोल ई विचार के उहरी मजबूती करेला। अपने गावे ले अप

ने बजावे ले ए मुहावरा आत्म प्रशंसा और घमंड पर व्यंग बा। जे व्यक्ति अपना ही तारीफ खुद करेला ओकरा पर कटाश करल गेल बा। समाज में ऐसन लोग बहुत मिलेला जो खुदे अपन गुणगान करेला। घर में करवा रोटी बाहर में लंबा धोती, ये गीत के सबसे प्रभावशाली कहावत में से एक बाते, अर्थात घर की हालत खराब बा लेकिन बाहर दिखावा बहुत बा। ये पाखन झूठी शान और सामाजिक प्रदर्शनवाद की आलोचना करेला। सब कीड़ा खा के कौंची टीटा करेला, ये मुहावरेदार अभिव्यक्ति बा। इमें ओ लोग के चित्रित करल गेल बा जे खुद गलत काम करेला लेकिन दूसरन के आलोचना करे में सबसे आगे रहेला, अर्थात दोषी व्यक्ति सबसे अधिक नैतिकता के उपदेश देवेलन। एक आंख में लकड़ी एक आंख में काजल, ई रूपात्मक कहावत बा। लकड़ी कठोरता और दोष के प्रतीक है जबकि काजल सुंदरता के, अर्थात व्यक्ति के चरित्र में विरोधाभास बा। एक ओर दोष दूसरी ओर सजावट, ई डोगले व्यक्तित्व के प्रतीक बा। हसवा अपने बगल करेला, लोक कथा आधारित मुहावरा बाटे हसवा तीव्रता के प्रतीक है चालाकी के। ई पक्ति में व्यंग बाते कि आदमी हमेशा अपन फायदा अपन पक्ष अपन लोग के पक्ष लेवे लंजा। आन के धन में तू बनले विक्रम राजा, ये बहुत प्रचलित भोजपुरी कहावत के रूपांतर है, अर्थात दूसर के धन पर ऐश करे के अपने आप के राजा समझे ले और लोग पर कटाक्ष करे लंजा। मेहनत बिना प्राप्त संपत्ति पर घमन करे वाला मानसिकता के आलोचना करेल गेल बा। समग्र संदेश गीत समाज में व्याप्त दिखावा आत्म प्रशंसा ईर्षा डोगलापन पर जीवी मानसिकता पर व्यंग करेला। आज खुलेगा तोहर पोल बार बार दोहरा के गीत ई संदेश देवेला कि सच्चाई अंततः सामने आ जाला। ई गम्मत गीत केवल मनोरंजन या हंसी मजाक के साधन ना है बल्कि भोजपुरी लोक साहित्य के सामाजिक व्यंग नैतिक आलोचना और जन चेतना के मजबूत परंपरा के प्रतिनिधित्व करेला। गीतकार श्री सुना नोयन जी लोक भाषा कहावत मुहावरा रूपक और हास्य के सहारा लेके समाज के ऐसन व्यवहार पर प्रश्न उठावेलन जोन बाहर से सामान्य लगेला लेकिन भीतर से सामाजिक विरोधाभास पाखंड और स्वार्थ से भरल बा। दुनिया बा चारों बगर गोल और आज खुलेगा तोहर पोल जैसन पंक्ति गीत के मूल नैतिक संदेश के सामने ले आवेला। मनुष्य अपना कर्म और व्यवहार से हमेशा के खातिर ना बच सकेला, समय के साथ सच्चाई सामने आ जाला। भोजपुरी लोक साहित्य में सामाजिक व्यंग की कई प्रवृत्ति नया न है। भिखारी ठाकुर के रचनात्मक परंपरा में भी समाज के रूढ़ी आर्थिक असमानता नारी की स्थिति प्रवासन और सामाजिक पाखंड पर लोक भाषा और लोक नाट्य के माध्यम से टिप्पणी मिलेला। उनकर विदेशिया परंपरा में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक प्रश्न उठावल गेल। इस दृष्टि से सोना नोयन जी के गमत गीत भी भोजपुरी लोक साहित्य के ओही व्यापक परंपरा से जुड़ल दिखाई देला जहां हंसी के पीछे गंभीर सामाजिक आलोचना छिपल रहेला।

जिसने महेंद्र मिसेर के भोजपुरी काव्य और लोक गीत परंपरा में लोक जीवन, मानवीय भावना और सामाजिक अनुभव के महत्वपूर्ण स्थान बांटे। हालांकि उनका रचनात्मक संसार के मुख्य स्वर हर जगह व्यंग्यात्मक ना है, लेकिन लोक भाषा के सहजता, मौखिक परंपरा और जनजीवन के गहराई जुड़ाव सुनानुयन जी के गीत से तुलना करे के आधार देवेला। इसे पता चलेला कि भोजपुरी साहित्य में साहित्यिक अभिव्यक्ति केवल लिखित कविता या पुस्तक तक सीमित नहीं है। लोकगीत, गमत, नाटक और मौखिक प्रस्तुति भी साहित्यिक संवेदना के महत्वपूर्ण माध्यम रहल बा। रघुवीर नारायण के भोजपुरी रचना परंपरा से तुलना करबट एगो औरी पहलू सामने आवेला। जहां रघुवीर नारायण के रचनाओं में भोजपुरी भाषा के गौरव, समाज और सामूहिक चेतना के स्वर अधिक स्पष्ट दिखाई देला, वहीं सुनानुयन जी के गम्मत गीत स्थानीय सामाजिक व्यवहार के छोटी छोटी विसंगतियन के पकड़ के ओकरा पर हास्यात्मक प्रहार करेला। यानी भोजपुरी लोक साहित्य में एक ओर पहचान और सामूहिक चेतना के निर्माण बा, तो दूसरा ओर आत्मलोचना और सामाजिक सुधार के प्रवृत्तियों बाटे। मॉरिशस के संदर्भ में ई गीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाला। भारत से मॉरिशस पहुंचल भोजपुरी भाषा समुदाय के साथ गीत, कहावत, मुहावरा, गम्मत और मौखिक परंपराएं भी विकसित होल बाटे। समय के साथ ई परंपरा स्थानीय अनुभव, बहुभाषिक वातावरण और मॉरिशस के बदलत सामाजिक जीवन से प्रभावित भेल। ई कारण से सुनानुयन जी के गीत की केवल भारतीय भोजपुरी परंपरा के पुनरावृत्ति मानल ठीक ना होई, ई मॉरिशसन भोजपुरी लोक अभिव्यक्ति के जीवित रूप है। जहां पारंपरिक भोजपुरी भाषिक संसाधन के इस्तेमाल करके समकालीन सामाजिक व्यवहार पर टिप्पणी करल गेल बा। गीत में इस्तेमाल कहावत और मुहावरन के विशेष महत्व बाटे। घर में करवा रोटी, बाहर में लंबा धोती, आर्थिक वास्तविकता और सामाजिक दिखावा के बीच के विरोधाभास के बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करल गेल बा। अपने गावेला, अपने बजावेला, आत्म प्रशंसा के आलोचना करेला, जबकि आन के धन में तू बनेला विक्रम राजा, दूसर के संसाधन पर निर्भर रहे के झूठी प्रतिष्ठा हासिल करे वाला मानसिकता पर कटाक्ष करेला। ई सब अभिव्यक्तियों से लोक समाज के अनुभव, सामूहिक बुद्धि और नैतिक मूल्य संचित बा। ई गीत के एगो महत्वपूर्ण साहित्यिक विशेषता हास्य और आलोचना के सह अस्तित्व है। श्रोता पहले गीत के हास्य, लय और व्यंग से आकर्षित होला, लेकिन धीरे धीरे ओकर सामाजिक संदेश समझ में आवेला। ई अर्थ में गम्मत गीत एगो प्रकार के लोक सामाजिक टिप्पणी, फोल्क सोशल कमेंटरी बन जाला। गीतकार सीधे उपदेश देवे के बजाय प्रतीक, कहावत और हास्य के माध्यम से श्रोता के अपना व्यवहार और समाज के व्यवहार पर विचार करे खातिर प्रेरित करेलन। भोजपुरी लोक गीत परंपरा में ई तरीका महत्वपूर्ण बा, काहे के लोक साहित्य अक्सर समाज के आईना के काम करेला। साहित्यकार या लोक कलाकार केवल समाज में प्रशंसा ना करेला, ओकर कमजोरी, विरोधाभास और अन्याय
के भी सामने ले आवेला। सुना नुयन जी के गमत गीत में पोल खोलना के विचार इस सामाजिक आयना के रूपक बन जाला। व्यक्ति चाहे जितना दिखावा करे ओकर वास्तविक चरित्र अंततः सामने आ जाला। ई दृष्टिकोण से ई गीत मॉरिशस के भोजपुरी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में दस्तावेजीकरण खातिर भी महत्वपूर्ण सामग्री बन जाला। एकरा में भाषा के साथ साथ स्थानीय सामाजिक मूल्य, हास्यबोध, नैतिक दृष्टिकोण, लोकज्ञान और सामुदायिक अनुभव सुरक्षित रहेला। यदि ऐसन गमत गीत के केवल मनोरंजन मान के छोड़ दिहल जाए तो आने वाला पीढ़ी भोजपुरी लोक भाषा के कई गो मुहावरा, कहावत, व्यंग्यात्मक शैली और सामाजिक संदर्भ से वंचित हो सकेले। अंततः दुनिया बा चारों बगल गोल गमत गीत के अध्ययन से स्पष्ट होला कि भोजपुरी लोक साहित्य स्थिर परंपरा न बल्कि बदलत समाज के साथ विकसित होखे वाला जीवंत साहित्यिक अभिव्यक्ति है। भिखारी ठाकुर के सामाजिक नाटक, महेंद्र मिशेर के लोकगीत परंपरा, रघुवीर नारायण की सामूहिक चेतना से जुड़ल रचना और मॉरिशस के स्थानीय गमत परंपरा के एक साथ देखे के भोजपुरी साहित्य पर एगो व्यापकता और स्पष्टता हो जाला। सुनानुयन जी के गीत एवं परंपरा में स्थानीय समाज के व्यवहार, दिखावा, डोगलापन और आत्म प्रशंसा के हास्य व्यंग के माध्यम से सामने ले आवेला। इसे गमत गीत के लोक मनोरंजन मात्र ना है बल्कि सामाजिक आलोचना, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक स्मृति और भोजपुरी भाषा के संरक्षण के माध्यम के रूप में दिखावल अधिक उचित होवेला। आज खुलेगा तोहर पोल के दोहराव अंततः श्रोता के एगो सरल लेकिन गहरा संदेश देला। समाज में बाहरी दिखावा चाहे जितना होखे, सच्चाई और कर्म के प्रभाव से मनुष्य अंततः बच ना सकेला। यही कारण है कि ऐसन गमत गीत मॉरिशस के भोजपुरी लोक धरोहर में आज भी अध्ययन, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के योग्य महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत बाटे। तो लोग के ध्यान खातिर बहुत ही धन्यवाद। नमस्ते।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें विधिमा से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। भारत सरकार डिजिटल परिवर्तन में कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का सहयोग कर रही है। इस सहयोग के मुख्य पहलुओं में से एक कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल है ताकि उन्हें नए उपकरणों और उपकरणों के उपयोग के लिए तैयार किया जा सके। अक्टूबर महीने से ही उनके लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये उन्हें एक सुरक्षित वातावरण में विभिन्न बंदरगाह संचालन गतिविधियों का अभ्यास करने की अनुमति देगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके कौशल को मजबूत करना और उन्हें बंदरगाह क्षेत्र में होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना है। शागस मामले में एक नया विकास सामने आया है। मालदीव्स ने लंदन से द्वीप समूह की संप्रभुता पर चर्चा फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध कल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू द्वारा नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से किया गया। लंदन ने उन्हें जवाब दिया है कि ये मुद्दा मॉरिशस के साथ उसके संबंधों के दायरे में आता है और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत कल फिर से शुरू होनी है। आज बियनरे पेलावाल की मृत्यु की 162वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मॉरिशस के इस महान संत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सेंट क्वा में कई विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। कल शाम दिए गए अपने संदेश में मोंसिनियर जो मिकाएल जोरन ने बियनरे पेलावाल का अनुसरण करते हुए सबसे कमजोर लोगों के दुखों और उम्मीदों को सुनने का आह्वान किया है। और विदेश में नेपाल में भयावह बाढ़ के 14 दिन बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी है। अब बचाव दलों का सबसे बड़ा ध्यान 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे दर्जनों कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: More music in the mix. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और एमबीसी 3 के तीसरे चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने वाले सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं। बुधवार का दिन है, 9 सितंबर आज की तारीख है और बिल्कुल एक घंटे के आज के इस सफर में हम स्वास्थ्य को लेकर बातें करते हैं। पर आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर, यानी जो मनाया जाएगा बस अभी कुछ ही दिनों में। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और फर्स्ट एड की जानकारी हर इंसान को होनी कितनी आवश्यक है, इस पर आज की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। और आज हमारे मेहमान हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, सोशल सिक्योरिटी और नेशनल सोलिडारिटी में कार्यरत और साथ ही साथ रोटरी क्लब पोम्पलेमूस के सदस्य डॉक्टर बसावन आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर दाऊशंकर पांगे बसावन आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर बसावन, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
0: और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में फर्स्ट एड पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर, हमें पहले ये बताइए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है?
3: पहले वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल सेकंड सैटरडे सब सितंबर में होता है। इस साल वो 12 ऑफ सितंबर में होगा। उनका कॉन्टेक्स्ट है फर्स्ट एड इन माइग्रेशन कॉन्टेक्स्ट।
0: अच्छा।
3: जैसे हम देखते हैं हर अन्य देशों में लड़ाई हो रही है तो माइग्रेशन में रेज है। तो ये उसका फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का मेन उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस है लोगों को समझाना

0: कि इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प पहुंचने से पहले क्या किया जाता है। सही फैसद की जान, सही फैसद किसी की जान बचा सकता है, वो भी मेडिकल पर्सनल या डॉक्टर ट्रीटमेंट
1: आने से पहले।
0: जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट है, हार्ट अटैक है, चोकिंग है, ब्लीडिंग काटा या कुछ ब्लीडिंग होता है या बर्न्स होता है, तो इन सिचुएशन में फर्स्ट एड का मिनटों में इम्पोर्टेंस है।
1: बिल्कुल है? क्योंकि मैं समझती हूँ जो पहला घंटा होता है उसी के अंदर अगर उसको फर्स्ट एड पहुंचाया जाता है, जब तक कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर्स वहां पर आते हैं, उससे पहले अगर फर्स्ट एड उनको मिलता है तो उनकी जान काफी हद तक बच सकती है।
0: हाँ।
1: बिल्कुल। तो यहाँ पर जी हाँ, जैसे डॉक्टर ने बताया कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का उद्देश्य क्या है, और बिल्कुल जहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, आज विश्व भर में युद्ध हो रहे हैं और कितनी सारी समस्याओं के साथ ये विश्व जूझ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट एड का कितना महत्व है ये तो डॉक्टर जी ने कम शब्दों में बताया, पर फर्स्ट एड कैसे किया जाता है इसकी सारी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम प्राप्त करेंगे। डॉक्टर जी, आपने देखा होगा कि विश्व में अभी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो वॉलंटरी बेसिस पर काम करती हैं, जैसे रेड क्रॉस इज वन ऑफ द रिनाउंड, कैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, फर्स्ट एडर्स के बारे में जानते हैं, तो अन्य ऐसी कई सारी जो संस्थाएँ हैं उनका रोल क्या होता है?
0: जब हम देखते हैं तो सारे, लगभग सारे हेल्थ केयर एसोसिएशन जो हैं वो वॉलंटरी बेसिस पर होती हैं, जैसे रेड क्रॉस हैं, हम एक एसोसिएशन में हैं जो हैं प्रो केयर पैरामेडिक्स, हम क्या करते हैं इसमें, जैसे तीर्थ यात्रा पर जब महाशिवरात्रि,
1: खासकर मॉरिशस में महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है,
0: तो उधर क्या क्या होते हैं, दो तीन, लगभग नहीं, लगभग छः डिफरेंट एसोसिएशन होते हैं, रेड क्रॉस होते हैं, हमारे एसोसिएशन होते हैं, सेंट जोन होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, लोगों का को सुरक्षित रखना, ये उसका मेन पर्पस है। तो जब भीड़ बहुत होती है, फर्स्ट एड का एसेंशियल एक एम्बुलेंस और फर्स्ट एड का प्रोफेशनल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भीड़ होता है तो क्या होता है, तो एक आदमी को डिफरेंट तरीके का सिचुएशन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, ये थकान, अन्य बीमारियों जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक या कुछ भी बीमारी उनके हैं, वो एक कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है। तो फर्स्ट एड का रोल क्या है इसमें, इसमें उस शख्स को एक सुरक्षित टाइम में रखेगा, क्योंकि हेल्प आने तक जैसे ट्रीटमेंट दिया जाए जाता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है।
1: ओके।
0: फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट जब डॉक्टर उसको, जब मॉरिशस में सामू हैं या जो भी फर्स्ट एड एसोसिएशन है, जब वो फर्स्ट एड एम्बुलेंस में आते हैं तब ट्रीटमेंट शुरू होता है।
1: अच्छा।
0: तो पहला फर्स्ट एड क्या, कौन देता है, पहला फर्स्ट एड जो लोग आसपास होते हैं वो पहला फर्स्ट एड है।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, फर्स्ट एड सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए नहीं है,
1: मतलब आम जनता भी,
0: आम जनता भी के लिए एक इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है। ये मेरे अनुसार सब लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है
1: फर्स्ट एड,
0: और एसोसिएशन जो हम बता रहे थे उसका रोल क्या है, दो तीन रोल हैं, एक जैसे एक उत्सव होता है इसमें मदद

0: करने के लिए प्रोफेशनल हैव प्रोफेशनल को, दूसरा एडुकेट एडुकेट पॉपुलेशन,
1: उनको जानकारी पहुंचाना,
0: तो जानकारी पहुंचाते हैं। ये हेल्थ केयर एसोसिएशन का मुख्य
1: जैसे एक पर्पस होना चाहिए। हाँ,
0: मुख्य पर्पस है। तो जो भी एसोसिएशन है आप देखते हैं वो कुछ कोर्सेज देते हैं, तो विनती है दर्शकों को अगर कोई भी टाइम थोड़ा फ्री है और ये कोर्स देखते हैं तो जाइए, क्योंकि ये एक वेरी इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है।
1: बिल्कुल, और ये कोई भी उम्र वाले लोग कर सकते हैं,
0: कोई भी उम्र,
1: कोई भी उम्र। और मैं समझती हूँ ये अगर छोटी सी एक जानकारी अगर आप प्राप्त करते हैं फर्स्ट एड के बारे में, तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा। और आप कहीं पर भी चले जाएं, अगर आपके सामने कोई ऐसी दुर्घटना हुई है तो डॉक्टर्स के आने से पहले, प्रोफेशनल्स के आने से पहले अगर आप उनको ये फर्स्ट एड पहुँचा सकते हैं तो हो सकता है कि आप एक जान को बचाते हैं। जी हाँ, फर्स्ट एड पर हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर जी, जब पहले स्टेप की हम बात करते हैं तो क्या हमारे दर्शकों को या श्रोताओं को आप बता सकते हैं कि मतलब मान लीजिए आप एक भीड़भाड़ वाली जगह पर हैं और अगर किसी को कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो एक फर्स्ट एडर के लिए पहले क्या चीज़ मायने रखती है, क्या सोच में, क्या मतलब उनके दिमाग में कौन सी ऐसी बात आनी चाहिए कि उसका जो सिचुएशन है वो हैंडल हो सके।
0: ओके, तो पहले जब हम एक भीड़ में हैं तो हम जानते नहीं हैं कि इस शख्स को क्या हुआ, तो भीड़ जो भी उसके पास है उसको एक थोड़ा हवा लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो उसको एक सर्कल, एक सुरक्षित सेफ जोन जैसे कहते हैं, जैसे हम फैसेड करते हैं। तो पहले जब हम एक सिचुएशन में जाते हैं, एक जगह पर जाते हैं, तो पहला काम क्या है, पहला काम है असेस द एनवायरनमेंट
1: कि वहां कहां, मतलब वो जगह क्या है,
0: किधर है।
1: हाँ,
0: ओ गिर गया इधर।
1: हाँ,
0: ओके, कैसे गिर गया, फिसल गया या डिजी होकर गिर गया, क्या हुआ। तो ये पहले जानकारी हेड में होना चाहिए, ये जगह डेंजरस है। अगर ये जगह डेंजरस है तो हम कैसे जाएं हेल्प करने के लिए, जो हमारे
1: हो सकता है कि आपको भी वो अफेक्ट करे। बिल्कुल,
0: लाइफ थ्रेटनिंग है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब मायने रखते हुए पहले चीज जब हम पेशेंट को देखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे आते हैं उसका शोल्डर टैप करते हैं और देखते हैं अगर वो सांस ले रही है या नहीं। तो पहला चीज देखते हैं एनवायरनमेंट, दूसरा चीज पेशेंट पर फोकस। ये 2-3 सेकंड में होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: 2-3 सेकंड में होता है। जैसे देखते हैं एनवायरनमेंट कैसा है, सब ठीक है, इधर लुक है, अब टैप। और सेम टाइम उसको पूछो कोई रिश्तेदार है, कोई इसके साथ आए हुए हैं, क्या हुआ बताइए। जब वो बता रहे हैं क्या क्या हुआ इस शख्स को, तो आप क्या कर रहे हैं इसी टाइम, आप टैप, शोल्डर को टैप कर रहे हैं और उसका ब्रीफिंग देख रहे हैं। अगर चेस्ट ऊपर नीचे आ रहे हैं तो वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, और आप अगर आपका हेड उसके हेड के पास है तो आप सुन भी सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उसका नाम जानना चाहिए, या जो भी दादा दादी,
1: कोई भी अगर आसपास में कोई जानकार है इंसान,
0: तो जो नहीं जो, ये शख्स जो है,
1: हाँ,
0: आप उसको टैप करके चिल्लाइए, हे कैसा है, किधर
1: सुनाई दे रहा है, मतलब उसको उठाने की कोशिश करें।
0: तो कॉन्शियस है या नहीं, अनकॉन्शियस है, ये पहली बात। तो अगर अनकॉन्शियस है डिफरेंट अप्रोच, कॉन्शियस है डिफरेंट अप्रोच। एक्सीडेंट होता है तो डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब हम जब हम देखते हैं तो एक शख्स को इस सिचुएशन में इसका फेसेड कैसे किया जाता है,
1: अकॉर्डिंगली उसके अनुसार।
0: तो एक भीड़ सिचुएशन में हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम

0: तीर्थ यात्रा पर गए, वहाँ कोई गिर गया, तो पहला चीज़ जब आते हैं पेशेंट को देखते हैं तो क्राउड को सेपरेट करिए,
1: जैसे मतलब भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए उसके पास,
0: भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, एक वेंटिलेशन
1: हवादार

0: उसका कैसे परसेंटेज जो होते हैं ये ज़्यादा हो सकते हैं, पर हम फुली नहीं कह सकते हैं कि ये हुआ है, क्योंकि जब पेशेंट को पहले देखते हैं तो पेशेंट इधर है। तो एक मेडिकल में एक चीज़ होता है ABCs,
1: ओके,
0: नो योर ABCs, क्या है? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन।
1: ओके,
0: तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन में पहले हम चेक करते हैं कि क्या हुआ। तो इस शख्स में कुछ अटक गया है मुंह में, या कुछ है जो ब्लॉक हो रहा है एयर करने, जैसे एक पेशेंट वोमिट कर सकता है और ये ब्लॉक कर रहे हैं उसको सांस लेने में, तो एयरवे चेक करना है। ब्रीफिंग अब ब्रीफ है और सर्कुलेशन जो ब्लीडिंग है या कुछ,
1: तो अगर उसको कहीं घाव लगा है या खून निकल रहा
0: जब,
1: है तो।
0: जब हम एक पेशेंट को देखते हैं, हमने आया उसका ब्रीफिंग चेक किया, वो सांस ले रहे हैं, जब रिलेटिव्स या जो भी हैं उसके साथ कुछ जानकारी ले रहे हैं, हम चेक करते हैं दूसरा उसके शरीर को ऊपर हेड टू टोस, हेड टू टोस, अगर कपड़ा को खोलना है खोलो। जब हम चेक करते हैं तो क्या होता है, हम चेक ब्लीडिंग के लिए चेक करते हैं, डेंजरस अगर हड्डी टूटा हुआ है या कुछ डेंजरस आइटम है उस पर ये चेक करते हैं, ये भी कुछ सेकंड में होता है।
1: बिल्कुल
0: है? फिर क्या होता है, अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत CPR का शुरू करते हैं।
1: ओके,
0: CPR चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं ये थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे, क्योंकि CPR ये सबसे ज़रूरी है एक अगर कोई भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमको CPR देना चाहिए। इसमें बहुत से लोगों का जान बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि चोकिंग की वजह से इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, सांस रुक चुकी है, तो इसमें भी क्या CPR का ही प्रयोग किया जाता है ताकि वो डिब्लॉक हो सके और वो सांस ले सके?
0: कुछ सिचुएशन में, हाँ कुछ सिचुएशन में नहीं।
1: ओके,
0: जैसे हम देखते हैं बच्चों में चोकिंग ज़्यादा होती है, अगर चोकिंग के बारे में बात करते हैं बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कुछ खिलौने से
1: कई बार हैज़र्ड्स कुछ भी ऐसा मुंह में डाल देते हैं,
0: मुंह में डाल देते हैं, तो बच्चे अगर सबसे छोटा है उसको एक दो तीन तरीके होते हैं, जैसे कि उसको लेटाओ
1: जी,
0: इंक्लाइन, हेड डाउन, और उसको उसके पीठ पर
1: थपथपाना
0: है जी। ये एक, अगर आदमी थोड़ा एज उम्र का है तो क्या करना चाहिए, उसको ब्लॉक करना चाहिए ये जो हमारे चेस्ट है स्टर्नम
1: में
0: है, इधर उसके नीचे
1: जी
0: अपना
1: शॉक देना चाहिए। ओके,
0: तो एक शॉक देना चाहिए
1: जी।
0: ये भी नहीं हो निकल रहा है तो अपसाइड डाउन
1: उनको भी जैसे उसी तरह से जैसे बच्चों को किया
0: बच्चों
1: जाता है,
0: और टैप करना चाहिए जैसे कि ये चीज जो भी
1: चोकिंग हो रहा है
0: उसको निकाल
1: सके। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे समस्याओं में डिफरेंट तरह के फर्स्ट एड को, फर्स्ट एड की जो भी टेक्निक्स है उसे इस्तेमाल किया जाता है, और बेशक आज के इस कार्यक्रम में ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं इसकी फुल फ्लेज ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ अगर आप एक प्रोफेशनल से इसको ट्रेन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक जान को बचा सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, वॉलंटरी बेसिस पर आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर एक गीत के ब्रेक के साथ जोड़ते हैं, और अभी थोड़ी ही देर में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर और ये बातें, जानकारी, चर्चा जारी रखेंगे।

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम जारी रखते हैं और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो मनाया जा रहा है इस साल को 12 सितंबर को, और आज हमारे साथ डॉक्टर बसावन जुड़े हुए हैं और बिल्कुल फर्स्ट एड पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें ये छोटी छोटी जानकारी हमारे लिए एक जान बचाने वाला एक जरिया हो सकता है, पर उससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड बॉक्स का क्या महत्व है और एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करना, किस तरह से उसे तैयार रखना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर जी, पहले तो मैं ये पूछूंगी, क्या फर्स्ट एड बॉक्स सभी घर में होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसे तैयार कैसे किया जाता है, उसमें कौन सी चीज़ें होनी बहुत ही आवश्यक है?
1: फर्स्ट एड बॉक्स जब हम देखते हैं तो हर घर में लगभग एक होना चाहिए। जो भी बड़ा घर है दो हो सकता है, पर फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी है
0: जी।
1: जब भी हम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं हिचहाइकिंग या विदेश जाते हैं, तो एक छोटा सा फर्स्ट एड किट होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको जानता नहीं है कब क्या उसका ज़रूरत हो,
0: कहाँ अचानक से आपकी आपको ज़रूरत पड़ जाए उसकी।
1: तो एक एक बात बोलते हैं ना, मालिया पिना लुडिया। तो ये ध्यान रखते हुए कि कोई सिचुएशन भी आ सकते हैं हमारे लिए या हमारे दूसरे लोग,
0: बिल्कुल जो आसपास है, बिल्कुल।
1: तो एक बेसिक किट होना चाहिए। एक बेसिक किट में क्या है, स्टेराइल गोज है, एडेसिव बैंडेज है, मेडिकल टेप है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि बेटाजीन या क्लोरोहेक्सजीन है, होना एक छोटा सा
0: बॉटल, जैसे दो या तीन सर्विंग्स हम कर सके उतना गर्म है,
1: एक छोटा सा होना चाहिए। ग्लोव्स होना चाहिए, सीजर्स, क्योंकि गोज को काटेगा कोई भी जो भी काटेगा, एक थर्मोमीटर होना चाहिए, क्योंकि थर्मोमीटर जब एक का फीवर होता है उसको मॉनिटर करने के लिए
0: टेम्परेचर
1: मेजर होना कर सकते हैं। स्टेराइड ड्रेसिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होता है जो भी है, हम ऐसे कुछ कपड़े नहीं डाल सकते हैं,
0: बिल्कुल इन्फेक्शन हो सकता है।
1: तो एक जो स्टेराइल है, स्टेराइल का क्या मतलब है, स्टेराइल अगर एक गोज है एक पैक में है, जो वो पैक में खोला नहीं है, वो पैक बंद है,
0: सील्ड है बिल्कुल।
1: क्योंकि एक जब भी मैं पेशेंट के यहाँ जाता हूँ, जब देखता हूँ तो ये स्टेराइल का मतलब नहीं जानते, वो गोज को ऐसे ही रखते हैं,
0: तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन ये फैला सकता है।
1: स्टेराइल नहीं होता,
0: बिल्कुल।
1: तो एक स्टेराइल ग्लोव रखना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन से बचाता है,
0: बिल्कुल।
1: एक कोल्ड पैक भी अगर इंस्टेंट है तो ज्यादा सही है। पर एक कोल्ड पैक एक घर में होना चाहिए, जैसे कि एक बंदे को स्प्रेन होता है, जैसे फिसल जाता है तो क्या होता है, स्प्रेन हो जाता है। तो स्प्रेन का पहला साइन क्या है, जो जब होता है तो पैर फूल जाता है, तो पैर फूलने से पहले क्या करते हैं, ये कोल्ड पैक डालते हैं। जो भी एक्यूट गैंकू, जो भी एक्यूट होता है
0: उस पर अगर आइस पैक लगा दिया,
1: आइस पैक डालते हैं तो ये सही हो जाता है,
0: उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है, मतलब उतना जैसे आप बता रहे हैं कि सूजन आने से पहले का ये जो प्रभाव है, अगर आइस पैक लगाया जाए तो काफी हद तक उसके दर्द को कम किया जा सकता है।
1: एक गलती है, गलत फैमिली भी है जो लोग अक्सर करते हैं,

0: जब स्प्रेन होता है तो वो हीट स्प्रे डालती है. तो हीट क्या करता है, हीट इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है.
1: ओके.
0: तो हीट नहीं डालने का,
1: बिल्कुल
0: कोल्ड होना चाहिए,
1: ठंडा होना चाहिए, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले आपके मसल्स को, आपके बोन्स को, ताकि फिर उसमें वो जो सूजन है वो ना चढ़े. बिल्कुल. कई बार ऐसा होता है कि सीढ़ियाँ उतरते वक्त या कुछ काम करते वक्त कई बार आपका पैर मुड़ जाता है, कई बार कुछ ऐसे होता है कि जहाँ पर आप फिसल के गिर जाते हो, आपको एक चोट लग जाती है. तो तुरंत जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि पहला होना चाहिए कि आप उस पर एक कोल्ड पैक डालें, आइस पैक डालें, या अगर आपके घर में बर्फ उपलब्ध है तो को एक कपड़े में लपेट कर आप उस पर रख दें, ताकि एक तरह की जो सूजन है वो नहीं चढ़ेगी और आपका जो दर्द है वो काफ़ी हद तक कम रहेगा. और जैसे डॉक्टर ने कहा कि गलती हम करते हैं कि बिल्कुल हम डीप स्प्रे या हीट स्प्रे लगा देते हैं उसके ऊपर, जो इस इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देता है और दर्द असहनीय हो जाता है. तो जी हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिसकी जानकारी हमें आज बिल्कुल डॉक्टर से मिल रही है. तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान से सुने और बिल्कुल जाने. डॉक्टर जी, जैसे आप बता रहे हो कि आइस पैक लगाना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए फर्स्ट एड में?
0: हम देखते हैं तो जो भी बताया अभी, सीजर्स, स्टेराइगोज, ये सब बेसिक हैं
1: जी.
0: अगर हम एक हॉट पेशेंट को देखते हैं, अगर एक फैमिली में एक हॉट पेशेंट है, तो उसका एक दवाई होना चाहिए जो TNT है, नाइट्रोग्लिसरीन. ये दवाई हम टोंग के नीचे रखते हैं
1: जी.
0: तो ये क्या होता है, जब पेशेंट को हॉट अटैक होता है, यानी कि एक बड़ा सा चेस्ट पेन होता है, तो ये दवाई जान बचाने के लिए
1: बिल्कुल एक जैसे लाइफ सेविंग है.
0: तो अगर हॉट पेशेंट है तो ये रखना चाहिए पेशेंट के साथ. अगर हम देखते हैं इमरजेंसी सर्विस जो होता है, एक पेशेंट, एक इंसान जब डिफिकल्टी में है, तो ये बॉक्स लेते हैं, आते हैं इमरजेंसी के सिचुएशन में
1: जी.
0: ये बॉक्स लेते आते हैं, तो ये बॉक्स कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए. ऑर्गेनाइज एक तरीके से, जैसे गोज इधर है,
1: सारी चीजें ढंग से होनी चाहिए उसमें.
0: हाँ, तो ये गोज दो तरह की होती है, एक नॉन स्टेराइल, एक स्टेराइल. जब कंप्रेशन डालते हैं तो एक स्टेराइल ग्लोव डाल सकते हैं, फिर नॉन स्टेराइल ग्लोव उसके ऊपर. तो पहला स्टेराइल ग्लोव, ये बेसिक किट है. तो ये बेसिक किट हम सभी को, सभी दर्शकों को विनती करते हैं कि एक एटलीस्ट एक बेसिक किट
1: आप हमेशा रेडी रखें,
0: हमेशा रेडी रखें. और ट्रैवल करने अब जाते हैं तो एक किट गाड़ी में रखिए,
1: यानी एक अभी तो आजकल देखा गया सभी के घर एक एक दो दो गाड़ियां होती है. तो जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं, जितना हम समझ पाए हैं, कि एक किट आप घर में रखें, एक किट गाड़ी में हमेशा तैनात तैयार होना चाहिए. और डॉक्टर जी, मान लीजिए आज हमें फर्स्ट एड किट की ज़रूरत पड़ गई, कोई रास्ते में कोई ऐसी समस्या हो गई और हमने उस फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल कर लिया, तो क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए? क्योंकि मैं समझती हूँ कई बार फर्स्ट एड किट में से हम काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या घर जाके तुरंत ही उसे रिप्लेस करना अनिवार्य है?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कब एक प्रॉब्लम आ सकती है.
1: बिल्कुल.
0: तो एक फर्स्ट एड किट का आइटम्स फुली रखना,
1: फुली स्टॉक, पूरी तरह से तैयार रखना,
0: तैयार रखना, ये बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि एक एक्सीडेंट होने से दूसरे एक्सीडेंट को नहीं बचाते हैं.
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
0: तो जब हम देखते हैं एक हम कुछ सामान यूज करते हैं, तो तुरंत घर जाकर
1: उसे फिर से
0: उसे रिप्लेस करना चाहिए
1: जी.
0: या कुछ फार्मेसी में जो भी आसपास है खरीद लीजिए और डाल दीजिए
1: तुरंत. बिल्कुल. और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने एक डब्बा

0: खरीदा उसमें सारी चीज़ें आपने डंप करके रख दी, क्योंकि बिल्कुल जब सडन एक एक्सीडेंट होता है या सडनली आपको वो फर्स्ट एड किट की ज़रूरत पड़ती है, आपने देखा होगा कि कई बार हमारे चीज़ें जो है वो हमारे सामने होने के बावजूद हमें नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए अगर आपका किट, आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आप एक्सीडेंट में बहुत जल्दी से आप एक्शन ले सकते हैं और डेफिनेटली आपको आसानी से सारी चीज़ें आपके आंख के सामने दिखाई देगी। जी हाँ, यहाँ पर हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जी बता रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट की अगर सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट में एक इंसान को क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल्स को बुलाने से पहले, प्रोफेशनल के वहाँ आने से पहले एक आम इंसान को क्या दिमाग में रखना ज़रूरी है?
1: कि अगर हम कार्डियक अरेस्ट को देखते हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ पहले कि एक होता है हार्ट अटैक,
0: हाँ जी,
1: और एक होता है कार्डियक अरेस्ट।
0: इसमें क्या अंतर है?
1: एक हम देखते हैं तो हार्ट अटैक में ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है
0: जी,
1: पर पर्सन अक्सर कॉन्शियस होते हैं,
0: अच्छा,
1: वो सांस ले रही है और एक बहुत सी शॉर्प पेन होता है
0: चेस्ट में
1: ओके, वो जा सकते हैं लेफ्ट हैंड में, ये पेन उधर भी जा सकता है और नो पेन भी हो सकता है,
0: ओके, पेनलेस से, यानी कोई भी उनको दर्द ना हो।
1: डायबिटिक पेशेंट में ये हो सकता है
0: जी,
1: जो पेन नहीं पर एक हार्ट अटैक का शिकार है, ये हॉट अटैक है। कार्डियक अरेस्ट है क्या है, जब हॉट पंप नहीं कर रहा है
0: जी
1: इफेक्टिवली,
0: जी, जी,
1: जो भी पंप कर रहे हैं इफेक्टिव नहीं है, तो ये ब्लड दिमाग तक शरीर में अच्छा नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, तो पर्सन अनरेस्पॉन्सिव होता है, तो अनरेस्पॉन्सिव होने से क्या ये पर्सन नॉर्मल ब्रीफिंग नहीं होता है,
0: ओके,
1: तो ये कार्डियक अरेस्ट है,
0: अच्छा,
1: ब्रीफिंग नहीं भी हो सकती है, तो क्या करना चाहिए इसके इसके जब ये होता है, तो उसमें सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन में बहुत जरूरी है,
0: ओके,
1: तो चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं, चेस्ट के सेंटर में हाथ, एक हाथ में दूसरा हाथ डालते हैं,
0: ओके,
1: ऐसे,
0: यानी लॉक करना है, ऐसे करके लॉक करना है, ठीक,
1: और उसको चेस्ट के बीच में रखना चाहिए
0: जी।
1: जब चेस्ट के बीच में रखती हैं तो क्या होता है, ये हाथ से नहीं दबाना है, शोल्डर से दबाना है, यानी कि
0: ओके, मतलब प्रेशर आपको शोल्डर से लगाना है, जैसे हाथों की ओर दबाव नहीं है, शोल्डर से
1: हम दबाते हैं, तो जब दबाते हैं तो लगभग 100-120 कंप्रेशन होता है पर मिनट।
0: हाँ हाँ,
1: जब मैं सीखा कैसे करते हैं तो एक गीत था माइकल जैक्सन का स्टेइंग अलाइव,
0: हाँ
1: तो इसमें एक बीट होता है
0: सेकंड्स का, हाँ जी,
1: तो ये एक मिनट में 60 सेकंड होता है
0: जी,
1: तो हमको 100 कंप्रेशन देना है एक मिनट में,
0: ओके ओके,
1: तो अगर ये सीपीआर का भी कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो एक मशीन है जो शॉक करते हैं, उसका एईडी जो बोलते हैं, एईडी का यूज भी कर सकते हैं, पर मेरा अनुसार है कि एईडी सिर्फ एक जो हेल्थ
0: बिल्कुल जो प्रोफेशनल्स हैं, और ये तो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होगा, ये तो हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंस में ही या सामू में ही ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं जी। हाँ, तो जैसे मतलब वो इंस्ट्रूमेंट या वो चीज़ यूज़ करने से पहले सीपीआर
1: करना चाहिए,
0: हाँ जी,
1: तो कितना टाइम से सीपीआर होना चाहिए, तो अगर हम देखते हैं एक पेशेंट को 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट का सीपीआर देते हैं, अगर वो

0: नहीं आते हैं तो क्या करते हैं? तो जब हेल्थ प्रोफेशनल आता है इनसे आने के पहले CPR जारी रखना है।
1: ओके, मतलब जब तक कोई नहीं आता प्रोफेशनल तब तक आपको देते रहना।
0: हाँ, तो 30 मिनट में 20 मिनट वो आ जाएगी।
1: जी,
0: आ जाएंगे
1: जी।
0: दूसरा बात सांस लेना, तो जब जो बोलते हैं माउथ टू माउथ,
1: आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जैसे बोलते हैं,
0: आर्टिफिशियल ब्रीदिंग
1: जी,
0: ये जो कर सकते हैं करें, क्योंकि इसमें भी एक तरीके होते हैं, जैसे कि हेड को टिल्ट बैकवर्ड्स करने, क्योंकि एयरवे ओपन होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: नाक को दबाना चाहिए, और फिर माउथ टू माउथ को ब्लो इनके चेस्ट में, इनके माउथ में ब्लो करना चाहिए।
1: ओके,
0: तो ये भी कितना होना चाहिए, जैसे हमको 33 मिनट्स का CPR कहते हैं, एक सांस देते हैं, पर ये सब लोग नहीं जानते हैं, और किट का नहीं, ये किट जो हम यूज करते हैं वो नहीं है, क्योंकि हम एम्बू बैग यूज करते हैं
1: जी।
0: तो क्या करें? CPR करें। जो CPR बेटर होता है कि कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन का जान बचा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, CPR केवल कार्डियक अरेस्ट के टाइम दिया जाता है? मान लीजिए अगर आप की सिचुएशन, आप समंदर घूमने गए हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई ड्राउनिंग का केस हो रहा है, तो क्या ड्राउनिंग के केस में भी CPR जैसी सिचुएशन खड़ी होती है, या फिर वहां पर कैसे उस केस को हैंडल किया जाता है?
0: जब हम ड्राउनिंग केस को देखते हैं, जब मूवी में देखते हैं, तो CPR करते हैं। क्यों CPR करते हैं? ये क्योंकि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है। ओके, जब हम चेस्ट कंप्रेशन, हम पहले ड्राउनिंग केस को देखते हैं, तो हार्ट बीट है
1: जी,
0: हार्ट बीट है या क्या पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, सेम जैसे हम पहले बताए, सेम सिचुएशन ABCDs
1: बिल्कुल
0: चेक करना चाहिए। तो जब हम CPR देंगे इस पेशेंट को, हम देखते हैं कि ये पानी आते हैं, फिर वो खफ होते हैं, ये मूवी में देखते हैं, पर असली में भी ऐसा हो सकता है। जैसे एक पेशेंट आते हैं, उसका दिल रुक गया, तो दिल रुकने से CPR करना चाहिए, ड्राउनिंग के लिए नहीं।
1: ओके, यानी दिल की धड़कन अगर ऑन है लेकिन ड्राउनिंग का कोई केस है,
0: सांस ले रहा है और दिल की धड़कन है,
1: तो CPR की जरूरत
0: नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: CPR कब करते हैं? जब वो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव या सांस नहीं ले रहे हैं,
1: या चोक की वजह से अब दिल की धड़कन रुक गई है, तब जाकर CPR का सिचुएशन होता है। तो डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना के स्थल पर इंसान गिर गया है, एक्सीडेंट हुआ है और हड्डी टूट गई है, तो ऐसी सिचुएशन में या ब्लीडिंग हो रहा है या फ्रैक्चर हो गया है, तो ये दोनों ही सिचुएशन में एक फर्स्ट एडर को क्या ध्यान में रखना चाहिए?
0: तो पहले हम अन्य लोगों को के बारे में बताएंगे। पहले जब एक एक्सीडेंट होता है तो क्या करना, लोग पैनिक में आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब लोग पैनिक में आते हैं, गलत करते हैं, जैसे कि एक एक्सीडेंट होता है, वो ये इंसान को मूव करता है, ये नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: या कुछ खिला देता है, ये नहीं करना चाहिए, या कुछ जैसे कि एक पोस्चर में डालते हैं, ये नहीं करना, क्योंकि ये गलत है। क्या करना चाहिए? देखना चाहिए कि इंसान कैसा है, चेक करना वो रेस्पॉन्सिव है। जब हम एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो क्या हो सकता है,

0: हो सकता है ते हुए क्या क्या करना चाहिए, ये पेशेंट को चेक करना चाहिए, ब्लीडिंग है तो प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर डालना चाहिए, जो भी है आपके पास इस समय
1: उसे दबाना है, मतलब
0: उसे दबाना है। इसीलिए एक गाड़ी में एक फर्स्ट एड किट होना बहुत जरूरी है, हमारे लिए या दूसरों के लिए
1: बिल्कुल उस सिचुएशन में आपके पास जितना जल्दी हो सके एक अवेलेबल हो अगर ऐसा किट, तो आप उस समस्या में बहुत ज्यादा कंट्रोल ला सकते हैं, उस सिचुएशन में कंट्रोल ला सकते हैं।
0: तो दूसरी अगर फ्रैक्चर होता है, तो जब फ्रैक्चर होता है
1: पहले तो डॉक्टर फ्रैक्चर को डिटेक्ट कैसे किया जाए, बिकॉज फ्रैक्चर कई बार होता है कि बाहर दिखाई नहीं देता लेकिन फ्रैक्चर है।
0: तो पहले जब हम देखेंगे तो पेशेंट लेटा हुआ है या स्टैंडिंग है, अगर स्टैंडिंग है वो कर रहे हैं तो हाथ का फ्रैक्चर होगा तो वो हिलेगा
1: बिल्कुल,
0: उसका जॉइंट नहीं पकड़ेगा।
1: हाँ,
0: ये पहले चीज। अगर वो लेटा हुआ है तो हमको चेक करना पड़ता है, तो इसीलिए पहले ब्रीफ एबीसी, पहले एयरवे ब्रीफिंग, सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन में चेक करते हैं, जब बॉडी को चेक करते हैं, बॉडी में फ्रैक्चर का या
1: अगर वो कॉन्शियस है तो पूछ सकते हैं कि कहाँ पर उसे चोट लगी है,
0: कुछ कट होता है, कुछ स्टैब होता है जो एक्सीडेंट में हो सकता है, तो ये सब हम चेक करना चाहिए। स्टैबून है तो ये जो चीज अंदर गया है
1: उसे बाहर नहीं निकालना,
0: बाहर नहीं निकालना है,
1: बिल्कुल।
0: अगर निकालते हैं तो क्या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, रप्चर हो सकता है, तो ये फैसेट का काम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: फैसेट का काम होता है पेशेंट को जिंदा रखना, उसके मदद करना जब तक ट्रीटमेंट आता है।
1: बिल्कुल, प्रोफेशनल्स जब तक वहां तक पहुंचते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें, कई बार हो सकता है कि एक्सीडेंट की सिचुएशन में कई बार कुछ ऐसा नुकीली औजार या नुकीली कोई चीज अगर कहीं पर घुस जाती है तो बिल्कुल एक फर्स्ट एडर को ये बात याद रखनी है कि उसे बाहर नहीं निकालना है। अगर एक इंसान लेटी हुई स्थिति में है तो उसे बिठाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, और अगर वो कॉन्शियस है तो उसे सिर्फ पूछना है कि क्या हुआ, ताकि आप एनालाइज कर पाएं उस सिचुएशन के बारे में। चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो एक फर्स्ट एडर को हमेशा, फर्स्ट एडर का मतलब ये है कि जो इंसान वहाँ पर उपलब्ध है या वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आम इंसान को भी एक फर्स्ट एडर कहा जा सकता है अगर उसके पास ये सारी नॉलेज हो तो। और ये सारी नॉलेज ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जो वॉलंटरीली लोगों तक पहुंचाती हैं, उन्हें सिखाती हैं किस तरह से आप एक फर्स्ट एडर बन सकते हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे अभी थोड़ी ही देर में, गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं बस अभी कुछ ही पल में।

0: की चर्चा।
1: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम और आज हमारे साथ तकनीक पर बने रहे कादिया, साथ ही साथ दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट और हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं शीतल। बिल्कुल आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर बसावन और बिल्कुल नज़र हमारी दौड़ रही है समय पर, तो समय बहुत कम रह गया है तो हम डॉक्टर जी से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर जी, आज के इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने के लिए हमें हमारे जो श्रोता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आप क्या संदेश देंगे और एक बार फिर फर्स्ट एड किट का कि जो ज़रूरियात है, जो भी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, उस पर आप एक बार फिर हमें बता दीजिए।
2: ओके, तो आज के अवेयरनेस प्रोग्राम के सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये हैं कि फर्स्ट एड सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है और मेडिकल हेल्थ के प्रोफेशनल के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान को के लिए एक लाइफ सेविंग स्किल है। ये पहली बात। दूसरी बात, जब इमरजेंसी में आका एक्शन होते हैं, इमरजेंसी में पैनिक नहीं होना चाहिए, एक्शन जरूरी है। ये एक्शन करने के लिए फर्स्ट एड किट होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: तो फर्स्ट एड किट आप हर घर में रखिए और एक अपनी गाड़ी में जरूर रखिए। फर्स्ट एड के बारे में आज सभी दर्शकों ने सुना, सुनने सीखिए भी, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए एक जो भी एसोसिएशन है जो कोर्सेज दे रहे हैं आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो भी रेड क्रॉस हैं, प्रोकेयर पैरामेडिक्स, सेंट जोन्स, जो भी एसोसिएशन हैं हेल्थ एड में, उसका जानकारी लीजिए। और अंतिम में मैं एक बात करना चाहता हूँ। आप हो जहाँ इमरजेंसी होता है, जब इमरजेंसी होता है आप एक डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन आप वो इंसान हो सकते हैं जो है पहुँचाने से किसी की जान बचा सकती है।
1: बिल्कुल।
2: सो लर्न फर्स्ट एड, लर्न CPR, बी रेडी एंड बी ए लाइफ सेवर।
1: बिल्कुल, तो ये था आज के इस कार्यक्रम का एंडिंग स्टेटमेंट। और बिल्कुल फर्स्ट एडर्स के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाएगा 12 सितंबर को। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करने का समय हो चला है। आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सब।

0: आइए सुनते समाचार विदिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनिशा, सभी को नमस्कार। आज दिन के दौरान पोटली में एक सड़क दुर्घटना पेश आई। इसमें चार वाहन संलग्न हैं। दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम पैदा हुई है। अधिक जानकारी हम आपको अपने अगले बुलेटिन में देंगे। भारत सरकार डिजिटल परिवर्तन में कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का सहयोग कर रही है। इस सहयोग के मुख्य पहलुओं में से एक कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल है, ताकि उन्हें नए उपकरणों और उपकरणों के उपयोग के लिए तैयार किया जा सके। अक्टूबर महीने से ही उनके लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। शागस मामले में एक नया विकास सामने आया है। मालदीव्स ने लंदन से द्वीप समूह की संप्रभुता पर चर्चा फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध कल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू द्वारा नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से किया गया। लंदन ने उन्हें जवाब दिया है कि यह मुद्दा मॉरिशस के साथ उसके संबंधों के दायरे में आता है और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत कल फिर से शुरू होनी है। और विदेश में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के कुछ सामानों पर नए आयात प्रतिबंधों और 50% टैरिफ की घोषणा की है। ये कदम ओटावा द्वारा अमरीकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लागू किए जाने से ठीक एक दिन बाद उठाया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
3: नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी शाम आप सभी के नाम, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन, और मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपकी सहेली अनुराधा। लेकर आई हूं एक ऐसा सफर जहां रास्ते पुराने हैं मगर एहसास आज भी बिल्कुल नए हैं।
4: दिल से मिले दिल।
3: जी हाँ दोस्तों, दिल से मिले दिल। शाम के 4:03 हुए हैं। कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो हमेशा जिंदा रहती हैं। किसी पुराने गीत की तरह, या फिर किसी खुशबू की तरह, या फिर किसी अपने की मुस्कुराहट की तरह।

0: गाने सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं, और कुछ पल जीने के लिए नहीं, सिर्फ ठहरने के लिए। ये शाम ऐसी ही है एक पल, रेडियो मनोरंजन पर 94.6 MHz पर ठहरो, सुनो और जियो।
1: अभी अलविदा मत कहो।

बीते हुए लम्हों की कुछ यादें सता रही हैं इस समय। जिंदगी में एक मोड़ आता है जब हम पीछे मोड़ कर देखते हैं और सोचते हैं काश वह रुक जाती, काश वो रास्ता न छोड़ती, काश वो एक लम्हा थोड़ा और लंबा होता। लेकिन वक्त किसी का नहीं सुनता, वो चलता रहता है आगे और आगे। और आज रेडियो मनोरंजन पर हम उससे मोड़ पर वापस जाते हैं, उस जगह जो दिल ने कभी नहीं छोड़ा। आइए तलत महबूब की जुबानी फिल्म जहानारा का एक गीत हम आपको सुनवाते हैं। और आज की शाम ये

5250-6200 पर 5250-6200 पर आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनु जी नमस्ते, मैं कविता मोचिदा से। नमस्कार कविता जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ और हमारे यहाँ बहुत ठंड और तेज़ हवा भी है। हम इस वक्त आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं और कुछ कुछ बीते पल को भी याद कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास जगह बना लेते हैं और उनकी याद दिल के एक कोने में बस जाते हैं। प्लीज़ हमारे लिए फिल्म संजोग का गाना वो भूली दास्तान, लो फिर याद आ गई, सभी सुनने वालों के नाम करते हैं। थैंक यू कविता जी। कभी दिल खुद ही बातें करने लगते हैं बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी वजह के।

जहां दोस्तों तो इस सफर के दौरान चलिए मिलते हैं उन्हें पुरानी यादों से, उन्हें खूबसूरत लम्हों से और उन गीतों से जो उन्होंने कभी हमारे दिल को छुआ था। आपका अपना प्रोग्राम दिल से मिले दिल में। एक और प्यारा सा नगमा लता जी की आवाज में।

यादें की बात जब होती हैं किसी को स्कूल के दिन याद आते हैं तो किसी को कॉलेज की वो शरारतें तो किसी को पहली मुलाकात और किसी को कोई ऐसा शख्स जो आज पास तो नहीं मगर दिल के बहुत करीब रहते हैं तो सुनते रहिए रेडियो मनोरंजन 94.95.6 मेगाहर्ट्ज़ पर

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: दिल से मिले दिल।
3: नमस्ते दीदी जी, नमस्ते आशा जी, आशा जानू जो को तेज के रहने वाली हैं, इनसे बड़ी भांति आप लोग बहुत ही परिचित हैं। Enjoying your selection of songs. थैंक यू आशा, हर एक पल खबर रखती है, हर पल की। पर आज न जाने दास्तान क्या है, हर एक लम्हा एक सबक है। आने वाले लम्हे की विधि, आने वाले लम्हे की विधि ही लिखे लेखन पर हर पल की। तो ये जो प्यारी सी कविता आपने भेजी है आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कुमारी, नेफ्यूज शुभम और ऋषभ की तरफ से, दीदी आरती, जेजू राज और जानू फैमिली के लिए और सभी लिसनर्स के लिए भी। और श्रोताओं, ये भी आपको बता दें कि सितंबर का महीना जो है आशा जानू के लिए बहुत ही लकी साबित है। उनके घर के कई सदस्यों का जन्मदिवस आता है और स्वयं आशा जी अपना जन्मदिन तो मनाती है सिर्फ।

सितंबर महीने में पूरा महीना अपने हिसाब से एंजॉय वो करती हैं तो जानू परिवार को बहुत-बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स परिजनों की ओर से सभी बच्चों जिनका जन्मदिन होता है उन सबको बहुत-बहुत सारा प्यार साथ ही साथ प्लान मानियों से रिद्धि रामदर्शन को उनकी सालगिरह के मौके पर मां की दिशा पापा लुमेश उनकी दो बहनें हैं वैसे तानवी और याबी साथ में हैं प्रीशा लेहक ईशान भी और नाना नानी की ओर से और दादा दादी की ओर से सभी परिवार वालों की ओर से रिद्धि को ढेर सारा प्यार चुंबन और आशीर्वाद और इस महीने में आने वाले दिनों के जो दिन हैं जो आने वाले दिन हैं जिन जिन लोगों भी अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ ये नजराना आप लोगों के लिए भेंट में

आपके गानों ने मन को तृप्त कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है इन मधुर गीतों को सुनकर। अगर आपके पास दूज का चांद मूवी का गाना पर खां पुहार है तो प्लीज़ चला देना। वैसे मैं और मेरे पति राजन बड़े प्यार से आपको सुन रहे हैं ये गाना आपके लिए भी। वैसे आपको जो मैसेज मिला

है बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पति राजन के लिए एक और सा नगमा हम चलाने जा रहे हैं फिल्म डूज का चांद का गाना फिर कभी हम चलाएंगे वैसे इस समय आप चाय पी रहे हो चाय का एक कप हो जाए और दिल को ज़रा सा पीछे ले चलिए क्योंकि आज यादें की भी होंगी बातें भी होंगी और गीतों के साथ साथ हम आपके साथ देंगे शाम 5 बजे तक रेडियो मनोरंजन पर 5256062 शून्य शून्य पर

महेंद्र जी आपका जो मैसेज मिला बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी प्रणाम और सादर नमन आपके इस कार्यक्रम से बहुत लाभ उठा रहा हूँ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इज गोल्ड

कुछ लोग हमारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं, कुछ जगहें हमसे छूट जाती हैं और कुछ पल दोबारा कभी नहीं आती। लेकिन यादों की खूबसूरती देखिए ना, जब चाहें आंखें बंद करके उन पलों में फिर से चले जा सकते हैं। महेंद्र जी, आपकी स्वर्गश्री संगिनी उर्मिला की याद में अगला नगमा।

कबोन की सरिता की फरमाइश पर हेमंत कुमार का गाया गाना सुनना था हमें, क्षमा करना, लेकिन अगली बार ज़रूर हम आपके लिए ये गाना चलाएंगे।

दोस्तों पता ही नहीं चला और शाम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली, लेकिन अच्छी यादें वक्त की मोहताज नहीं होती। वो तो जब भी याद आए दिल को एक बार फिर से वही खुशी दे जाती है, और शायद इसीलिए पुराने गीतों की बात ही कुछ और।

0: पानी।
1: शाम के 4:55 हुए हैं, ठीक 5 बजे अनकही एक कहानी आप सुनेंगे श्री विश्वानंद जी के साथ। अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। एक घंटा हमने साथ गुजारा पुराने गीतों, पुरानी बातों और उन खूबसूरत यादों के साथ जिन्हें वक्त कभी पुराना नहीं कर सकता। मैं हूँ अनुराधा और यादों को सिर्फ याद मत कीजिए, उन्हें मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि कल ही यही यादें आज का सबसे खूबसूरत खजाना है। ये अंतिम है, छोड़े जाते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ संध्या। और ये अंतिम है तो जो है अनीता जी।

अनकही एक कहानी।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हे वक्र सूंड वाले, विशाल शरीर वाले तथा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान गणेश, मेरे सभी कार्यों को सदैव बिना किसी विघ्न या कठिनाई के पूर्ण करो। श्रोताओं, हम गणेश जी की स्तुति करते हैं ताकि हमें बाधाओं का साहसपूर्वक सामना करने के लिए शक्ति प्राप्त हो सके। यह श्लोक हमें सिखाता है कि समस्याओं से घबराने के बजाय धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका सामना करना चाहिए। गणेश जी से हम यह भी सीखते हैं कि शिक्षा, विवेक, रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक हैं। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। श्रोताओं, यह प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान और MBC के सौजन्य से आप लोगों तक प्रेषित हो रहा है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राजशेखर भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से अभिवादन करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हृदय से आभार गुरु विश्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की मधुर तरंगों पर गुरु विश्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में विनायक चतुर्थी का पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस शुभ अवसर पर आप सभी श्रोताओं को सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान गणेश विनायक गणपति गजानन विघ्नहर्ता और बुद्धि विवेक के देवता, पता नहीं किन किन नामों से उन्हें जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश की आराधना से किया जाता है, लेकिन क्या हमने कभी यह समझने का प्रयास किया है कि आखिर गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? विघ्न केवल हमारे रास्ते में आने वाली बाहरी बाधाएँ नहीं होते, कभी हमारा अपना अहंकार हमारे मार्ग में बाधा बनता है, कभी अधीरता, कभी अज्ञान, कभी निराशा और कभी गलत दिशा में उठाया गया हमारा एक कदम। आज की हमारी कहानी इन्हीं विघ्नों को पहचानने और उनसे ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। हाँ प्रिय श्रोतागण, आज की अनकही एक कहानी केवल भगवान गणेश की महिमा की कथा नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन की कहानी भी है। उन बाधाओं की कहानी जिन्हें हमें बुद्धि, धैर्य, श्रद्धा और सही कर्म के माध्यम से पार करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे कि वास्तविक विघ्नहर्ता केवल वह नहीं जो हमारे रास्ते की बाधाएँ दूर करे, बल्कि वह भी है जो हमें सही मार्ग पहचानने की बुद्धि और कठिन समय में आगे बढ़ने का साहस दे। तो प्रिय श्रोतागण, कहानी इस प्रकार शुरू होती है। सौराष्ट्र के प्रतापी राजा सोमकांत, जो पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण शरीर में असहाय कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, अपना राजपाट पुत्र को सौंपकर शांति की खोज में महर्षि भृगु के पावन आश्रम पहुंचे। महर्षि भृगु ने उन्हें विनायक के महात्म्य, विवेक और लीलाओं का उपदेश देकर रोग मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह कथा महर्षि

0: भृगु के तपोवन आश्रम की है। वातावरण में शाम वेद की ऋचाओं की गूंज और हवन कुंड से उठता वह पवित्र धुआं। राजा सोमकांत अश्रुपूर्ण नेत्रों से ऋषि के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहते हैं,
1: हे ऋषिवर, देवनगर का राजा कहलाने वाला सोमकांत आज स्वयं के ही शरीर से घृणा कर रहा है। जिस क्रांति पर मुझे अभिमान था, वह कुष्ठ रोग की अग्नि में जल रही है। हे महात्मन, संसार में क्या ऐसा कोई देव है जिसकी भक्ति मेरे तन और मन के इस संताप को हर सके? कृपा कर मुझे मार्ग दिखाएं।
0: महर्षि भृगु शांत स्वभाव से राजा के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहते हैं, उठो राजन, हताशा को त्याग कर विघ्नहर्ता विनायक का स्मरण करो। वही समस्त सृष्टियों के मूलाधार हैं। उनके नाम मात्र का जाप मनुष्य के जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है।
1: ऋषिवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई है। त्रिदेवों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रहते हुए भी बालक विनायक को समस्त ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजे जाने का प्रथम पूज्य अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? क्या केवल शक्ति और चाल ही श्रेष्ठता का मापदंड नहीं है?
0: राजन, यह प्रश्न अति उत्तम है। प्राचीन काल में जब देवताओं के मध्य यह विवाद छिड़ा कि प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है, तब ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। और यह सुनते ही कार्तिकेय अपने तीव्रगामी मयूर पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से परिक्रमा के लिए निकल पड़े। अन्य देवगण भी अपने बलशाली वाहनों पर सवार होकर द्रुत गति से भागने लगे, परंतु मंद गति वाले मूसक पर सवार बालक विनायक शांत भाव से वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपनी भौतिक सीमाओं पर शोक व्यक्त नहीं किया।
1: फिर विनायक ने उस प्रतियोगिता को कैसे जीता प्रभु?
0: विनायक ने अपने विवेक का प्रयोग किया राजन। वे जानते थे कि समस्त वेद और शास्त्र माता पिता को ही ब्रह्मांड का स्वरूप मानते हैं। उन्होंने भक्ति भाव से अपने पिता महादेव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब देवगण लौट कर आए तो विनायक को विजयी घोषित पाया गया।
1: ओहो, यह तो अनुपम विवेक है।
0: हाँ सोमकांत, हे प्रिय राजन, विनायक का प्रथम सूत्र यही सिखाता है कि जीवन की दौड़ में केवल शारीरिक गति या साधन ही सब कुछ नहीं होते। सही दिशा और विवेकपूर्ण सोच ही असली बल है। जो मनुष्य माता पिता का सम्मान करता है और कठिन परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, संसार के समस्त विघ्न उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। राजन, नतमस्तक हो जाते हैं। महर्षि भृगु के मुख से विनायक के प्रथम सूत्र को सुनकर राजा सोमकांत के नेत्रों में ज्ञान की नई ज्योति जगमगा उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक ऋषि से अगला प्रश्न पूछा।
1: ऋषिवर, आपकी वाणी ने तो मेरे संताप को शांत ही कर दिया, परंतु मेरे मन में एक द्वंद्व पुनः उठ रहा है। यदि विनायक बुद्धि और ज्ञान के दाता हैं, तो क्या महान ज्ञानी और तपस्वी भी कभी मार्ग से भटक सकते हैं? क्या अहंकार ज्ञानियों की मति को हर लेता है?
0: राजा सोमकांत की बात सुनकर महर्षि भृगु मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, फिर बहुत ही गंभीरता भरे स्वर में कहते हैं, राजन, अहंकार ऐसा सूक्ष्म शत्रु है जो बड़े बड़े महाज्ञानियों को भी नहीं छोड़ता। इस संसार में विद्या, रूप या सत्ता का मद मनुष्य की बुद्धि

0: ही को छीन कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं महर्षि वेद व्यास जी हैं।
1: महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और 18 पुराणों की रचना की, क्या वे भी कभी अहंकार के वशीभूत नहीं हुए थे?
0: हाँ राजन, हाँ मेरे प्रिय सोमकांत, जब महर्षि वेद व्यास ने अत्यंत कठिन और दिव्य ग्रंथों का संकलन पूर्ण कर लिया तो उनके मन में अनजाने ही अपनी विद्वत्ता का अभिमान जागृत हो गया। वे स्वयं को शास्त्रों का सबसे बड़ा ज्ञाता मानने लगे। इसी अहंकार के कारण जब वे महान आख्यानों की रचना करने बैठे तो वे कार्य के प्रारंभ में विघ्नहर्ता विनायक का स्मरण और पूजन करना भूल गए।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ महर्षि?
0: अहंकार का फल तुरंत प्रकट हुआ। विनायक की कृपा हटते ही व्यास जी की विलक्षण स्मरण शक्ति छीन होने लगी। वे छंद, मंत्र और श्लोक भूलने लगे। उनकी लेखनी रुक गई राजन, और मति भ्रमित हो गई। तब व्याकुल होकर व्यास जी पितामह ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और अपनी स्थिति का कारण पूछा।
1: ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या मार्ग दिखाया ऋषिवर?
0: ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे व्यास, तुम्हें अपनी विद्या का अहंकार हो गया था और तुमने सर्वव्यापी विनायक को विस्मृत कर दिया था। जब तक तुम श्री गणेश के समक्ष अपने अहंकार का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बाद वेद व्यास जी ने कठोर तपस्या कर विनायक को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त कर महाभारत एवं पुराणों को लिपिबद्ध किया। राजन, लिपिबद्ध। महर्षि भृगु ने इस तरह से कथा कहते हुए सोमकांत को समझाया कि विनायक का यह दूसरा सिद्धांत यही सिखाता है कि विद्या चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, नम्रता के बिना वह निष्प्राण है। ज्ञानी को कभी अपनी बुद्धि पर और धनी को कभी अपने वैभव पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही पतन की पहली सीढ़ी है। राजन,

0: राजा सोमकांत का मुख ग्लानि और श्रद्धा के मिश्रित भावों से भर उठा। उन्होंने अपनी काया के अभिमान पर विचार किया और अति नम्र होकर ऋषिवर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
1: ऋषिवर, आपने सच कहा, मनुष्य का सारा कष्ट उसके अहंकार की ही देन है। किंतु महर्षि, यदि बड़े बड़े ज्ञानी भी भूल कर बैठते हैं तो क्या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कठोर वेद ज्ञान, बड़े बड़े यज्ञ और विधान ही आवश्यक है? क्या कोई साधारण या अज्ञानी प्राणी भी विनायक का प्रिय बन सकता है?
0: राजा सोमकांत की बात सुनकर वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से उनको देखते हुए महर्षि भृगु ने बहुत ही प्यार से कहा, हे सोमकांत, ईश्वर ना तो पांडित्य देखते हैं और ना ही यज्ञ हवि। विनायक केवल निश्चल भाव और निर्मल हृदय के भूखे हैं। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें भक्त बल्लाल की अमर कथा सुननी होगी।
1: कृपा कर सुनाए ऋषिवर, कौन थे भक्त बल्लाल?
0: राजा सोमकांत की जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि भृगु ने सुनाना प्रारंभ किया। कंकनपुर में कल्याण नाम का एक समृद्ध व्यापारी रहता था। उसका बालक बल्लाल बाल्यावस्था से ही विनायक का अनन्य भक्त था। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ वन में खेल रहा था। खेलते खेलते उसने एक साधारण से बड़े पत्थर को विनायक का स्वरूप मानकर स्थापित कर दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर उन पत्थर के ध्यान में लीन हो गया। बालकों की भक्ति इतनी तन्मय थी कि वे भूख प्यास और घर जाना सब भूल गए।
1: फिर बालक के पिता ने क्या किया प्रभु?
0: जब बच्चे रात तक घर नहीं पहुंचे सोमकांत, तो क्रोधित होकर कल्याण सेठ वन में गया। उसने बालकों की इस पूजा को व्यर्थ का खेल समझ लिया। क्रोध में अंधे होकर उसने स्थापित पत्थर को उखाड़ फेंका और बालक बल्लाल को निर्दयता से पीटकर एक वृक्ष से बांध भी दिया और कहा, अब देखते हैं तेरा विनायक तुझे कैसे बचाता है। और यह कहकर वह चला गया।
1: ओहो, उस अबोध बालक पर इतना अत्याचार! क्या विनायक ने अपने भक्त की पुकार नहीं सुनी?
0: अवश्य राजन, सुनी। जब बल्लाल के शरीर से रक्त बह रहा था और उस बच्चे का मन विनायक के चरणों में ही लगा था, उसने पिता के प्रति कोई क्रोध नहीं रखा, केवल विनायक का नाम जपता रहा। उसके इस निष्कपट और निश्चल भक्ति से द्रवित होकर स्वयं श्री गणेश एक तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बालक के सारे घाव भर दिए और उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। विनायक ने घोषणा की, हे बल्लाल, तुम्हारी इस अटूट निष्ठा के कारण मैं सदा के लिए यहां तुम्हारे नाम से निवास करूंगा। आज वही स्थान बल्लाल विनायक, कुछ लोग उसे अष्ट विनायक के रूप में भी जानते हैं, वे आज भी पूजनीय हैं राजन। महर्षि भृगु ने कथा को जोड़ते हुए आगे कहा, राजन, विनायक का यह तीसरा सूत्र स्पष्ट करता है कि ईश्वर को पाने के लिए बाह्य आडंबर नहीं, केवल निष्कपट और निश्चल श्रद्धा चाहिए। जहां सच्चा भाव है, वहीं विनायक स्वयं खींचे चले आते हैं। बालक बल्लाल की निश्चल भक्ति की अमर गाथा सुनकर राजा सोमकांत का हृदय गदगद हो उठा। आंखों से बहते अश्रुओं को पोंछते हुए उन्होंने महर्षि भृगु के चरणों को स्पर्श किया और श्रद्धापूर्वक कहा,
1: ऋषिवर, भक्त बल्लाल की कथा ने मेरे मन में एक नया विश्वास जगा दिया है।

0: किंतु एक संशय मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। जब किसी निष्पाप मनुष्य पर बिना किसी प्रत्यक्ष अपराध के असाध्य रोग या दुखों का भयंकर संकट आ पड़ता है, जैसे आज मुझ पर यह कुष्ठ रोग आया है, तब निराश होकर जब सारे मार्ग बंद प्रतीत हों, तो मनुष्य आशा की किरण कहाँ से खोजे।
1: राजन सोमकांत, ध्यान से सुनिए। संकट और दुखों का आगमन पूर्व जन्मों के कर्म चक्र का परिणाम होता है, परंतु विनायक की शरण में जाने पर बड़े से बड़ा संताप भी सूरज की किरणों के सामने कोहरे की भांति छट जाता है। इस बात का प्रमाण राजा रुक्मांगद का आख्यान है।
0: राजा रुक्मांगद पर कौन सा संकट आया था प्रभु?
1: सोमकांत, राजा रुक्मांगद अति धार्मिक और न्यायप्रिय शासक थे, किंतु एक ऋषि के अनजाने में हुए शाप के कारण वे भी अचानक तुम्हारी ही भांति दारुण कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। उनका स्वर्ण सा दमकता शरीर गलने लगा और प्रजा में निराशा छा गई। दुखी होकर राजा रुक्मांगद ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और वे घने जंगल की ओर चले गए।
0: फिर क्या उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए महर्षि?
1: नहीं राजन, निराश के उस घोर अंधकार में उन्हें देवर्षि नारद के दर्शन हुए। नारद जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे राजन, आत्मघात महापाप है। संकट कितना भी भयंकर क्यों ना हो, जब तक जीवन है आशा जीवित रहती है। तुम चिंतामणि गणेश के पावन क्षेत्र में जाओ और वहाँ के सरोवर में स्नान कर विनायक की अनन्य भाव से आराधना करो। राजा रुक्मांगद ने वैसा ही किया। उन्होंने चिंतामणि विनायक का ध्यान धरकर घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर विनायक ने उनके शरीर को पुनः निर्मल, कांतिमान और निरोगी बना दिया। राजन, महर्षि भृगु ने राजा के कंधों पर हाथ रखते हुए आगे उन्हें फिर समझाया, सोमकांत, विनायक का यह चौथा सूत्र तुम्हें यही संदेश देता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मनुष्य को कभी धैर्य और आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। विनायक केवल दुखों को नहीं हरते, बल्कि वे निराश हृदय में आशा की नई ज्योति जलाते हैं। जो प्राणी विपत्ति के समय विनायक का आश्रय लेता है, उसके लिए घोर संकट भी कल्याण का साधन बन जाता है। महर्षि भृगु के ढारस बंधाने पर राजा सोमकांत का मन विपत्ति के भय से मुक्त होने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी अंतरात्मा के एक और महान संशय को प्रकट किया।
0: ऋषिवर, दुखों से उबरने की आशा तो मुझे मिल गई है, परंतु जब संसार में असुरता, अनैतिकता और अधर्म का प्रभाव इतना बढ़ जाए कि स्वयं धर्म और सत्य भी संकट में दिखने लगे, तब उस बड़ी नकारात्मकता से विजय पाने का क्या मार्ग है? जब स्वयं त्रिलोकपति महादेव पर भी विपत्ति आई थी, तब क्या विनायक ही उनके सहायक बने थे?
1: अति उत्तम प्रश्न राजन। जब संसार में तामसी और असुरी शक्तियां हावी होने लगती हैं, तब केवल बाह्य बल या शस्त्र काम नहीं आते। उस समय आत्मिक संयम, अनुशासन और विनायक की एकाग्र साधना ही विजय का द्वार खोलती है। इस रहस्य को तुम त्रिपुरासुर वध की कथा से समझो।
0: हे महात्मन, कृपा कर मुझे त्रिपुरासुर के वध की वह पावन कथा सुनाएं।
1: राजन, त्रिपुरासुर नाम के असुर ने ब्रह्मा जी से आकाश, पृथ्वी और पाताल में तीन अति अभेद्य पुरियों का वरदान पाया था।

0: जब तक वे तीनों पुड़ियां एक सीधी रेखा में ना आ जाएं और एक ही बाण से ना भेदी जाएं, तब तक उसका वध असंभव था। शक्ति और वरदान के मद में घमंडी होकर, अंधा होकर त्रिपुरासुर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। समस्त देवगण, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी जब युद्ध में उतरे तो कार्य के आरंभ में विघ्नहर्ता का स्मरण ना करने के कारण उनका रथ टूट गया और बाण संधान में बार बार बाधाएं आने लगी।
1: अच्छा, स्वयं महादेव के कार्य में भी विघ्न, फिर शिवजी ने उस अधर्म का अंत कैसे किया ऋषिवर?
0: तब महादेव ने युद्ध भूमि में ही ध्यान लगाकर अपने पुत्र विनायक के एकाक्षर बीज मंत्र का जप किया और विनायक की उपासना की। विनायक ने प्रकट होकर महादेव को आशीर्वाद दिया और उनके रथ के विघ्नों का हरण किया। तदुपरांत पूर्ण संयम, एकाग्रता और विनायक के आशीर्वाद से महादेव ने एक ही दिव्य बाण से त्रिपुरासुर की तीनों पुरियों को भस्म कर अधर्म का अंत कर दिया।

0: महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को आगे समझाते हुए कहा, सोमकांत, विनायक का यह पांचवां सूत्र सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी नकारात्मकता या धर्म युद्ध की स्थिति क्यों ना आ जाए, बिना संयम और ईश्वर स्मरण के विजय असंभव है। जब भी कोई महान कार्य करो तो अपनी शक्ति का घमन छोड़कर विनायक की दिव्य अनुशासन और मार्ग का आश्रय लो। बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। त्रिपुरासुर वध की गाथा सुनकर राजा सोमकांत का हृदय भक्ति और विस्मय से भर उठा। उन्होंने नम्रतापूर्वक महर्षि भृगु के चरणों में मस्तक झुकाया और एक नया प्रश्न प्रस्तुत किया।
1: ऋषिवर, विनायक की कृपा से असंभव युद्ध भी जीते जा सकते हैं, यह तो मैं समझ गया। परंतु क्या विनायक की साधना केवल गृह त्यागी सन्यासियों या पराक्रमी पुरुषों के लिए ही है? क्या गृहस्थ जीवन में स्त्रियां और माताएं भी विनायक की कृपा से अपने बिछड़े हुए प्रियजनों, परिवार की सुख शांति और मर्यादा की रक्षा कर सकती हैं?
0: राजा सोमकांत की बात सुनकर महर्षि भृगु प्रसन्न हो उठे और मुस्कुराते हुए बोले, अति उत्तम संशय सोमकांत, विनायक की भक्ति में स्त्री

0: और पुरुष का कोई भेद नहीं है। नारी शक्ति का धैर्य, समर्पण और निश्चल प्रेम जब विनायक की साधना से जुड़ता है तो वह दिशाओं को बदलने का सामर्थ्य रखता है। इसका सर्वोत्तम दृष्टांत रानी इंदुमती और स्वयं जगदम्बा पार्वती की कथा है।
1: रानी इंदुमती ने विनायक की आराधना किस प्रकार की थी ऋषिवर?
0: राजन, राजा चित्रांगद की महारानी इंदुमती अति पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। एक बार दैवीय विधान से उनके पति राजा चित्रांगद का अचानक लोप हो गया और वे वर्षों तक लापता रहे। संपूर्ण राज्य में शोक छा गया और शत्रुओं ने राज्य को हथियाने का प्रयास किया, किंतु रानी इंदुमती ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने महर्षि नारद के उपदेश से एक मास तक निर्जल और कठोर व्रत रखकर विनायक व्रत का अनुष्ठान किया। उनकी इस अनन्य निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर विधायक ने उनके पति को सकुशल वापस लौटा दिया और उनके साम्राज्य को पुनः अच्छुन बना दिया।
1: और माता पार्वती की कथा क्या है प्रभु?
0: सोमकांत, तुम्हारी जिज्ञासा तो समाप्त ही नहीं हो रही है। तुम लगातार मुझसे कहानी पर कहानी सुनते जा रहे हो, तो सुनो। जब त्रिपुरासुर के युद्ध के समय भगवान शिव अत्यधिक समय तक वापस नहीं लौटे तो माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब उन्होंने भी अपने पुत्र विनायक की विधिवत अनुष्ठान पूर्वक पूजा की और उनके आशीष से ही शिव जी सकुशल और विजयी होकर लौटे। नारी की भक्ति में संकल्प की जो शक्ति है, विनायक उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। महर्षि भृगु आगे समझाते हुए कहते हैं, सोमकांत, विनायक का यह छठा सूत्र सिखाता है कि परिवार की रक्षा, संबंधों में सुदृढ़ता और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की सबसे बड़ी शक्ति नारी के समर्पण में निहित है। जहां स्त्रियों की श्रद्धा और विनायक का पूजन एक साथ होता है, उस गृह में कभी विघ्न, वियोग या अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। रानी इंदुमती और जगदम्बा पार्वती की कथा सुनकर राजा सोमकांत का हृदय गदगद हो उठा। विनायक की महिमा के 6 अध्यायों को आत्मसात करने के पश्चात अब उनके मन की समस्त भ्रांतियां मिट चुकी थीं। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा भाव से महर्षि भृगु के सामने हाथ जोड़े अपनी अंतिम जिज्ञासा व्यक्त की।
1: हे महात्मन, आपके ज्ञान रूपी अमृत से मेरा अज्ञान अंधकार नष्ट हो चुका है, परंतु अब कृपा कर मुझे विनायक के उस सर्वोच्च तत्व और वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराइए, जिसे जानकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। श्री गणेश का परम सत्य स्वरूप क्या है प्रभु, क्या है?
0: परम आनंदित होकर महर्षि भृगु बोले, अहो सोमकांत, अहो, अब तुम विनायक के परम ज्ञान को धारण करने के अधिकारी बन चुके हो। इस परम सत्य को समझने के लिए राजा वरेण्य को दिए गए गणेश गीता के उपदेश को सुनो।
1: राजा वरेण्य को भगवान विनायक ने क्या उपदेश दिया था ऋषिवर?
0: राजन, जब राजा वरेण्य ने श्री गणेश से उनके वास्तविक रूप को जानने की प्रार्थना की, तब भगवान विनायक ने अपना दिव्य विश्वव्यापी स्वरूप प्रकट करते हुए कहा, हे राजन, मैं केवल गजानंद रूपी मूर्ति या एक सीमित आकार नहीं हूँ, मैं ही समस्त ब्रह्मांड का ओंकार हूँ। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझमें जो अज्ञानवश भेद देखता है, वह संसारी चक्र में भटकता रहता है। वास्तव में ये सभी रूप मेरी ही चेतना के अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। विनायक की इस दृष्टि के कण कण में समाये हुए सर्वव्यापी ब्रह्म है।
1: फिर एक भक्त को ईश्वर के को किस दृष्टि से देखना चाहिए प्रभु?
0: विनायक का कथन है कि जो साधक समस्त प्राणियों में एक ही ईश्वर का अंश देखता है,

किसी से द्वेष नहीं करता और सर्वत्र अभेद दृष्टि रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जब मनुष्य भेदभाव, ऊंच नीच और संकीर्णता से ऊपर उठकर प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखता है, तब विनायक उसके हृदय में स्वयं विराजमान हो जाते हैं। अंत में महर्षि भृगु कहते हैं, सोमकांत, यही विनायक का सातवां और अंतिम महासूत्र है। सर्वव्यापकता और अभेद दृष्टि, जो मनुष्य इन सात प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। महर्षि के यह कहते ही एक अलौकिक चमत्कार हुआ। विनायक की इस पावन कथा के श्रवण और सात सूत्रों के ज्ञान से राजा सोमकांत का कुष्ठ रोग क्षण भर में लुप्त हो गया और उनका शरीर कंचन सा दमक उठा। राजा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से महर्षि भृगु के चरणों में मस्तक झुकाया और विनायक के ध्यान में लीन हो गए।

प्रिय श्रोतागण, विघ्नहर्ता विनायक कहानी का केंद्रीय संदेश यही है कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं पर विजय बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक, धैर्य, श्रद्धा और सही दिशा से प्राप्त होती है। कहानी में विनायक की प्रथम शिक्षा यही बताती है कि जीवन की दौड़ में केवल तेज गति या अधिक साधन होना पर्याप्त नहीं होता है, सही दिशा और विवेकपूर्ण सोच ही वास्तविक शक्ति है। माता पिता के सम्मान और बुद्धि के उचित प्रयोग से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। भक्त बल्लाल की कथा हमें बताती है

0: कि निष्कपट और निश्चल श्रद्धा में अद्भुत शक्ति होती है। विपरीत परिस्थितियों और अत्याचार के बीच भी बल्लाल ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और उसके धैर्य तथा भक्ति ने उसे विनायक की कृपा का पात्र बनाया। कहानी यह भी संदेश देती है कि कठिन समय में निराश होने के बजाय धैर्य और आशा को बनाए रखना चाहिए। तो विनायक केवल विघ्नों को दूर करने वाले देवता नहीं बल्कि निराश मन में आशा की ज्योति जगाने वाले भी देवता हैं। तो प्रिय श्रोतागण, अब हमारा समय हो गया है मुहावरों का। पिछली बार जो आपसे मुहावरे पूछे गए थे वे कृष्ण जी से जुड़े हुए थे, इस बार के मुहावरे जो हैं वे गणेश जी से जुड़े हुए हैं। तो पहले इस बार के मुहावरे आप सुनिए जो गणेश जी से संबंधित हैं। पहला है श्री गणेश करना और दूसरा है गोबर गणेश होना। तो फिर से सुन लीजिए, श्री गणेश करना, गोबर गणेश होना। इस पर आप आपस में विचार कीजिएगा, इसका अर्थ अगली बार गुरु विश्वा बताएंगे। लेकिन अभी गुरु विश्वा पिछली बार के मुहावरे का अर्थ आपको बताएंगे जो कृष्ण जी से जुड़े थे। पहला मुहावरा था शंखनाद करना।
1: जी, इसका अर्थ है किसी धर्म युद्ध, महान कार्य या न्याय की स्थापना के लिए आधिकारिक और शंखनाद, शंख बजाकर घोषणा करना। वाक्य में यदि इसका प्रयोग करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख से महाभारत युद्ध का शंखनाद किया।
0: और दूसरा जो आपसे पूछा गया था वह था गांडीव उठाना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है युद्ध, विरोध या किसी बड़े संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होना। जैसे जब अर्जुन अधर्म के विरुद्ध लड़ने के पीछे से हट रहे थे, तब श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कथा है, कृपया इसका आनंद उठाइए। एक युवक बार बार असफल होकर निराश हो गया। उसे लगा कि परिस्थितियां उसके विरुद्ध हैं और प्रयास करना व्यर्थ है। तभी उसके गुरु ने कहा, संकट तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति को पहचानने का अवसर है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में विचलित हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया था। युवक ने अपनी निराशा त्याग कर फिर प्रयास करने का संकल्प लिया। उसने डटकर कठिनाइयों का सामना किया और अंततः सफलता की प्राप्ति की। सच्चा विजेता वही है जो संकट में हार न माने, क्योंकि श्रोताओं, कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
0: बहुत अच्छी बात कही गुरु विश्वा ने। और प्रिय श्रोतागण, गुरु विश्वा हर बार मुहावरों पर अपनी स्वरचित लघु कथा सुनाते हैं, आप उनसे सीखिए। और आप भी अपने जीवन में जिन मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं उस पर छोटी छोटी कहानी लिखने की आदत डालिए। मैं युवाओं से भी आग्रह करूँगा, वे भी ऐसा कर सकते हैं और बच्चे तो हमारे करते ही हैं। तो प्रिय श्रोतागण, अब आपके लिए एक आमंत्रण संदेश भी है। अनकही कहानी आपको आमंत्रित करता है कि अपनी ऐसी कहानी हमें लिखकर भेजें जिसमें आपके जीवन की किसी बाधा को बुद्धि, साहस, विश्वास, धैर्य, सेवा या सकारात्मक सोच से पार किया हो। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में सुनाई जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगी। इस विनायक चतुर्थी पर आइए हम एक सुंदर संकल्प लें, अपने भीतर के अहंकार को दूर करेंगे, विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखेंगे और जहां संभव होगा दूसरों के जीवन के विघ्न दूर करने में सहयोग भी करेंगे। क्योंकि भगवान गणेश की सच्ची आराधना केवल उनके सामने दीप जलाने में नहीं बल्कि अपने जीवन में बुद्धि, विनम्रता, करुणा और सद्भाव का प्रकाश जलाने में भी है। अपनी रचनाएं हमें professorrajshekhar@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर देते रहिए, क्योंकि कौन जानता है आपकी एक छोटी सी कहानी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का कोई बड़ा विघ्न दूर करने की प्रेरणा बन जाए। आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।
1: प्रोफेसर राज जी, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए एवं सूचनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद आपको करते हैं। श्रोताओं, कहा गया है, त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, त्वम ब्रह्ममयोसि, त्वम सच्च

चिदानंद अद्वितीयोसी। इन पंक्तियों के माध्यम से गणेश जी की वंदना करते हुए कहा गया है कि आप ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप है, आप ब्रह्म के स्वरूप है तथा सत चित और आनंद के अद्वितीय रूप है। श्रोताओं, आधुनिक समाज में ज्ञान और विज्ञान के साथ चेतना, विवेक तथा मानसिक संतुलन का समन्वय ही व्यक्ति के समग्र विकास और सुखी जीवन का आधार है। गणेश जी हमें अपने कार्यों को बाधा रहित और सफल बनाने की प्रेरणा देते हैं। श्रोताओं, विशेषकर प्रिय विद्यार्थियों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें और निरंतर प्रयास करते रहें। यही सफलता का एकमात्र रहस्य है। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राजशेखर को आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह फिर एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों ने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सेंट ख्वा में प्रार्थना, स्मरण और भाईचारे का विशेष वातावरण रहा। पहलावाल की 162वीं पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके मकबरे पर पहुंचे। मुख्य प्रार्थना सभा में गरीबों की सहायता और अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। मॉरिशस में निवेश को रफ्तार देने और कारोबार की राह आसान बनाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। लाइसेंस और परमिट जल्द जारी करने के साथ साइलेंट एग्रीमेंट का नियम लाने और सेवाओं में एआई का उपयोग करने की योजना है। और विदेश में नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद मलबे और पानी से भरी सुरंगों में लापता लोगों की तलाश जारी है। 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता। उधर बिहार के 13 जिलों में बाढ़ से 34 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। सबसे पहले ये खबर। पाए में आज दोपहर एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। हादसे में लोहे की छड़ें ले जा रहा एक लॉरी और

0: कई अन्य गाड़ियां शामिल हैं, 9 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना दोपहर करीब 2:07 पर मेफ्लावर के पास M2 मोटरवे पर हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार पोटवी की ओर जा रहे लॉरी ने पहले कई गाड़ियों को टक्कर मारी, इसके बाद वो बीच के डिवाइडर को पार कर गया और विपरीत दिशा से आ रही अन्य गाड़ियों से भी टकराई। आखिर में भारी वाहन मोटरवे की दूसरी ओर सड़क किनारे जाकर रुका। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लॉरी में लदी लोहे की छड़ें सड़क पर बिखर गईं, इसके कारण दोनों दिशाओं में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस अभी भी स्थल पर मौजूद है। कल शाम एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेंट क्वा पहुंचे। उन्होंने 162वें वर्ष के अवसर पर बियनोर जाक देजिरे लावाल की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वर्ष एंसेम्ब अवेक पे लावाल पो एन सोसाइटी प्लीजिस एक फ्रैटर्नेल फव लावाल के साथ एक न्यायपूर्ण और भाईचारे वाले समाज की ओर विषय के साथ ये श्रद्धा और भक्ति हमेशा की तरह उतनी ही जीवंत बनी रही। कल शाम की मुख्य प्रार्थना सभा का संचालन पोटवी के बिशप द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा कि फव लावाल ने केवल गरीबों की बात नहीं सुनी बल्कि उन्होंने दूसरों के साथ ये भी विवेचन किया कि यीशु मसीह की सेवा करके उनकी सेवा कैसे की जाए। व्यापार को सुगम बनाना और सबसे बढ़कर निवेश में तेजी लाना, अधिकारी मॉरिशस में व्यावसायिक माहौल को अधिक सरल, तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए कई उपायों की योजना बना रहे हैं। प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं लाइसेंस और परमिट प्रक्रियाओं में संशोधन, साइलेंट एग्रीमेंट का सिद्धांत या फिर व्यवसायों और निवेशकों के लिए बनाई गई सेवाओं में AI का एकीकरण। अब्दुल्ला की गीता सुनारान।
1: EDB यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड इस समय कारोबार के सामने आने वाली मुख्य अड़चनों की पहचान करके उन्हें कम करने पर काम कर रहा है। प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक नया बिजनेस फैसिलिटेशन बिल भी तैयार किया जा रहा है। कुछ आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी लाइसेंस की अर्जियों पर फैसला जल्दी लेने के लिए साइलेंट एग्रीमेंट व्यवस्था को भी फिर से लागू किया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कारोबार के माहौल को बेहतर बनाने और खास तौर पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये कदम अहम है। अर्थशास्त्री डॉक्टर भवेश जगन्नाथ कहते हैं, मॉरिशस का उद्देश्य है वृद्धि को बढ़ाना, इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। विदेशी निवेशक आएंगे, इसके लिए हमारे यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जो व्यवसाय को आसान बनाए। टेक्निक भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सिस्टम यानी NELS को और मजबूत किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए साधन शामिल किए जाएंगे। इनमें कई भाषाओं में काम करने वाला चैटबॉट भी होगा जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा कई दूसरी प्रक्रियाओं को भी स्वचालित किया जाएगा। अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मॉरिशस की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। मॉरिशस के सामने कई कॉम्पिटिटर हैं जो विदेशी निवेश की तलाश में हैं, जैसे दुबई, रुआंडा, बोत्सवाना, केन्या, नाइजीरिया जो इसी मंडी में हैं। इन निवेशकों को यहाँ लाने के लिए हमारे पास उन्हें देने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। इन सुधारों के जरिए लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बी रेडी सूचकांकों में मॉरिशस की स्थिति और बेहतर हो, साथ ही देश को कारोबार और निवेश के लिए एक आकर्षक जगह के रूप में और मजबूत किया जा सके।
0: फ्लिकॉफ्लाक में मंगलवार से सिसना के क्षमता निर्माण पर 3 दिवसीय चौथा वार्षिक सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें साडेक क्षेत्र के नॉन बैंकिंग वित्तीय सेवा नियामकों के प्रमुख अधिकारी वित्तीय माहौल में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच शासन निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और भर्ती चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि कल शाम एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेंट क्वा पहुंचे। उन्होंने 162वें वर्ष के अवसर पर बियनोर जाक देजिरे लावाल की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रजनी पीकर।
2: कुछ एक फूल भेंट करने आए, कुछ लोग एक मोमबत्ती जलाने, एक प्रार्थना करने, कुछ साधारण हरकत, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही मायने रखते हैं। ये मॉरिशनों के दिल में बियनोर पे लावाल के प्रति लगाव और गहन भक्ति दर्शाते हैं।
3: C'est un exemple qui nous suit parce que Pelaval il accomplit ce qui bon Dieu de nous faire pour la terre. C'est-à-dire partage et ce qui nous n'a et de bonnes pauvres.
4: Tous les années moi je passe Getli.
5: Avec qui vous êtes venu aujourd'hui?
6: Avec mon papa et ma maman.
5: et mon frère.

राष्ट्रीय स्तर पर कैनाबिस संबंधी नीति में सुधार पर तैयार रिपोर्ट आज दोपहर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम को नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल नैडक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल नायक और इसकी अध्यक्ष नाद्या पिरन ने सौंपी। दोनों अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट व्यापक बहुआयामी और समावेशी प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है। देश भर में आयोजित व्यापक परामर्श के दौरान 1800 से अधिक सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिससे आम जनता और विभिन्न साझेदारों को अपनी राय रखने का अवसर मिला। ये रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा कई मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मॉरिशस के लिए ऐसी जिम्मेदार, सुसंगत और देश की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नीति तैयार करना है। इस दस्तावेज की जल्द ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के सदस्यों द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के बाद कुणाल नायक ने चर्चा पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ नैडक के सामने आने वाली चुनौतियों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मौजूद बाधाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इन कठिनाइयों के समाधान के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन ने आज मुका स्थित अपने मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान 15 सितंबर को बॉशरी घोंबा मराठी मंडली में होने वाली गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह की तैयारियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की रूपरेखा, विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी और इस पर्व के धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। विदेश की खबरों में, नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस आपदा में 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। उधर बिहार में भी बाढ़ ने गंभीर रूप

0: मलेरिया है, जहां 13 जिलों में 34 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। आस्था गोविंद तमन।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मलबे और पानी से भरे हाइड्रोपावर परियोजनाओं की सुरंगों में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। त्रिशूली नदी के पास एक सुरंग से दो कर्मचारियों को 9 दिन बाद जीवित निकाला गया। आपदा में 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 5000 से अधिक लोग अब भी लापता है। भारत ने राहत सामग्री के साथ बचाव दल और सुरंग विशेषज्ञ भेजे हैं। चीन, ब्रिटेन और अन्य देशों की टीमें भी अभियान में सहायता कर रही है। उधर बिहार में बाढ़ ने गंभीर रूप ले लिया है। 13 जिलों की 480 ग्राम पंचायतों में करीब 34,31,000 लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में 29 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। गंगा के साथ कोसी और गंडक सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना, भागलपुर और वैशाली सहित कई जिलों में पानी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुँच गया है। राहत और बचाव के लिए NDRF और SDRF की 33 टीम में तैनात हैं, जबकि करीब 700 नौकाओं की सहायता ली जा रही है। प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और सामुदायिक रसोई भी खोली गई है।
0: गणेश चतुर्थी के साथ करीब आ रहा है विघ्नहर्ता का शुभ आगमन और इसी के साथ प्रतिमाओं में आकार ले रही है श्रद्धा और भक्ति। तमिलनाडु के विलुपुरम में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की छोटी बड़ी प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों में ये प्रतिमाएं पूजा पंडालों और श्रद्धालुओं के घरों में विराजमान होंगी।
1: मिट्टी में आकार लेती आस्था, रंगों में सजती भक्ति और शिल्पकारों के हाथों धीरे धीरे साकार होते प्रथम पूज्य भगवान गणेश। भारत के तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम में इन दिनों हर ओर गणेश चतुर्थी की तैयारियां देखी जा रही हैं। यहां छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। कहीं प्रतिमाओं पर रंगों की सुंदर परत चढ़ाई जा रही है, तो कहीं भगवान गणेश के मुकुट, आभूषण और वस्त्रों को सजाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्षण नेत्रों को आकार देना होता है, क्योंकि आंखें बनते ही मानो प्रतिमा में एक नई भाव भंगिमा उभर आती है। इस कार्य में पुरुषों के साथ महिला शिल्पकार भी पूरे मन और श्रद्धा से जुटी हैं। उनके हाथों की सफाई, रंगों का सही मेल और छोटी से छोटी बारीकी पर दिया गया ध्यान हर प्रतिमा को एक अलग पहचान देता है। विलुपुरम में गणेश प्रतिमाएं बनाने की ये परंपरा 37 वर्षों से चली आ रही है। समय के साथ प्रतिमाओं के आकार, रंग और सजावट में बदलाव आया, लेकिन शिल्पकारों की भक्ति आज भी वैसे ही बनी हुई है। उनके लिए ये केवल कला या आजीविका नहीं, बल्कि भगवान गणेश की सेवा और उपासना भी है। जल्द ही ये प्रतिमाएं पूजा पंडालों और श्रद्धालुओं के घरों की शोभा बढ़ाएंगी। विघ्नहर्ता के आगमन के साथ हर ओर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी और वातावरण गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से गूंज उठेगा।
0: मासूम आंखें, प्यारी सी चाल और गंध पहचानने की अद्भुत क्षमता। बेंगलुरु का स्टार्टअप डॉग्नोसिस अब प्रशिक्षित कुत्तों की सहायता से कैंसर की शुरुआती पहचान का नया तरीका विकसित कर रहा है। ये कुत्ते व्यक्ति की सांस में होने वाले उन छोटे बदलावों को पहचानना सीख रहे हैं जो बीमारी का संकेत हो सकते हैं।
1: मासूम आंखें, प्यारी सी चाल और हर नई गंध को पहचानने के लिए हमेशा तैयार नाक मनुष्य के सबसे वफादार साथी अब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में भी खास भूमिका निभा सकते हैं। बेंगलुरु का स्टार्टअप डॉग्नोसिस से इन कुत्तों की अद्भुत सूंघने की क्षमता का उपयोग कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए कर रहा है। इन्हें व्यक्ति की सांस में होने वाले उन छोटे बदलावों को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो बीमारी का संकेत हो सकते हैं। ये जांच आसान, कम खर्चीली और बिना दर्द के हो सकती है, हालांकि उनके इस्तेमाल से पहले और परीक्षण जरूरी है। अपनी प्यारी हरकतों से चेहरे पर मुस्कान लाने वाले ये चार पैरों वाले साथी आने वाले समय में किसी का जीवन बचाने में भी सहायता कर सकते हैं।
0: और अब अंत में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल गीता सुनारान के साथ।
2: मॉरिशस में ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी जारी है, जो कल गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटी साइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवाएं चल रही हैं। देश भर में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर ऊंचे इलाकों

पहाड़ों और हवाई ढलानों पर। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 17 से 22 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं। आम जनता से ऊंचाइयों और सड़कों पर सावधान रहने की मांग की जाती है। लगुनों के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा। 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी जो तटों तक पहुंच सकती हैं, खासकर पश्चिम और दक्षिण में।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम अपर्णा को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:17 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: जय शोक समाचार सुनिए। एफनीसिटी लेन कॉमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदेव अबिलक, जो देवा नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती चांदिनी अबिलक के घर एफनीसिटी लेन कॉमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 11 AM। सिवसागर लेन नोथोदाम में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी देवी राजा, पैदाइशी नाम तिमल और जोफिया नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनके बेटे अक्षय राजा के घर सिवसागर लेन नोथोदाम से उठाकर नोथोदाम की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 10:30। डॉक्टर मेनिला रोड पिचिटुशिदी में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री रामनोहर, पैदाइशी नाम सीतल और जो सलोनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर डॉक्टर मणिलाल रोड पिचिटुशिदी से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 10 AM। नंबर 172 बी एपासरे क्यूपिप रोड क्यूपिप में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमति दुमा, पैदाइशी नाम कुजो बिहारी और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे श्याम दुमा के घर नंबर 172 बी एपासरे क्यूपिप रोड क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 1 PM। नंबर 57 मामा डेला मुसैन स्ट्रीट सेंट क्वा में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पावती बिजन, पैदाशी नाम दुर्बीज और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी बेटी रेणुका देवी बिजन के घर नंबर 57 मामा डेला मुसैन स्ट्रीट सेंट क्रॉस से उठाकर सिपाही भोले वाले दिपैत की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 1 PM। सोल्फेरिनो नंबर 1 वाकवा में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की बीबी आयसा ईडन, पैदाइशी नाम राजा और जो आयसा नाम से भी जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा कल दिन के 11 बजे उनके घर सोल्फेरिनो नंबर 1 वाकवा से उठाकर फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुमोरो एट 11 AM। ला शापेल ओडोंट एडियनसन्स बोबासे में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुमारी खुर्गधारी, पैदाइशी नाम छगनलाल और जो कुमारी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। वे लो 55 एवेन्यू रेजिडेंस ट्रियानो रहती थी। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे ला शापेल ओडोंट एडियनसन्स बोबासा से उठाकर शुबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
2: NBC Radio, 24 hours a day.

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल गुरुवार 10 सितंबर 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक विलाज समौतें बेजुकाप में और आसपास के इलाकों में बेजुकाप और श्वाजी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Nee so. नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सबका स्वागत है. जी हाँ, 6:31 हुए हैं और आप सुन रहे हैं नई सोच प्रोग्राम ऑन आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन. और आज बुधवार 9 सितंबर 2026. जी हाँ, और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम. और इस प्रोग्राम में साथ निभाने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर. जी हाँ, ये शाम आपको मुबारक हो. दिन भर की थकान को कुछ पल के लिए भूल जाइए और इस हसीन शाम को पुराने गीतों, मीठी यादों और दिल की बातों के नाम कीजिए. और कहते हैं ना, शाम का रंग ही कुछ ऐसा होता है, ना दिन की जल्दी ना रात की खामोशी, बस एक सुकून, एक एहसास और कुछ खूबसूरत नगमे. तो आइए इस शाम को और भी हसीन बनाते हैं सुरों के साथ. और आप जहाँ भी हैं मुस्कुराते रहिए, ये शाम आपको मुबारक हो.

0: दिलों की आवाज,
1: रात के 7 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, और आप सबका स्वागत है आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन पर। और आप इस समय सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिलों की आवाज प्रोग्राम। मैं उषा कौर साथ निभाऊंगी 9 बजे तक, और वो खास रेडियो प्रोग्राम जहां बातें सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि दिल से होती है। और कभी कोई गीत दिल की बात कह जाता है, कभी कोई याद आंखों में नमी आ जाती है, और कभी किसी अपने की एक छोटी सी बात पूरा दिन खूबसूरत

बना देती है। तो चलिए यहाँ पर कहानी में एक एहसास है और हर गीत में एक जज्बात है और इसी जज्बात को लेकर आज हम खास बात करेंगे अक्षय कुमार पर। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो खास ये प्रोग्राम उनके नाम हम करते हैं, उनके सभी फैंस जो जुड़ चुके हैं। तो चलिए तैयार हो जाए क्योंकि जो प्लेलिस्ट हमने बनाया आपके लिए आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028070 और मैसेजेस कर सकते हैं 5250620।

चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस महान कलाकार के बारे में। जी हाँ, आज उनका जन्म दिवस है और वो है अक्षय कुमार। जी हाँ, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और अगला गाना जो है जाएगा खासकर माधवी के नाम, जो इस समय हमें सुन रही है फ्रॉम काठरबोन। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। ये गाना आपके लिए।

0: दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज प्रोग्राम जी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर और लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार की, जिनकी जन्मदिन 9 सितंबर को मनाया जाता है और वो दिन आज है। और अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय कुमार नहीं है बल्कि राजीव हरिओम भाटिया है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 के दशक में की और अपनी मेहनत, अनुशासन और बेहतरीन अभिनय के दम पर बॉलीवुड में एक खा। और चलिए उनके स्टाइल, उनके गाने, उनके चाहने वालों के लिए अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं। सुदेवी जी के लिए जो इस समय हमें सुन रही हैं, गाना खासकर दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के राम रतन परिवार और हमारे एमबीसी की पूरी टीम के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज की
1: आवाज जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास बर्थडे स्पेशल प्रोग्राम और आज का ये सफ़र समर्पित है अब बॉलीवुड के उस सितारे को जिसने अपने एक्शन, रोमांटिक कॉमेडी और ज़बरदस्त अंदाज से मिस्टर किरारी से भूले भूल भुलैया तक, जी हाँ, उन्होंने करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी के बारे में और वो है अक्षय कुमार। आज उनका जन्म दिवस है। याद रखिए कि उन्होंने मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया का रुख किया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने उन्हें बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में एक शामिल कर दिया। और अगला गाना जो हम चलाने जा रहे हैं वो है फिल्म भूल भुलैया से लिया गया, खासकर ये गाना अनीता जी के लिए जो इस समय हमें सुन रही हैं। साथ देने के लिए थैंक यू सो मच।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं महान कलाकार अक्षय कुमार पर और एक ऐसी फिल्म आई थी नमस्ते लंदन 2007 में जिसमें नजर आए थे अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ और ये फिल्म रिलीज़ हुई सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी ये कहानी थी दो अलग सोच दो अलग कल्चर और दो अलग दुनियाओं के बीच के रिश्तों की थी और फिल्म में अक्षय कुमार ने अर्जुन सिंह का किरदार निभाया जो अपनी मिट्टी अपनी परंपरा और अपने देश के बेहद पसंद करते थे वही कैटरीना कैफ का किरदार जसमीत जिसे प्यार से जाज कहा जाता है लंदन की मॉडर्न जिंदगी में पली बड़ी एक लड़की है और नमस्ते लंदन की सबसे खास बात है अक्षय कुमार का अर्जुन वाला किरदार उनके अंदाज में एक तरफ देसी सिंप्लिसिटी है तो दूसरी तरफ अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व तो चलिए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गाना हम सुनने जा रहे हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में

एंड दिस सॉन्ग गोज स्पेशली टू नाविद जो इस समय हमें सुन रहे हैं, जो राहत फतेह अली खान का एक बड़ा ही फैन है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.

0: दिलों की आवाज,
1: यह दोस्तों आज 9 सितंबर 2026 हम अक्षय कुमार का जन्मदिन मना रहे हैं और कल 8 सितंबर को हमने एक और महान गायिका जो इस दुनिया में नहीं रही और इस साल इस दुनिया से विदा हुई है और वो है आशा जी। कल उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और वो हिंदी फिल्म संगीत के लिए बेहद खास थे क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसी आवाज़ को जिसमें शरारत भी है, मिठास भी है और दर्द भी है और साथ में मोहब्बत। चलिए अगला गाना जाएगा रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबास है।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया. You're listening to RM3 Radio Mana.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: आज बजकर 52 मिनट हुए हैं दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे इस खास सफ़र का वक्त आ गया है ख़त्म होने का। आज हमने याद किया है एक ऐसी आवाज़ को, आशा जी, और साथ में अक्षय कुमार, महान एक्टर। और चलिए इसी के साथ मैं उषा आप लोगों से विदा लेती हूँ। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ हमेशा दीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। एक और इंतज़ार के लिए हम एक और मुलाकात के लिए हम इंतज़ार करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan.
2: भोजपुरी तड़का
3: सब संगत चालू किया जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम ई है चलो के पसंदीदा रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस भोजपुरी तड़का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे ली आज बुधवार की रात बुधवार 9 सितंबर साल 2026 थोड़ा मन करा था कोनो भी भोजपुरी गीत सुनने के जा नंबर वाक मैया का जगह दे विद जगह विद सैंक का जगह दे विद जगह विद सैंक पर और बरसाती मौसम बा हवादार मौसम बा पानी बरसात झिमी झिमी झिसी झिसी और ठंडा तो कर लग बा जरूर और ऐसे में बस हम के साथ देते जाइए और सुनते रहिए तो आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस और आज बुधवार तो बुधवार की रात जब आया था गमठ ही गमठ होला तो 9 के आधा प्रस्तुत क्लब से गो खेल प्रतियोगिता से एक आशील जावाता मैं जाके लिखे के तो लोग दुगो टिकट्स मिली तो ध्यान से सुनिए सवाल हमने के सवाल रही रात के 9 के आधा क्विज चली अभी खाते शुरू कर दिया जाए भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के साथ कुनाल कुनाल हिरीलाल की कावल गीत के साथ मार ताली मार

0: मार ताली मार ताली मार हमारे संगे तू भी ताली मार नाचा गावा झूमा और अभी एक और संगत है बालाइन पे ये लोग से मिल अब जाकर जगह दे विद जगह विद सांग का कर जगह दे विद जगह विद सांग भाई विजय बेनी पैसन भाई
1: हेलो भाई कैसे भाई जी नमस्ते भाई जी
0: नमस्ते जी कैसे समाचार
1: समाचार ठीक बा भाई जी आप कैसे हो भाई जी
0: कहाँ से टेलीफोन करे तो
1: हम सामुनी से टेलीफोन
0: लेता कैसे बा भैया
1: ऐसा पर अभी लेटो ठंडा ठंडा कर लिया बस वहाँ पानी नहीं बा
0: पानी नहीं बा हवा हवा बा
1: हवा हवा बा ठंडा बहुत कर रहा था ऐसा पोगा ऐसा लेता मैं भोजपुरी प्रोग्राम सुनने के बड़ा मजा दे अच्छा भाई जी देखा
0: ऐसी
1: सोना नोयन के गीत मांगा था नाटक बा सिनेमा बा टीका संगे जाइबा
0: हो देख नाटक बा सिनेमा बा
1: ये गीतवा सब बेनी प्रसाद परिवार के नाम जोड़ दिया अभी हमारे एगो एगो परिवार बात एगो दोस्त एथी ए गणेश जगनारायण जी सामुनी रहेला
0: कौन परिवार है जगनारायण परिवार
1: हाँ जगनारायण गणेश जगनारायण जी
0: हाँ हाँ

0: अभी हम खास दोस्त बाहतावा से गाँव में शास्त्री बनोमाली
1: शास्त्री बनोमाली भैया वो तो बड़ा गमट करे रहा खूब से गमट करेगे
0: हमार
1: खास दोस्त है ए ता तो हर बेस्ट फ्रेंड
0: है हमार बेस्ट फ्रेंड है ओकर नाम जोड़ दिया ओकर परिवार के साथ
1: आले बहुत धन्यवाद और एको सेकंड वाला लाइन जोकर से मिल अब जा हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते
2: नमस्ते जी
1: के हवा जा हां
2: श्रीमती
1: सुयाक से मौसम कैसे बा बड़ी
2: मौसम बहुत ठंडा
1: पानी नहीं बा
2: पानी नहीं आवता बहुत ठंडा बहुत ठंडा
1: बढ़िया ठंडा मन करता खाली चाय और कॉफी पिए के
2: चाय पिए के गरम गरम आज रोड के सूते के आज भोजपुरी सुने के
1: आज कौन बम मिनी पकड़ रहा बोला था मिनी कौन सी बात
2: आज लिसू फ्लेयर
1: घर में गर्मा गर्म पराठा
2: आलू डाल के
1: अकेले पराठा खा ले बहू सेवा कर चले अच्छी बात बा और कौन कौन गीत सुन बा बोले
2: शिवदास के गीतवा डाल दिया भोजपुरी गाना
1: कौन भोजपुरी गाना
2: शिवदास के गावल गीत
1: एक खातिर
2: बाप दादा के भोजपुरी बोली
1: बाप दादा लोग के बोली
2: भोजपुरी बोली सब परिवार सब चंद्रमुनि परिवार और सब मोहित परिवार खातिर डाल दिया गीतवा
1: हाँ।
2: आपके लिए भी
1: गीतवा बड़ी अच्छा लगे ना
2: खुशी रही गीतवा सुने के ना वैसे बार बार ये गीत मांगी ना
1: अरे डाल दी फिकर नहीं करिए ओके
2: धन्यवाद आपको
1: और ऐसे ही हम साथ देते रहिए और गमटवा करते रहिए और हमने जो एमबीसी वाला के एमबीसी के जितना रेडियो चैनल बहुत 24 घंटे कार्यरत बा वेंकट टू वेंकट सेट 365 जो एक बार इसमें हमने के सब अच्छा अच्छा प्रोग्राम चलाई रहा सा वो चाहे रेडियो मॉरिशस हो रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती RM1 RM2 और खासकर अभी जो रेडियो चला था अभी रात के सुना तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और हैकर में तो वेंकट लो वेंकट सेट प्रोग्राम चल रहा खाली तो लोग के मनोरंजन खातिर ई एमबीसी रेडियो तो लोग के राजू है हमने के राजू है सब कोई के राजू है एमबीसी को परिवार है तो लोग वही परिवार के सदस्य हो सर तो जितना कोई एमबीसी भी सुनाता एमबीसी राजू होता है तो लोग के नाम नाटक बा सिनेमा बा के कर संगे जाइबो है गीता के बाद चलाओ सारे वो गाना बाप दादा लोग के बोली तेगो सुना नयन के गीत विनोद सिद्धत की बैक टू बैक दू गाना है दू गीता के बाद हमने गीतों की मुलाकात फिर से हो सुनते रहे प्यार से एमबीसी रेडियो

अभी 5 मिनट में एक क्विज चला अब सैक अशिल जावाता जुन बागातेल में लगल बा वहाँ पर हर बीफी और सुख के सांझ के 6 बजे से शो हुआ था और सामने दिवास के 2 बज के आधा भी शो होला था क्विज यदि 9 बज के आधा और जीते होला के मिली 2 गो टिकट एंट्री टिकट वहाँ पर जाके इस सैक देखे के तभी खातिर एगो कहानी तोरा सुनाओ अब जा और आज की अपनी कहानी है कृष्ण सुदामा की कहानी तो बहुत साल पहले की बात बस सुदामा और कृष्ण बचपन में गुरुकुल में संगे संगे पढ़त रहन सा बड़का संगतिया रहन सा बेस्ट फ्रेंड रहन सा दोनों में गहरी दोस्ती रहल श्री कृष्ण राजघराना से रहल और सुदामा गरीब परिवार से रहल फिर भी दोनों में बहुत गहरी दोस्ती रहल अमीरी गरीबी के बावजूद इन दोनों में कोनो भेदभाव ना रहल समय बीतल गल और कृष्ण जिन द्वारका के राजा बन गल सुदामा के हालत बहुत खराब हो गल घर में खाए खातिर अनाज तक ना रहे ओकर पत्नी एक दिन बोलक रहुआ कृष्ण के कृष्ण लगे जा

जाके अपन बचपन के दोस्त के बंदूक सुनावा देखाओ कैसे तो हर मदद से की करी सुदामा के लगे कृष्ण के देवे खातिर कुछ खास ना रहल आखिर में ओकर पत्नी पड़ोस से थोड़ा सन चिउरा मांग के लेके आल एगो कपड़ा में बांध के दिला कर भुलक जब कृष्ण भगवान लगे जाए तो ओकर हाथ में दे के सुदामा द्वारका पहुँचल और जब कृष्ण के पता चलल कि ओकर बचपन के दोस्त सुदामा आल बा तो राजा के सगरी मर्यादा भुला के दौड़ के अपन दोस्त के गला मिलल अपन दोस्त के सेवा सत्कार करलक कृष्ण भगवान अपन हाथ से सुदामा के गोर धोलक और ओके खूबसूरत वस्त्र दिलक और ओके बैठा के खूब खेलक पियलक बहुत भावुक हो गल कृष्णा जब सुदामा के देखलक सुदामा के द्वारे में आल बा अब सब कोई बोलता है कि है सुदामा के है तो कृष्ण बोले ई हमर जिगरी दोस्त है ई हमर बेस्ट फ्रेंड है और कृष्ण भगवान खूब सेवा कलक अपन संगतिया के कहे कितने दिनों के बाद सुदामा को लगे गरहल खूब खाए पिए के दिलक हाल चाल पूछलक कृष्ण के नज़र सुदामा के हाथ में एक पोटी पर पड़ल वो मुस्कुरा के बोलक मित्र हमार खातिर कौन चैन ले हुए सुदामा लज्जा के कारण पोटली छुपावत हल पक्की कृष्णा को पोटली खोल के चिवा निकाल के देखलक वो बड़ी प्रेम से चिवरा खैलक कृष्ण खातिर वो साधारण चिवा ना रहा बल्कि दोस्त के प्रेम रहल सुदामा कृष्ण से कुछो नहीं मंगलक वो बस दोस्त के प्रेम पाके वापस अपन गांव लौटल जब सुदामा घर पहुँचल तो वो देखा था देख के हैरान हो गल कि ओकर छोटा सा झोंपड़ी जो है बड़का महल बन गल बा घर में नौकर चाकर बा पैसा ही पैसा धन दौलत सुदामा समझ गल कि सब कृष्ण के लीला है ओकर आँख में आंसू भरल खुशी की मारे वो रो पड़ल और सुदामा और कृष्ण की दोस्ती हमने के सिखावे ला कि सच्चा दोस्ती जो है धन दौलत से नहीं बल्कि प्रेम विश्वास और अपनापन से बड़ा होला कहानी की सीख यह है कि भगवान सच्चा प्रेम और भक्ति दिखेला ना कि कोई के धन दौलत तो तू भी अगर दोस्ती करब तो कृष्ण सुदामा लेखन दोस्ती करिया राम बलराम लेखा दोस्ती करिया वो कहाला दोस्ती है गीतों के बाद क्विज कंपटीशन खेल प्रतियोगिता तैयार हो जा

खेले हम जहाँ संग चालो गाबो खेल प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता जो है प्रायोजित सियाक आशील जबाता की ओर से जो बागातेल में बा भी और हर बीपी और सुख के सांझ के 6 बजे शो होला वहाँ पर और शाम जो दिमाग के दोपहर बाद के 2:30 बजे से शो होला। एगो सवाल हम तोरा से पूछब, अगर सही जवाब तू अंक देबा तो तोरा मिली वहाँ जाके 2 एंट्री टिकट्स और ये एंट्री टिकट्स तोरा मौका दे जाके शो देखे के। अगर सही जवाब मिल जाए तो MBCI या अपन ID कार्ड के लेके सप्ताह के दिन में लेंदी से लेके शुक्ल दिन के 9 बजे से शाम के 3 बजे ले। ध्यान से सुनिए हमारा सवाल, जवाब दिया काजे होदे विद जवाब विद सैंक पर। ऊ लम्हर दंटा के का बोलल जाला, ऊ लम्हर दंटा के का बोलल जाला जेकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चलीला। ध्यान से सुनिए हमारा सवाल, ऊ लम्हर दंटा के का बोलल जाला जेकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चलीला। तो है खेल प्रतियोगिता अभी 9:40 तक 10 मिनट तक खेलवा चला अब सर। अगर एक जना के सही नंबर अगर जंग सही जवाब मिली तो ओकरा मिल जाए ओकर इनाम। अब धे मना जवाब सही जवाब रही तो कुछ आजो सो करब से लकी ड्रॉ करब सर और अनाउंस करब सर कि कर जीत हर बात अपन किस्मत आजमावा दिमाग पर जोर लगावो और हमने के बोला कि वो लम्हर डंटा के का बोलल जला जिकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चले लन सा सेक में। तो के जवाब काजगो दे विद जगो विद सैंक पर, काजगो दे विद जगो विद सैंक पर। तब तक सुना एक दुगो भोजपुरी गीत।

हमनी को खेल प्रतियोगिता चलेगी सभी खेल प्राचीन सर्कस आशीर जबाता के उसे जन बागातेल में बा और हमने की सवाल यह कि वो लंबा डंडा के का बोलल जला जकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चलेला अभी ये सब गलत गलत जलबाव जवाब आवा था और पाँच मिनट में हमने खेल खत्म करब सर यानी कि रात के 9:40 पर तो हमने की जवाब दा कि वो लंबा डंडा के का बोलल जला जकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चलेला तो जवाब काट जगह दे विद जीरो विद सैक पर काट जगह दे विद जीरो विद सैक पर

अफसोस की बात बा कि आज कोई की जीत नहीं हो जी हाँ आज के उनकी सवाल रहल उ लंबा डंटा के का बोलल जला जगह पर कलाकार लोग जमीन से ऊपर चलीला जवाब है स्टिल्ट वॉकर्स तो कोई सही जवाब नहीं दिला अगर सही जवाब कोई देव तोरा मिलत सकस आशीष अवतर जन बगातेल में स्थित बा वहाँ पर ही जाए के दुगो एंट्री टिकट्स और वहाँ के शो है हर बी फेयर सुख के शांत के 6 बजे और सर शांत मास के 2 बज के आधा शांत के शो होला अफसोस की बात है कि आज कोई के जीतने हो फिर कोई पहुँच पे कर लें सर खेल में भाग ले खातिर बहुत बहुत धन्यवाद कोशिश कर ला जा बहुत धन्यवाद पर आज कोई के जीत नहीं होल और रही जवाब के संग खेल प्रतियोगिता यहीं पर ही समाप्त होता और याद दिलाते जाए कि ये खेल जो न स्पॉन्सर सकस अशील जवाता बगातेड़ की ओर से

रात के 9:40 हुआ था और हम इस के साथ होते इस रेडियो मॉर्शस रेडियो मनोरंजन पर हम के साथ खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गीत अगे नानी राकेश कोप गीत अगेले हवन और गीत हम चलाते इस विशा भैरव के नाम आप रहेलन फ्लाक उगर पत्नी कर लड़का लोग खातिर देविका राम गतिया चंपा राम गतिया राधा सिबालक गीतों लोग के नाम और इंदिरा चिंताराम भी उनके साथ देवतों कर बेटा पतु बेटी दामाद और जितना भी होकर परिवार बात चिंताराम परिवार मॉरिशस में अजय और पूनम होवन ऑस्ट्रेलिया में बाल गोपाल में प्रियवंश या चंदन और प्रियाबा और सब चिंताराम परिवार के नाम अभी को संगतिया बालाइन पे होकर से मिलब जा। हेलो हेलो हेलो बात कर हेलो हंकी को बात समझ में नहीं आवेला टेलीफोन ही करेला सर जब टेलीफोन जब आवेला तो टेलीफोन काट देवेला सर। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट क्योंकि बहुत सी बेमन बाहो के तो टेलीफोन करके बात कर टेलीफोन करके ब्लॉक ही कर देवेला सर दूसर के लाइन नाम ही नहीं ला कहा बोला भैया दुनिया में अजीब अजीब लोग बा। चले अगला गीत सुनम जा अगे नानी जितना कभी रात के नाइट शिफ्ट में काम करा था वन सर है गीत तो के नाम जितना कोई हमने सुनाता घर पे या घर से बाहर हुआ देश में विदेश में गाड़ी में हुआ लॉरी में हुआ वान में हुआ जहाँ कहीं भी हमने की आवाज़ पहुँचाता था गीत तो के नाम अगे नानी

आजकल हमने के देश में पूजा पाठ हुआ था जहां अभी श्रावण मास जब फिनी होल तब गणेश चतुर्थी के जुनह पर्व आवता हो मंगल के गणेश चतुर्थी मनाव सब कर बाद ही वेंकटेश्वरा पूजा गोविंदन पूजा फिर रही पितृपक्ष फिर देवपक्ष देवपक्ष में दुर्गा पूजा हो और कर बाद दिवाली एन पॉइंट कार्यक्रम अभी शुरू हो गल बा देश की शुरुआत बरिस की शुरुआत से और अभी देर को ये कार्यक्रम रख रहे हम तो लोग के व्रत सफल हो गणेश जी के आशीर्वाद गणपति बापा मोरिया के आशीर्वाद सफल बनल रही कर बाद वेंकटेश्वरा गोविंदा दुर्गा माँ की भी पूजा हो तो पूजा पाठ चुनाव बहुत जरूरी है जीवन में जितना हमने के ग्रह रहेला दुख रहेला जब पूजा पाठ कर बता कोनो न कोनो फासों से वो ग्रह कम होला कष्ट कम होला हाँ कि नहीं तो ऐसे में गो दुर्गा माँ की भजन चलावब सभी विश्वानी दीपा की आवाज़ में जितना कोई व्रत धारण कर ले वन सा तो लोग के व्रत सफल हो और गणपति बापा तो लोग के आशीर्वाद दे और तो लोग के सब मनोकामना पूर्ण होई

ऐसी पूजा पाठ करते रहिए, व्रत धारण करते रहिए। पूजा पाठ करला से, व्रत धारण करला से हमके जीवन में जितना कठिनाई बा वो सब दूर होला। हमनी के भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा प्राप्त होला। आजकल ठंडा ठंडा करता है, तापमान में गिरावट आवता है और दिक्कत ऐसे ढेर कोई जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है वन सर, ढेर कोई अस्पताल में एडमिट भी होता है। बहुत लाफे फो है, बच के रहिए ठंडा पानी और ठंडा हवा से। तो आजकल जो है जैसे ठंडा ठंडा करता था, जैसे जीरे साफों बा दूध में हल्दी डाल के पिए, जीरे जीते व्यागामुद जीते पिए गरम गरम, ओकर में व्यागामुद के एक दो बूंद डाल दिया, लीमो या सितरों डाल दिया और ये सब

0: अच्छा है तल के इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग बनाए खातिर और ढेमाना फ्रूट बा फल बा जैसे मोदारिन बंगासाय पॉम्प्लेमूस कीवी जोरेंज लिमो ये सब अच्छा है तब खेब सर्दी खांसे जुकाम से दूर रह। अगला गीत अभी को संगतिया बात कब से संगतिया है कौन गीत मांगा था। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ प्रेमिला जी नमस्ते।
1: नमस्ते प्रताप जी,
0: कैसे समाचार?
1: ठीक समाचार,
0: धीरे धीरे हॉली हॉली
1: शिवरात्रि लड़ना था घर
0: अली। हाँ कैसे पूजा पाठ सब हुआ था? चल अच्छी बात है, पूजा पाठ जितना कर अच्छा है प्रेमिला का है कि अभी के जीवन में देखेला कितना दुख रहेला ना, कबू कबू अपन दुख के बोल भगवान के छोरा के इंसान इंसान के दुख नहीं सकेला सोल्यूशन खोजे सोल्यूशन।
1: बहुत बढ़िया बात,
0: कौन सी बोला
1: सावित्री
0: सत्यवान देखेला जब सावित्री अपन सत्यवान खातिर
1: व्रत करके आईली जा तबे पति बीमार भेलन तब धल कितना बोली 20 साल तक जीलन। वही दिन हो रहा है, सुनने तो
0: थोड़ा याद चला ना कि कारण में व्रत में ढेर शक्ति रहेला, पूजा पाठ में ढेर शक्ति रहेला
1: और सावित्री व्रत बहुत वो सच्चाई पर हो।
0: हाँ और अभी कौन गीत सुन प्रेमिला?
1: अभी जन्मदिन पर हो विकास के।
0: हाँ एक जन्मदिन के गीत
1: विकास जी से सहमन उनका मामा भाई उनके पत्नी करी किरण और बेटा है यश और वो बेटा यू बेटा और यानव।
0: हाँ कहाँ रहे रंसर
1: उनका भाई बहन
0: कहाँ रहे रंसर
1: है जे धीरे में उ लोगे हमरा सब रूले
0: जानन ए ता सो स्वीट
1: बहुत निमन हो।
0: हां चलो भगवान के आशीर्वाद से कोई तो कोई ना कोई तो सा
1: हां बटे ले ला हमर जल्दी जल्दी।
0: हां बोला
1: इंग्लैंड इंग्लैंड में हूं मैं साइलेस नहीं है साइलेस
0: साइलेस
1: हां साइलेस धमाधमन उनका भी जन्मदिन आज है।
0: बहुत खूब हैप्पी बर्थडे बोलते ढेर मना प्यार आशीर्वाद लंबी आयु हो दिल से आशीर्वाद दे होते
1: और बेटा बेटी
0: अरे बहुत मैसी तेरी फिर
1: हाँ साली हमारी वंदना
0: या और वंदना कहाँ रहे लन
1: वंदना यही हमरे
0: हाँ हाँ तो रह लगी ओके ओके
1: लेकर लोगे दिखे जालन
0: हाँ हाँ हाँ जी
1: छोटा छोटा लोगे नाम भी बोल दे होते हैं।
0: हाँ
1: लवर की
0: ओके जी
1: के भी दुई बधाई देवत थे जा उनकर मामा के भी बोले होते ना बोले नहीं बोली सैपुल रहे ना सामना परिवार।
0: और तो रो लगी इतने ठंडा करता प्रेमिला रोज कैसे ठंडा करता तो रो लगी पा रही ठंडा करता
1: बहुत ठंडा बहुत ठंडा
0: पपनिया नहीं बसता सिर्फ खाली ठंडा करता
1: नहीं पानी बा।
0: हाँ कभी कभी एक झोंक पानी मारे ना
1: हाँ मोटा पानी नहीं हो।
0: हाँ जी जी जी हाँ तो ये सब भगवान के काम लिखा था नेपाल में कौन कहते थे बोर्ड मॉल बना अभी काल इंडोनेशिया में देखा था इसे को वोल्कन जो इरप्ट होल बा बाप रे बाप बाप हो कहती हवाई ढेर कोई बोला था भाई इंडोनेशिया में है ने वोल्कन भेने दे बोर्ड मॉल कहूँ कहूँ तीन को सिक्लोन एक उत्फो में हुआ था बाप रे बाप।
1: गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत मंगल कामना बोलत हैं।
0: हाँ जी आपको भी गणपति बापा अभी ऐसे की गीतों आगे चलाओ अब तब बाद में गणेश भगवान के गीत चलाओ सर ठीक बा। बहुत धन्यवाद प्रेमिला शुभ रात्रि गणपति बापा मोरिया। तो हाँ जैसे बोला तली कि अभी कल हमने सोशल मीडिया पर देखा तली से गो फुलकों जो है वो इरब तो होल बा इंडोनेशी में और जो वोल्कन है तो वहाँ पर जो है ढेर माना टॉक्सिक गैस होकर में से निकला था इंडोनेशिया में और इंडोनेशिया वो देश है जहाँ पर ढेर माना प्राकृतिक प्रकोप होला है। पहली बार नहीं है वहाँ पर ही सुनामी आ रहा है दे बोर्ड में सब आवेला तो का कर ये सब तो हो के बा और भगवान के काम कोई नहीं सकेला रोके पर जो वोल्केनो है बहुत ही

खतरनाक वोल्केनो है जो इंडोनेशिया में इरप्ट होल बा और टाइप करिए सोशल मीडिया पर जो बता टाइप करिए वोल्केनो इन इंडोनेशिया तो देखा कैसे वो लावा जो कहते निकला था घर में से बाप रे बाप तो देख के आदमी के रोवां कांप जाता अब जो आदमी वहाँ रह रहा लोग तो अलकाओं के सामने हो बोलको वहाँ इरप्ट होल बा प्रार्थना कर सकी बोलको जो है थम जाए और अगला गीत जो है चलाओ अब भाई हरीश खातिर बबासन से काला छोटी वन पोलॉजी से चाचा आत्माराम चाची ललिता कुशल सब कुशल परिवार साइलेंट की ओर से कर्मा रीता और मौसी रेणुका खातिर रवि बंगारू एक गीत हो नाम तो सब परिवार के लिए भाई नदी वाला वैनकूवर कनाडा से हवन जा चल एक साथ सुनम जाए गीत एगो जन्मदिन के गाना है एल्बम है बेलीला और प्रेमी लाके जितना परिवार लोग जन्मदिन मनावा था है गीत और लोग के नाम भी

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो
1: पर भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

गीतों की याद दिलावा था कि पिछली बार को दो में जो जेलिजिल डेलिसियन जन अगराल वहां पर ही मॉरिशस की जीत हो रहा सब इप्रेव में मॉरिशस नंबर वन टॉप ऑफ द टॉप नंबर वन तो मॉरिशस के एथलीट लोग से बहुत बहुत बधाई जितना कोई स्पोर करे रहा स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो ये अच्छा है स्पोर कर रहा और हमने के एथलीट लोग जब वो नेशनल ने थे नेशनल में जान से तब ऐसा Ali Morris, yes, you did it. रात के 10 बज के 12 मिनट होता और आजकल हमनी पूजा पाठ करते इस एक बगल गणेश भगवान की पूजा होता तो दूसर बगल वेंकटेश्वर गोविंदा की पूजा की तैयारी भी होता और सब कोई वेजिटेरियन जो शाकाहारी भोजन करता उनसे तो आज को भोजन के बारे में बात कर जो बड़ी आसान है वो है करी बरी इमोशन खाना करी भरी देर कोई बोले गातो दाल या गातो पीमा ये बहुत आसान है गातो दाल बनाए की गातो पीमा देर कोई बोले ला तो कोनो भी दाल हो जो के फूले की दाल दिया को देखी मैं रात के रात भर जब फूल जाए फजित के उठ के ओके खाजिर कर दिया खाजिर करके एक और मेरे को तो मिली पीमा लाके जवाइयों सब दाल के जोड़ी से गोल गोल आकार करके ओके छनिया जा गरम तेल में और एक करी भरी जो है एक प्रकार से एक पकावी रहा एक सलाद बनी रहा एक रुगाए में भी पकाई रहा और मसाला में भी पके रहा करी भरी जो मसाला भैंसल बैगन दाल के उगाए में भी और एक सलाद भी बनी रहा भाई हंगित अब ये भूख लगा था करी बरी के बारे में गर्मा गर्म गाटो दाल और मुझे धुआं निकला था और करी बरी मसाला में ब्राजिल डाल के साथ में फाटा सोसो क्या बात है तो हर व्यंजन बहुत आसान है कर मैं ढेर लेता हूँ नहीं लगेगा खाली चेहरा के

रात के फूले की डाली कि एक रात फूल जाए नीवन से, तब फजर की उसकी खासे कर दिया है, खासे के सकबा फूस दिया में भी रख दे, और जब भी मन कर रही तब के निकाल के दे जिले करके सकबा तार के तरकारी पकाई। और ऐसे में अगला गीत पनिया बरसेला है, गीत चलावत इस पंडित लवकुश त्रिपाठी खतेर, और है गीत उदय दनी राम परिवार के नाम, और भाई अबू हवन बाकवा से, राफिक मोहित तयाग से, रोजिदा हाईलैंड से, आफेज लाविनिया सैपिया से, पाटना न्यूग्रोव से, इब्राहिम पोटवी से, सुरेश जसवा, राजमन्ना, स्टीव चिबुग लोंग, नानो संजीव, साइलेश महावीर और घरवरी को लेकर और कर पिताजी के नाम, और जैना भवन फेनिक्स से। तथा चले एक साथ सुन जा ये प्यारा संगाना पनिया बरसेरा। सच है कि अभी रात के जिस जिस पानी बरसता, मृत्यु बोलता, तापमान में और गिरावट आई और सुख ले से ठंडा कर ले रही, कहेगी को जोरदार एंटीसाइक्लोन मास्करिन के दक्षिण में बा।

हम लोग के देश में पहली बार के लिए जब कोलोनाइजेशन रहल फ्रांसे लोग कोलोनाइज कर ले रहल तो हम लोग के देश के नाम रखल कर रहल इल दे फ्रांस

तेगो फ्रांसिस के नाम में पियर पुआव वही ढेर बना जेपी सा नेरलैंड और वो जेपी सा में से एगो रहल कानेल जी के मी दाल चीनी बोईला सा तो कानेल जोन है एगो सुगंधित मसाला है जे पेड़ के छाल से मिलेला एकर इस्तेमाल खाना चाय और पारंपरिक चिकित्सा में प्रयोग होला और दालचीनी के महत्व ढेर बा ई खाना में स्वाद या खुशबू बढ़ावेला जैसे मिठाई चाय पुलाव करी

कर में ये ब्लड शुगर के कमती भी करेला सर्दी जुकाम से इनके दूर बचावेला और मुंह के स्वास मुंह के महक जो ना मुंह में सुगंध लावेला और साबुन परफ्यूम और दूसरे सुगंधित साबुन परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में का इस्तेमाल भी होला दालचीनी खाना में सामान्य मात्रा में सुरक्षित मानल जाला बहुत अधिक मात्रा खासकर कासिया सिनेमन में कुमारीन अधिक हो सकेला जे लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में लेला तो लीवर सकी खराब हो जाए तो कनेल के मुझे राशों से चेहरा खाए के पर ये अच्छा है स्वास्थ्य खातिर गातों में बिरयानी में पसादी में ढेर कोई सेवी करेला एक हिंदी में बढ़िया से दालचीनी और अब हमने के प्रमोशन कर मोशन बढ़िया से कनेल तो जरूर जब तरकारी पकेबा मिठाई पकेबा तो एक पिछबुत कनेलवा डाल दिया हो काहे से कंजूस करेला और ऐसे में अगला गीत चली शालिनी की ओर से विशाल हीरू के नाम और कर्दू को बेटी और सब हीरू परिवार जो नहर लाफ्लोगा विशाल भी सिसर वन से अवन कर पत्नी कर बेटा और सब सिसर परिवार के लिए लाफ्लोगा से मिशन क्रॉस ऑफ दालमाटी के रविराज सिन्हा बिचुक और पत्नी स्वयं प्रभा बेटा प्रत्यक्ष और सब परिवार बिचुक परिवार के नाम अमृता डुंगू रेगी थोरो खातिर अमृता गणेश पीतों से हवन शोभा हवन पॉम्पलमुस से चित्र ज्ञान विश्राम मौदालवेया से अनिता लाल जी मौदालवेया से सब इटू परिवार अनिता हवन फ्लिकॉन फ्लाक से तो चले एक साथ सुनब जा ये प्यारा सन गाना उमेश दोहू के गावल जीले जीले

चार दिन के जिए के बाद भैया फिर काहे के इतना घमंड इतना गुरूर इतना गुमान ठेर को भैया कर लुत्तो रहते बलाई लुत्तो हमारा हमारे लुत्तो में नहीं चाहे कि तका आदमिया जब दुनिया छोड़ के जाते लुत्तो ले ले जाए का अपन संगे ढेर कोई नहीं सोचे लंस खाली बचालन स बड़ा बड़ा बात है लुत्तो हमार हमार घर जब असल में देख बात यहाँ कुछ नहीं बात तो रही शरीर तो अपन नहीं है दुनिया में आई रहता दूसर कोई नहाई लग दुनिया से जाई बात है दूसर कोई थोड़ा नहाई एक दिन शरीर जगह तक घमन करे रहा हाय हमार लुत्तो है हमार घर है बंगला है गाड़ी तो शरीर तो हर अपन नहीं है माटी के बनल भाई शरीर पांच तत्व के बनल भाई और एक दिन पांच तत्व मिल जाए और जब ले इंसान रहेला तो रहेला जब इंसान मर जाला दुनिया से चल जाला तो फिनिश ओ रोब गईब पूजा पाठ कर कुछ शांति करेब जब दुनिया चल गल तो चल गल भैया जिंदा रहल तो कोई गलती नहीं दिलक अब जब दुनिया में नहीं बा तो अगर पीठ पीछे आदमी बैठ के रोआ था मातम मनावा था शोक मनावा था हम नहीं बोलते कि नहीं करेंगे ये सब अच्छा है जब कोई नहीं रहेगा दुनिया में तो अगर याद कर सब पर अगर जीते जी तो कर सेवा नहीं कर ला तो कर मरला के बाद अब रोवा तो वह कौन ची ना सोचे वाला बात है चिंतन मनन करके बात है कि जब लेको इंसान जिंदा बा हर इंसान से गलती होला कौन ऐसा इंसान बा जिक्र से गलती नहीं होला पर एगो गलती खाते तू जिंदगी भर दुनिया से नाता तोड़ ले बा मुँह मोड़ ले बा तो ये कैसन जिंदगी है हम जैसे बड़े से कि जीते जिए गरी गो इंसान बात भूखल इंसान होकर खाए के दिला प्यासल इंसान पानी दिला पिए के सेवा सत्कार कर लेता वो सबसे बड़ा पूजा है सबसे बड़ी सेवा है अब नहीं कि जीते जी गलती नहीं दिला जीते जी जिंदगी भर होकर गाड़ी दे रहा कर ला मर कर तब बैठ के रोआ तब और फोटो में हाँ चढ़ावा तो हुआ तो फोटो में हाँ चढ़ेला से क्या होला भैया जब जीते जी गलती नहीं रहता सोचे रहा बात है कि जब एक व्यक्ति जिंदा बात हो रोक के सामने बा तब जहिया कर लगे उससे बात करिए कोई नुबेल पूछिए कोई चीज़ पकैली हवा तब प्यार से के परोसिया लेके जहिया घूमे जब मर गल तब मर गल भैया फिनिश वंस एंड फॉर ऑल तो हमेशा हमारे बात है कि चार दिन की जिंदगी है फिर कुछ नहीं बा है जब भाई दुनिया छोड़ आंख मुंडा तो फिनी सब कुछ फिनी होगा अगला की चार दिन के जिंदगी गिरी शुभचंद गीतवा गई देवन गीत चलाते सब विकास नारायण खातिर है गीत अपाया वीरापेन सरजू रोसाई रसोल दीना

प्रतिमा रोशनी बानू और शिव श्री शंकर जी के नाम चलावत इसे गीत हुआ बहुत प्यार के साथ वीना कुबुसामी है गीत और खती तो घर औलात और बेटा पतो बेटी दामाद और सब कुबुसामी परिवार के नाम वीना कुबुसामी रेलन मेबर्ग सुरमा दुखी वहाँ से अवन होकर घर औला और दुखो बेटी दामाद और सब दुखी परिवार के नाम विश्वानी बाबूलाल लागोजा से कर घर औला और सब परिवार के नाम विशाल मंडप इटली से अवन होकर बेटी पत्नी और सब मंडप परिवार के नाम और शास्त्री बनने वाले भी रात के वक्त हमने सुना था बहुत प्यार से और जितना कोई भी रात के काम करता है नाइट शिफ्ट में जैसे अस्पताल में क्लिनिक में कॉल सर्विसेज में कॉल सेंटर में पुलिस विभाग में फायर सर्विसेज में जहाँ कहीं भी लोग काम करता है बोंक हुआ सही ठंडा में काम करके आसान नहीं बा अभी देर कोई फजीले काम करी तो ढे मना कुआ और ढे मना प्यार दिलों के हमने के आशीर्वाद दिलों के साथ बात चलाई गीत सुने

0: दो बेटा।
1: तो कौन सी वाला तो वे बेटा छोकरिया पसीन बात हो के।
2: हाँ दादा हमार बगल से तो हाँ बा।
1: एक बजे से तो मुंह मीठा करी जा और छोकरी से पूछी था तेरी सर कहाँ बोला था बेटी तोरा भी पसीन बा शर्मा हो नहीं बोला ना तब ना आगे बात बोली पसीन बा तो हाँ
3: पसंद बा
1: तेरी बोला रिश्�

संगत लोग ललिता गजाधरी का वाले गीत ललना के संगे ही बहुत छोटी तरह का प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त हुआ था रात के 9 बजे से अभी देर उनके साथ दिला जाए तो लोग के फोन कॉल और एसएमएस करते शुक्रिया हमने के तो लोग के मुलाकात हुई सामदी के फजर के 6 बजे से 9 बजे रेडियो मॉरिशस पर प्रोग्राम रही ये मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। निशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक बार ऑन रेडियो मॉरिशस बड़े प्यार से खूबसूरत गानों का सिलसिला लेकर आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। तो बस आज यूजुअल आराम से बैठ जाइए, दिल को जरा थाम लीजिए, क्योंकि ऐसे खूबसूरत नगमे हम पेश करने वाले हैं सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस में कि आपका दिल खुश हो जाएगा।

वैसे तो देखा जाए आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में प्लेलिस्ट एक क्लिक पर मिल जाती हैं, लेकिन वो फीलिंग कहाँ जब हम एक गाने के लिए पूरा दिन रेडियो सुनते थे। तो चलिए उसी सिंप्लिसिटी को फिर से फील करते हैं सुनहरे पल के साथ, और अगला नगमा हमारे दिल से आपके दिल तक।

एक गाना बजता है आंखों के सामने एक चेहरा आ जाता है एक मेलोडी सुनाई देती है और दिल के किसी पुराने शाम में पहुंच जाते हैं हम म्यूजिक की इसी मैजिक को सेलिब्रेट करते हैं सुनहरे पल में रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे

0: वैसे दोस्तों आज ना कोई जल्दी है ना कोई रेस है, बस म्यूजिक है, मेमोरीज है, आप हो और हम हैं आपका साथ देने के लिए। मैं हूँ गिनिशा जो बड़े प्यार से लेकर आई हूँ कुछ ऐसे गिने चुने नगमे आपको सुनाने के लिए इन योर सुनहरे पल। तो अपनी बिजी लाइफ से कुछ पल चुरा लीजिए और मेरे साथ खो जाइए पुराने बॉलीवुड के हसीन गीतों में सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।
1: नफरत

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

वैसे दोस्तों कुछ रिश्ते वक्त के साथ दूर हो जाते हैं, कुछ पल बीत जाते हैं, लेकिन एक गाना उन सब को एक ही पल में वापस लेकर जाते हैं। और आज फिर उन्हें यादों का सफ़र हमने शुरू कर दिया है आपके और हमारे बीच में। अगर आपको लगता है कि ओल्ड इज गोल्ड तो ये शो आपके लिए ही है। एवरग्रीन मेलोडीज, ब्यूटीफुल आवाज़ें और वो में इमोशंस जो आज भी दिल को टच करते हैं। सो स्टे विद मी, स्टे कनेक्टेड आपके सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: फिलहाल के लिए वक्त हो चुका है कि आप हमें इजाजत दें।
1: बिल्कुल जी, जाएंगे तभी तो वापस लौट के आएंगे एक और सुनहरे पल के शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना जी, और रेडियो मॉरिशस सुनते रहना हमेशा हमेशा आपका साथ देने के लिए। हमारे पास खूबसूरत गानों का सिलेक्शंस है। गिनिशा को इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि एंड शुभ

MBC Radio, 24 hours a day. आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC Radio.

0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ। NBC रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: NBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
2: NBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।